सुप्रभात, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज है शनिवार, शक संवत 1948 ज्येष्ठ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी रांची है, सुबह के 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केन्द्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार जन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। जानकारी दे रही है अनीता तिर्की।
3: झारखंड राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में प्रारंभ किया गया। राज्य के 38 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में मात्र 24 लाख हेक्टेयर भूमि में ही खेती होती है, शेष भूमि परती ही रहती है। मिशन के उद्देश्यों में राज्य में उपयुक्त भूमि पर बागवानी का विकास करना, वर्तमान बागवानी उत्पाद को दुगुना करना, बागवानी फसलों का विस्तार चौगुना करना, उद्यान फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, पोषक सुरक्षा में सुधार तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना। बागवानी फसलों में फल, सब्जी, फूल, मसाले, प्लांटेशन फसलें जैसे काजू, औषधीय पौधे और इन फसलों से संबंधित प्रसंस्करण और मूल्य वृद्धि आते हैं। बागवानी मिशन इन सभी फसलों के क्षेत्र विस्तार, उत्पादन, उद्योगों की स्थापना, उपादान निर्माण, विपणन, शीत गृह के लिए आवश्यक जानकारी, किसानों का राज्य एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था तथा अनुदान एवं बैंकों से कर्ज लेने में सहायता करता है। राज्य बागवानी मिशन मॉडल एवं छोटी पौधशाला की स्थापना में आर्थिक मदद एवं तकनीकी जानकारी देता है। मॉडल नर्सरी 4 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाई जाती है, जबकि छोटी नर्सरी 1 हेक्टेयर में होती है। इसके लिए यूनिट खर्च राशि क्रमशः 25 लाख और 6.25 लाख है। मॉडल नर्सरी के लिए अनुदान राशि 50% यानी 12.5 लाख रुपए तथा छोटी नर्सरी के लिए 3.25 लाख है। शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। किसान विभिन्न फसलों के पौधे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनाकर विपणन कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते हैं। फलदार वृक्षों जैसे आम, लीची, आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद इत्यादि के लिए किसान फल बाग की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक जानकारी तथा अनुदान दिए जाते हैं। यह अनुदान 3 वर्षों

0: तक 60:20:20% तक दिए जाते हैं ताकि किसान अच्छी तरह देखभाल कर सके। आम के लिए प्रति हेक्टेयर 16,500 रुपए और लीची के लिए 17,825 रुपए, आंवला के लिए 17,505 रुपए और नींबू के लिए 25,005 रुपए का अनुदान है। अमरूद की सघन बागवानी तथा मीडो बागवानी, जिसे पौधे कम दूरी पर लगाए जाते हैं, उसके लिए 31,388 रुपया सघन बागवानी तथा 50,000 मीडो बागवानी प्रति हेक्टेयर अनुदान दिए जाते हैं। मीडो एवं सघन खेती में उत्पादकता बढ़ जाती है और किसानों को काफी लाभ मिलता है। पौधों की काट छाट समय समय पर की जाती है, जिसकी तकनीकी जानकारी आवश्यक है। किसान भाई अगर सब्जियों के बीज उत्पादन करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए अनुदान मिलेंगे। इसके लिए एक परियोजना बनाकर समर्पित करना है। बड़े शहरों के निकट फूलों की खेती की जा सकती है ताकि फूल बाजार में जल्द बिक्री हेतु पहुंच सके। किसान कई तरह के फूलों का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे जरबेरा, कार्नेशन। इन फूलों के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर 35,000, ग्लैडोलस के लिए 45,000 एवं गेंदा के लिए 12,000 रुपए अनुदान की राशि है। फूलों की खेती खुले और शेड नेट के अंदर भी की जाती है। किसान पॉली हाउस और शेड नेट बनाकर फूलों तथा सब्जियों की खेती वर्ष भर आसानी से कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए प्रति वर्ग मीटर अनुदान की व्यवस्था है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार 500 या 1000 वर्ग मीटर का शेड नेट बनाकर जरबेरा, कार्नेशन, गुलाब की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय था राष्ट्रीय बागवानी मिशन। जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। संकलन और वाचन है दिनेश कुमार लाल का।

0: जब विधाता ने जीवों की सृष्टि की तो उनके भरण पोषण के लिए भी विविध प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किया। ये असीमित तो नहीं किंतु प्रचुर अवश्य है। इनके सदुपयोग से सभी प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमेशा होती रहेगी। इन पर समान रूपेण सभी का अधिकार है। निर्गशीर विवेक से मनुष्य इनकी सहायता से आत्म कल्याणार्थ विविध पदार्थों का निर्माण कर सकता है। विकास का ये क्रम अनंत काल से चलता रहा है। यद्यपि इसे विधाता का कोई हस्तक्षेप नहीं, फिर भी संसार में उच्च नीच का भेद दृष्टिकोचर होता है। संतुष्टि का अभाव इसका प्रमुख कारण है। इसलिए मनुष्य द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग और अनुचित दोहन किया जाता है तथा समाज में आवश्यकता से अधिक धनादि पदार्थों के संग्रह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसलिए कोई श्रम करके भी निर्धन हो जाता है और कोई बिना श्रम के भी धनवान। संतुष्टि का कामनाओं के साथ गहरा संबंध है। जब किसी व्यक्ति की कामनाएं अनंत हो जाती हैं, तो इससे दुनिया में असंतोष बढ़ता है और असमानता भी। प्रकृति के प्रचुर संसाधन भी कम पड़ जाते हैं। संतुष्टि ही मनुष्य की बढ़ती कामनाओं के नियंत्रण का उपयुक्त निदान है। बिनु संतोष न काम न साही कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी पुष्टि की है। किंतु कामनाओं पर लगाम तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक संतुष्टि का पैमाना निश्चित नहीं होता। ये पैमाना सभी लोगों का अलग होता है। कोई थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है तो कोई बहुत पाकर भी नहीं। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सफलता का पैमाना तो दूसरे तय करते हैं किंतु संतुष्टि का पैमाना स्वयं तय करना होता है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति दूसरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर अपनी संतुष्टि का पैमाना तय करते हैं। जब संतुष्टि का ये भाव सभी में आ जाता है तब समता मूलक समाज की स्थापना होती है और सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र सफल होता है।
1: ये था आज का चिंतन। संकलन और वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का। मीडियम वेव 546.45 मीटर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है अनूप जलोटा और साथियों की गाई इस देशभक्ति रचना के साथ।

अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में अभी आपने देशभक्ति रचना सुनी और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की गाई भक्ति रचनाएं। ये रचनाएं पंडित नरेंद्र शर्मा की हैं और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

लता मंगेशकर की गाई इस रचना के साथ ही आज का भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्ट महिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव 546.45 मीटर और एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं दे दें। हमारी इस सभा में सुबह 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में आपकी मुलाकात हम करवाएंगे डॉक्टर हर्षिता दीप से। भेंट वार्ता का विषय होगा PCOD, कारण, लक्षण और उपचार। इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। 7:45 पर कानून की बात में आप सुनेंगे श्री कौशल कुमार, एडवोकेट और मीडिएटर झालसा से ली गई भेंटवार्ता। विषय होगा आपराधिक मामलों के पीड़ितों के अधिकार। इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। 8:45 पर लोक रंग में आप सुनेंगे पंच परगनिया लोकगीत दयाल हरि गोप और साथियों की आवाजों में। 9:10 से 9:35 तक आप सुनेंगे पीपल्स पद्म आकाशवाणी एपिसोड 30। इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:35 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। इसमें आप सुनेंगे पंडित मोर मुकुट केडिया का बजाया सितार वादन।

10 बजे कल्याणी में आपकी मुलाकात हम करवाएंगे डॉक्टर करुणा झा से। भेंटवार्ता का विषय होगा गर्भधारण की तकनीक IVF। इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। दिन के 11 बजे सुनिएगा स्वर यात्रा के 90 वर्ष, इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक श्री प्रमोद कुमार राय से। इनसे बातचीत की है प्रभु शरण ने। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा गृहलक्ष्मी दिन के 12 बजे। शैक्षिक प्रसारण आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। इसमें प्राची गोयल की वार्ता आप सुनेंगे पौधों में परागण और उसका महत्व।

0: अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव 540.45 मीटर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत् प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमेपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45°C यावत्, न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हाँ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। प्रस्तुत है भेंटवार्ता। पीसीओडी कारण लक्षण उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर हर्षिता दीप, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल।
3: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में खान पान काफ़ी बिगड़ गया है। फास्ट फूड की ओर हम ज़्यादा अग्रसरित हो गए हैं। ऐसे में एक बीमारी हमारी किशोरियों को हो जा रहा है और स्कूल गोइंग लड़कियां या कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं उनको हो जा रहा है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी बीमारी क्यों हो जा रहा है, उससे वो क्यों ग्रसित हो जा रही हैं, उससे वो क्यों पीड़ित हो जा रही हैं, क्या कारण है और इस पीसीओडी का लक्षण क्या है, ताकि समय रहते हम इसका उपचार करें और कौन कौन सी सावधानियां हम रखें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हर्षिता दीप। डॉक्टर हर्षिता, स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये जो पीसीओडी है, आजकल की नव युवतियों को ये बीमारी ज़्यादा पकड़ रही है, तो ये किस तरह की बीमारी है?
4: मैं आकाशवाणी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत सी लड़कियों एवं नव युवतियों में देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बारे में आज भी जागरूकता बहुत कम है। इस समस्या का नाम है पीसीओडी, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। यह बीमारी किसी भी महिला को हो सकता है, लेकिन यह अधिकतर किशोरियों या फिर युवा महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। स्पेशली 14 से 30 साल की उम्र की महिलाओं में ये ज़्यादातर पाया जाता है।
3: तो ये बीमारियाँ क्या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, हमारे खान पान से इसका गहरा ताल्लुक है?
4: जी, इसका हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो हमारी आजकल की जीवन शैली है, जहाँ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और हम अधिकतर फ़ोन, लैपटॉप या फिर जो फास्ट लाइफ की तरफ अधिक भाग रहे हैं, उसके चक्कर में ये मुख्य कारण बन चुका है, जो पीसीओडी का पहला कारण है। इसके अलावा हम एक्सरसाइज बहुत कम करने लगे हैं, स्पेशली जो यंग फीमेल्स हैं उनमें एक्सरसाइज की कमी होना, स्लीप साइकिल इरेगुलर होना, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना, जैसे कि तला हुआ खाना ज़्यादा खाना, मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, जंक फूड खाना, ये भी एक मुख्य कारण में माना जाता है। इसके साथ ही जेनेटिक कारण एक मेन रीज़न माना गया है, क्योंकि ये ओवरीज का डिज़ीज़ होता है और ये हार्मोनल इशू है, जिसके वजह से हमारे ओवरीज से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होने लगते हैं, तो इसका कारण एक जेनेटिक कारण भी माना गया है। इसके अतिरिक्त फिजिकल कारण के साथ साथ मानसिक कारण भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, जिसके ऊपर हम विशेष कर से ध्यान देते हैं, स्पेशली इन होम्योपैथी।
3: तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो ये बीमारियां हमारे युवतियों को, हमारी किशोरियों को घेर रहा है?
4: कारणों में अगर मैं बोलूं तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इससे। जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल कारण में हमारे पास एक्सरसाइज की कमी या फिर इरेगुलर स्लीप, ये सारे मुख्य कारण होंगे। पर वहीं अगर हम मेंटल कारण की तरफ जाते हैं तो लगातार तनाव में रहना, या फिर कई बार हमने देखा है कि आजकल की युवतियों में परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत बढ़ गई है, कि अगर कोई हमारे उम्र का अगर लड़का है और वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो हमारे अंदर वो कॉम्पिटिशन की भावना ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। कई बार वो थोड़े हद तक हेल्दी होता है, पर उसके बाद वो हमें मानसिक तौर पे बीमार करने लगता है। साथ ही में अगर हम देखें तो हम खुद को प्रूव करने की चाहत बहुत ज़्यादा रखने लगते हैं, जो एक लेवल तक ठीक होता है, लेकिन अति किसी की भी सही नहीं होती है और वो एक बीमारी के तरफ मोड़ लेने लगता है। इसके साथ ही लैक ऑफ अप्रिसिएशन एक मेंटल कारण है, जिसके वजह से हमने कई सारी पीसीओडी की महिलाओं को इस चंगुल में फंसते देखा है कि उन्हें लैक ऑफ अप्रिसिएशन होता है, कोई उन्हें सराहना करने वाला नहीं होता है, जिसके वजह से वो खुद में ही रहने लगती हैं और उनके हार्मोन्स में हमने इम्बैलेंस देखा है। तो ये मुख्य कारण होंगे।
3: प्रतियोगिताओं का ज़माना है और इस भीड़ में आगे निकलने की चाह है कि हम आगे आ जाएं, और हर लोग चाहता है कि जो हम लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो हमें प्राप्त हो जाए, और ऐसे में जो किशोरियां हैं, लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं उन्हें तनाव घिर जाता है और फिर जो हमारा रहन सहन है और जंक फूड का हम सेवन करते हैं ये बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। इस बीमारी का लक्षण क्या है ताकि समय रहते हम जागरूक हो जाएं, सावधान हो जाएं और इसका उपचार हम शुरू कर दें।
4: जी, सबसे पहला लक्षण जो हम देखते हैं वो है वज़न का बढ़ना। कई बार हमने देखा है कि 14 से 30 साल की उम्र में महिलाएं अचानक से उनका वज़न में काफ़ी बदलाव आने लगता है। और एक बहुत ही कॉमन मिथ भी है इसमें कि हर एक लड़की या महिला जो है वो अगर वज़न उनका बढ़ गया है तो उन्हें PCOD है, पर ऐसा 90% केसेस में होता है पर 10% केसेस में नहीं होता है। कई बार जो महिलाएं काफ़ी पतली भी होती हैं उनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जा सकता है। उसके अलावा अनियमित पीरियड्स का होना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमने देखा है कि वर्ष में अगर एक दो बार पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसे हम नॉर्मल कह सकते हैं, पर अगर हम महीने में उसे एज अ पैटर्न देखते हैं कि दो महीने में हर साल मेंसेस स्किप हो रहा है या पीरियड्स स्किप हो रहा है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम माना गया है, अनियमित पीरियड्स। साथ ही अगर बालों का झड़ना देखा जा रहा है, चेहरे पर पिंपल्स या मुहासे आ रहे हैं, इसके अलावा सुबह उठते ही हमें फ्रेश नहीं लगता है या हमें काम पर जाने का मन नहीं करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण माना गया है। यही सिम्टम हम थायराइड के पेशेंट्स में भी देखते हैं जहां पर भी हम यही कहते हैं कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। तो इन सारे लक्षणों पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
3: ये सारे लक्षण यदि दिखने लग जाते हैं तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना है। और उपचार किस प्रकार करें, कौन कौन सी बातों का हम ख्याल रखें कि ये बीमारियां हम तक नहीं आए और एक स्वस्थ जीवन हम यापन करें और जिंदगी की रफ्तार तो है ही लेकिन तनाव से हम दूरियां बनाएं।
4: जी, सबसे पहले तो मैं कुछ आसान रूटीन बताना चाहूंगी जो हर महिला या हर युवती इसको फॉलो कर सकती हैं। हम अपने, जैसा आपने कहा, भाग दौड़ तो चलती ही रहेगी, हम उस भाग दौड़ के जीवन में भी अगर बस 15 से 20 मिनट, अगर 20 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं तो 10 से 15 मिनट अगर हम वक्त अपने लिए निकालें, या वो सुबह हो या वो शाम को हो, पर हमें खाने के बाद कम से कम उतना वक्त हमें चलना चाहिए। और चलना जिसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं कि मतलब हम धीरे धीरे भी नहीं चल रहे हैं और बहुत अधिक भाग दौड़ भी नहीं कर रहे हैं, पर हमें ऐसे चलना है कि हमारी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो रही है। तो हम ये एक नियम रूप से एक्सरसाइज के तौर पे वॉकिंग इंक्लूड कर सकते हैं। हमें समय पर सोना चाहिए, ये युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा कठिन हो गया है समय पर सोना और सुबह उठना, पर फिर भी अगर हम उसे थोड़ा हद तक नियंत्रित कर सकें तो काफ़ी लाभदायक होगा। खाने पीने में हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल अगर महिलाओं में देखें तो 40-50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे हमें रिक्वायरमेंट रहता है, पर अगर हम PCOD की महिलाओं में देखें तो कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए प्रतिदिन। उसमें हम प्रोटीन्स में जैसे दाल, पनीर, अंकुरित चना का सेवन कर सकते हैं, राजमा का सेवन कर सकते हैं, ये सारे हम रेगुलर अपने डाइट में रख सकते हैं। साथ ही प्रोसेस्ड फूड हम जितना कम से कम कर सकें उसे हम एकदम ना के बराबर ही रखें, पैकेज्ड फूड को कम कर दें। शुगर ड्रिंक्स जो होते हैं जिसमें एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो सारे हम बिल्कुल ही मतलब ना मात्र इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा अगर हम 5 मिनट, ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, पर 5 से 10 मिनट अगर हम मेडिटेशन भी कर सकें तो वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और हमारे मनोस्थिति को भी काफ़ी हद तक सुधारेगा।
3: इसमें हम अपनी लाइफ स्टाइल में यदि हम थोड़ा सा बदलाव ला लें, खान पान में थोड़ा सा हम नियंत्रण रख लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, तनाव से दूरियां बनाने के लिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, तो ये बीमारियां हम तक नहीं आएंगी।
4: बिल्कुल
3: जी। डॉक्टर हर्षिता, क्या कहेंगे हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, आने वाले जो हमारी युवतियां हैं, वो देश के भावी कर्णधार हैं और बहुत तेज़ी से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और देश के सेवा में आगे बढ़ रही हैं, देश को एक नए मुकाम तक ले जा रही हैं, तो उनको क्या कहेंगे कि इस तरह की बीमारी से आप कोसों दूर रहिए, अपना ख्याल रखिए, तनाव से दूरियां बनाइए और यदि बीमारी हो जाती है तो तुरंत आप सजग हो जाएं।
4: जी, मैं खुद एक युवती हूँ और मैं देश भर की युवतियों को आज आकाशवाणी के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि पीसीओडी कोई डरने की चीज़ नहीं है, ये बस एक सिम्टम है जो हमारी बॉडी हमें सजग करने के लिए दिखाती है और इससे डरने की कोई बात नहीं है। जब हमें सिम्टम्स दिखने लगें जो मैंने बताया, जैसे कि रेगुलर पीरियड्स, हेयर फॉल और चेहरे पर पिंपल्स आना, अगर ये हमें रेगुलर तौर पर दिखने लगें तो हमें सजग हो जाना है ताकि हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस हो और हम जल्द से जल्द किसी होम्योपैथिक चिकित्सक या कोई भी चिकित्सा के पद्धति की ओर जा सके ताकि हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। साथ ही अगर हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा सुधार करने लगे तो वो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने की एक कोशिश होगी। सही जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय पर उचित सलाह लेकर हम अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकते हैं।
3: और आप ध्यान देंगे तो ये बीमारियां जल्द से जल्द आपसे दूरी बना लेगी।
4: बिल्कुल
3: जी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा आप जागरूक होइए और अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। तनाव तो यत्र तत्र सर्वत्र है, बस उस तनाव को हमें मैनेज करना है, उससे दूरियां बनानी है और जितना हो सके फास्ट फूड से दूरियां हम बनाएं, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षिता दीप, होम्योपैथिक चिकित्सक, आज आप इस कार्यक्रम में आए और पीसीओडी के बारे में बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, तनाव से दूरियां बनाइएगा, तनाव को छुमंतर कीजिएगा, आप खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
4: नमस्कार, धन्यवाद।
5: स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, पीसीओडी कारण लक्षण उपचार। भेंटवार्ता कर थी डॉक्टर हर्षिता दीप, भेंटकर्ता संजय कुमार लाल। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगले प्रोग्राम सुबह सुरीली, बस थोड़ा सा इंतजार, पहले संदेश।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
7: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
5: कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से शिव वंदना।

0: कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: अंदाज, ये फिल्म आई थी सन 1971 में। आइए सुनते हैं एक सुरीला संगीत इसी फिल्म से।

इसी के साथ ही सुबह सुरीली प्रोग्राम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम कानून की बात। भेंटवार्ता का विषय है आपराधिक मामलों के पीड़ितों के अधिकार। भेंटवार्ताकार श्री कौशल कुमार, अधिवक्ता और मीडिएटर चालसा। भेंट करता है संजीव कुमार लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की ही। आइए सुनते हैं।

0: मित्रों जोहार नमस्कार। मित्रों कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों जब कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में पीड़ित हो जाता है या उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, कोई भी आपराधिक घटना, जैसे वो एसिड अटैक का शिकार हो जाता है या उसे आर्थिक या मानसिक क्षति होती है या वो हत्या और बलात्कार का शिकार हो जाता है, तो ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके भी अपने अधिकार है, वो भी अपने अधिकारों को संरक्षण कर सकता है, उसके भी अपने संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकारों को कैसे प्राप्त करे, कैसे कानूनी रूप से उसका संरक्षण प्राप्त हो, इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज का हमारा विषय है आपराधिक मामले में पीड़ित व्यक्ति के अधिकार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं झालसा के एडवोकेट और मीडिएटर श्री कौशल कुमार जी। कौशल जी स्वागत है। कौशल जी, आपराधिक मामले में जो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, जैसे मैंने बताया, तो पीड़ित होने के बाद उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है और जिस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हो जाता है वो भी पीड़ित हो जाता है, तो कौन कौन से ऐसे अधिकार है जिसके लिए वो अपना संरक्षण कर सकता है?
1: कानून में पहले पीड़ितों के लिए अधिकार नाम मात्र था, इसमें रिसर्च किया गया और अमेंडमेंट्स के द्वारा CRPC जो हमारा पुराना है उसमें एक केंद्र सरकार के द्वारा एक अमेंडमेंट किया गया जो अभी वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के अंतर्गत धारा 396 में पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को पीड़ितों के अधिकार एवं संरक्षण के लिए एक कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें कभी भी न्यायालय द्वारा प्रतिकार जो पीड़ित होते हैं के लिए सिफारिश की जाती है तो उसको जिला सेवा पदाधिकार और राज्य विधिक सेवा पदाधिकार के द्वारा उस पीड़ित व्यक्ति को कानून के तहत कुछ अधिकार दिए गए और उनको मुआवजा

0: पाने का भी हक है। अगर हम बात करें तो BNS में महिलाओं, बच्चों, संगठित अपराध और आतंकवाद से संबंधित अपराधों में कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पीड़ितों की गरिमा और सुरक्षा को मजबूत करने की ओर अग्रसित है। संहिता में न्याय एवं अधिकार सब्सटेंसिव लॉ प्रदान करती है, जिससे पीड़ित को अविलंब न्याय मिल सके। अब अगर हम लोग आपराधिक मामलों में बहुत सरल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में पीड़ितों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे वो BNS की धारा BNSS की धारा 173 के अंतर्गत उसको तुरंत FIR दर्ज करने का अधिकार है और उस दिए गए FIR की प्रतिलिपि पीड़ित पक्ष को निशुल्क देने का प्रावधान है। अगर मान लीजिए कि कहीं किसी कारणवश पुलिस उस FIR को दर्ज नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट कंप्लेन बिफोर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ भी अपने वाद को अपने विरुद्ध हुए आपराधिक मामलों के लिए वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें तो जांच में निष्पक्षता, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले इसके लिए एक निष्पक्ष और समयबद्ध जांच को सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है। पहले पीड़ित को न्यायालय में भागीदारी का प्रोविजन नहीं था, जिसको अमेंडमेंट करके पीड़ित पक्ष अपने शिकायत में भागीदार हो, अपने सुनवाई में कैसे न्यायालय उसको अग्रसित कर रही है, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किस ओर अग्रसित हो रही है, उसको जानकारी रखने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही अपने वकील को, पहले वकील नहीं रख सकते थे पीड़ित पक्ष, सरकारी अधिवक्ता ही पीड़ित का पक्ष रखते थे, तो अब सरकारी वकीलों को असिस्ट करने के लिए भी पीड़ित विक्टिम अपने वकील के माध्यम से अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। उसी तरह पीड़ित को पहले डर होता था कि मेरे गवाहों को धमकाया जाएगा, गवाह न्यायालय तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसके लिए भी पीड़ित को यह अधिकार दिया गया और पीड़ित के सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई ताकि वो न्यायिक प्रक्रिया में सरल तरीका से अपनी बात को रख सके और न्यायिक प्रक्रिया में अपना सहयोग कर सके। साथ ही मान लीजिए कि जिस व्यक्ति आपराधिक व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने FIR किया है या शिकायत वाद दर्ज किया है और वो किसी कारणवश एक्विटल हो जाता है तो उसके लिए पीड़ित को डायरेक्ट BNSS की धारा 413 के अंतर्गत उसे न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही पीड़ित के लिए मान लीजिए कि वो गरीब है, वो अपना वकील नहीं रख सकता है, तो उसको सुलभ न्याय पाने के लिए अपने विरुद्ध जो वो पीड़ित है उसके लिए भी उसको न्यायालय के द्वारा जिला विधिक प्राधिकार DLSA और झालसा में एक आवेदन दे करके एक पैनल एडवोकेट मांग सकता है और हमारे डालसा और झालसा में अच्छे हर तरह के एडवोकेट्स का एक पैनल है जो उनकी बातों को निशुल्क रूप से सहायता दे सकता है जी। उसी तरह सुरक्षा का अधिकार है और सबसे बड़ी बात है उसको उसमें पीड़ित को के पक्ष में गोपनीयता का भी अधिकार उसको दिया गया है। मान लिया जाए कि किसी महिला के द्वारा एसिड हुआ हो, बलात्कार हुआ हो, तो उसके परिचय को उजागर करने से कानून रोकता है। उसी तरह और अगर बात करें तो पहले न्यायालय में वो सुनवाई प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाता था, उसमें भी कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट जो आया है, संहिता जो आई है, उसमें की धारा 338 और 339 के अंतर्गत उसको न्याय पाने का भी अधिकार है। इस तरह इसके कई अधिकार इनको दिए गए हैं। अब इसको अगर हम लोग विस्तृत रूप से अगर चर्चा करें तो संहिता की धारा 396 में विक्टिम को वैसे विक्टिम जिसको सहायता दी जानी है, जैसे बलात्कार बोल लीजिए, पोस्को एक्ट के तहत पीड़ित व्यक्तियों को तुरंत 357C के अंतर्गत ट्रीटमेंट, चिकित्सा निशुल्क देने का अधिकार दिया गया है। इसमें चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या किसी भी तरह का अस्पताल हो। अब इसको हम और थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से आपके माध्यम से बतलाना चाहेंगे कि मान लीजिए कि पीड़िता ने FIR तो दर्ज कर दी, लेकिन आपराधिक मामले में अपराधी नहीं पकड़ा गया और उसका ट्रायल विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं हो पाया, पीड़ित तो है, तो ये एक क्वेश्चन उठता है कि अब उसको कहाँ न्याय मिलेगा। जो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा एक जो स्कीम बनाई है जिसको डालसा और झालसा के माध्यम से दिया जाता है, तो जहाँ ट्रायल नहीं हो पाता है वैसे पीड़ितों लोगों के लिए एक आवेदन डालसा में दें, और डालसा में जो एक प्रावधान है उसके तहत उनको तुरंत सुविधाएं दी जाएगी, जो एक सरकार के द्वारा जो पीड़िता को देने के लिए मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है उसको 15 दिनों के अंतर्गत जांच करके उसको अविलंब इस पे सहायता उनको आर्थिक रूप से दी जाती है।
1: यदि उसके अधिकारों की जानकारी नहीं है, वो पीड़ित हो गया है, इस तरह की तमाम घटनाओं का वो शिकार हो जाता है, चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो या अन्य भी आपराधिक मामलों में वो पीड़ित हो जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को कौशल की जानकारी नहीं होती है, इसके अभाव में वो फिर इस तरह के मामलों को सहता रहता है और लाचार और विवश अपने आप को मान लेता है, तो वो कहाँ संपर्क करें, कैसे संपर्क करें, और ये सारी प्रक्रियाएँ निःशुल्क है, वो हम उन्हें ये भी कहेंगे कि आप आइए, तो वो कहाँ संपर्क करें?
0: देखिए, इसके लिए प्रत्येक जिला में
1: जी
0: थाना है, उपायुक्त महोदय हैं और SP हैं जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य हैं, उनके यहाँ एक आवेदन दे सकते हैं और वो आवेदन संबंधित जिला के DLSA को अग्रसित कर दी जाती है, या प्रत्येक जिला में DLSA कार्यरत है और हर राज्य में झालसा भी कार्यरत है, वहाँ पे एक आवेदन दे करके अपनी बात रख सकते हैं, जिस पर निष्पक्ष जांच कर तुरंत पीड़िता को अग्रिम सुविधाएं और मुआवजा की राशि अग्रसित की जाती है।
1: और खास कर यदि पीड़ित महिला है तो उसके लिए भी अलग से अधिकार है, सारी कार्रवाई निःशुल्क रहेगी उसके लिए।
0: हाँ, अगर वो अपने तरफ से अगर कोई कानूनी कार्रवाई में उसको सहायता चाहिए तो वो आवेदन डालसा को दे और डालसा उसको अपने पैनल से, अच्छे एडवोकेट का एक पैनल है डालसा के पास,
1: निशुल्क
0: उसको ये सुविधा दी जाएगी।
1: जी कौशल जी, जो पीड़ित है वो असहाय और लाचार नहीं माने अपने आप को, भयभीत नहीं हो और वो इस प्रक्रिया का वो लाभ ले, तभी उसे सुलभ न्याय मिल पाएगा, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को?
0: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपने निर्णयों के द्वारा पीड़ितों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे अगर आप देखें तो दिल्ली डोमेस्टिक वायलेंस मूवमेंट फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बलात्कार पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता और मुआवजा के आवश्यक तत्व को बतलाया है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी एसिड अटैक पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास को अनिवार्य किया गया है। इस तरह के कई मामले हैं जिसमें कानून पीड़ितों के साथ है और पीड़ित के पक्ष में है कि हर पीड़ित को न्याय मिल सके।
1: जी, कानून हर लोगों के साथ है और कानून किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है, और यदि आप इस तरह के पीड़ित व्यक्ति हैं तो आप अपने अधिकारों का उपयोग कीजिए और आपको सुलभ और त्वरित न्याय प्रणाली के अंतर्गत आपको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कौशल कुमार जी, एडवोकेट एंड मेडिएटर झालसा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपराधिक मामलों में पीड़ित व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं इस विषय पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।

आपराधिक मामलों के पीड़ितों के अधिकार। अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट वार्ताकार थे श्री कौशल कुमार, अधिवक्ता मीडिएटर झालसा, भेंटकर्ता थे संजीव कुमार लाल। अब आज का कानून की बात प्रक्रम यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की थी। आकाशवाणी का यह रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर पर। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: पहले हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार और फिर 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बस थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित

0: सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
5: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
6: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, है प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honoured with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
9: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Department of Higher Education among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
8: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a four-day visit to India.
10: This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore

0: over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है. आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र. रांची में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल. राज्यभर के सभी मतदान केंद्रों पर आज ऑन मैप्ड मतदाताओं की सूची की जाएगी प्रकाशित. ऑन मैप्ड मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में करा सकते हैं मैपिंग. डीजीपी तदाशा मिश्रा ने अपराध और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दिए निर्देश. पुलिस गश्त बढ़ाने और आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर दिया जोर. राज्य भर में पड़ रही है भीषण गर्मी. 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा मेदिनी नगर का तापमान. कल तक हीट वेव चलने की चेतावनी. और रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू. पुरुष 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल मुकाबले में अनिमेश कुजूर ने 10.15 सेकंड के साथ बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे. रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. एक रिपोर्ट.
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है. देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं. यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: यह रोजगार मेला झारखंड समेत देश भर के 47 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. रांची में कार्यक्रम का आयोजन सीसीएल ऑडिटोरियम में होगा. इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे. राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर आज ऑन मैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी. यह सूची 2 सप्ताह तक प्रदर्शित की जाएगी. सभी ऑन मैप्ड मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपनी मैपिंग करा सकते हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में यह निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और पुनर्निरीक्षण का कार्य पूरी पारदर्शिता तथा गंभीरता के साथ संपन्न कराए जाए. राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने लातेहार दौरे के दौरान जिले की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उग्रवाद, संगठित अपराध, महिला सुरक्षा और नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली. बैठक में डीजीपी ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश देते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने और आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जनजातीय सांस्कृतिक समागम में शामिल होने नई दिल्ली जा रहे लोगों से टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मुलाकात की। इस मौके पर

0: चंपाई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज का प्रेरणा स्रोत बताते हुए कार्यक्रम की सफलता की कामना की।
1: रूढ़िजन प्रथा को बचाना है जो वर्षों से हमारा पूर्वजों ने हजार हजार साल पहले से लड़ाई लड़ते लड़ते जल जंगल जमीन का बांध और अपना अस्तित्व को बचाने के लिए खून का नदी बहाया। इन भाषा सांस्कृतिक जीवित रहे और इसका उत्थान हो।
0: रांची के टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम हैक कर कदाचार कराने का प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, बैंक चेक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 27 मई को शाम 4 बजे से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। राजधानी रांची समेत कई जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मेदिनीनगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और कोडरमा में दिन में तेज धूप व तापमान में वृद्धि होगी। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला में तापमान में वृद्धि के साथ लू चलने की संभावना है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से 750 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन 7 स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले संपन्न हुए। पुरुष 100 मीटर के दौड़ के सेमीफाइनल में अनिमेश कुजूर ने 10.15 सेकेंड का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वहीं महिला लंबी कूद में एनसी सोजन ने 6.75 मीटर की छलांग लगाकर नया मीट रिकॉर्ड कायम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को लेकर खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 4 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 62 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 27 ओलंपियन और कई एशियन एवं वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता हिस्सा ले रहे हैं, जिससे रांची में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने

0: राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान तारीख की घोषणा की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर और हिंदुस्तान ने लिखा है झारखंड की दो समेत 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान। दैनिक भास्कर ने जेटेट भाषा विवाद पर सत्ता पक्ष में मतभेद की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर होगी अभेद सुरक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर आज ऑन मैप्ड मतदाताओं की सूची की जाएगी प्रकाशित। ऑन मैप्ड मतदाता अपने BLO से संपर्क कर मतदाता सूची में करा सकते हैं मैपिंग। DGP तदाशा मिश्रा ने अपराध और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दिए निर्देश। पुलिस गश्त बढ़ाने और आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर दिया जोर। राज्यभर में पड़ रही है भीषण गर्मी, 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा मेदिनीनगर का तापमान। कल तक हीट वेव चलने की चेतावनी। और रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू। पुरुष 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल मुकाबले में अनिमेश कुजूर ने 10.15 सेकंड के साथ बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

0: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी का। ये रांची केंद्र है मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। लोकरंग कार्यक्रम में आई सुनते हैं पंचपर्ण या लोकगीत। कलाकार हैं दयाल हरिकोप और साथी। पहले संदेश।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: और इसी के साथ ही अब आज का लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग समाप्त हो रहा है। आप सुन रहे थे पंचपन ग्यारह लोकगीत दयाल हरिगोप और साथियों से। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। समय है फिल्मी गीतों के प्रोग्राम रस रंजन का। आइए सुनते हैं पहले संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज से, फिल्म का नाम है गंगा की सौगंध।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीटर वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। 9:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आपको ले चलेंगे दिल्ली, जहाँ से आप पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी के 30वीं धारावाहिक का रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। तो आइए चलें दिल्ली।

0: ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
2: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रही, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
2: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
3: बिल्कुल सहज रूप।
2: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
3: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
2: जी जी,
3: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि एक साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो। और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
2: अच्छा।
3: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
2: जी।
3: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा। 12 साल मैं बजा चुका और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
2: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
3: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
2: अच्छा।
3: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
2: जी।
3: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
2: हाँ।
3: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
2: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
3: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
2: जी,
3: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
2: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
3: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
2: जी।
3: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
2: हाँ जी।
3: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया, वो सिखाते थे मैं बजाने लगी और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
2: जी जी,
3: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
2: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया नहीं हो पाया?
3: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था।
2: हाँ।
3: फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
2: जी, जी।
3: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
2: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
3: बिल्कुल।
2: तो ये सवाल
3: हम,
2: ऐसा
3: हम,
2: है
3: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
2: अच्छा।
3: मेरे पेरेंट्स के।
2: हाँ हाँ।
3: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है,
2: हाँ,
3: चाहे लड़की हो या लड़का,
2: हाँ,
3: पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन और वो, तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
2: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय भाई दूज के समय तो आपकी नोकझोंक किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
3: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं जी, जी. तो इसीलिए उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे जी. उनका स्थान इतना था.
2: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं. आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
3: वायलिन में इंस्ट्रूमेंट में? इंस्ट्रूमेंट जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी. इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट.
2: चलो अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है. तो उसके बारे में हमें बताइए. जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए.
3: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
2: जी,
3: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है. इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए.
2: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं. आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी. तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
3: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई. बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ. निसार हुसैन खान साहब एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का. बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है तो वो मेरा बजाना वगैरह सुनकर के खुश होते थे.
2: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी. आपकी शहनाई पर बिस्मिल्ला खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर.
3: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया.
2: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी?
3: बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की. तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
2: था. बिल्कुल सही कहा
3: लोगों को
2: जी.
3: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मुझसे काफी सीनियर थे तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो.
2: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें?
3: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी. अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है.
2: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है. कुछ नया क्रिएशन तो आपका, क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई

0: संबंध रहा है। तो 40 साल आपने पढ़ाया है बीएचयू में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
1: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
0: जी बिल्कुल।
1: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
0: हाँ जी।
1: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में करोगी तुम, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतर। उसके बाद मैं कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, मैं बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहाँ वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का? तो लोग हाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सी करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
0: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट?
1: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
0: जी।
1: पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
0: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
1: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
0: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
1: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
0: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी रांची है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए पंडित मोर मुकुट केडिया का बजाया सितार पर राग अहीर भैरों में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें। दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। संगत करने वाले कलाकार हैं तबले पर श्रीजीत चैटर्जी।

0: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है मैडम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी। आप सुनेंगे चर्चा, बच्चों को मोबाइल पर नजर रखें, गर्भधारण की तकनीक, आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने। प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। पहले संदेश।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आपसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, भेंट वार्ता सुनेंगे और साथ ही साथ सदाबहार गानों का भी आनंद लेंगे। तो दोस्तों, आप तैयार हैं ना हमारे साथ इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कार्यक्रम का आनंद भी लेंगे। दोस्तों, मोबाइल फोन आज के दौर में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना दिन गुजारना लगभग मुश्किल सा हो गया है।

मोबाइल के कई लाभ हैं। यह हमें दुनिया से जोड़ता है, जिससे हम कहीं भी किसी से भी संवाद कर सकते हैं। इसे शिक्षा, व्यवसाय और मनोरंजन की सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती है। समय की बचत होती है और आपातकालीन परिस्थितियों में भी तुरंत मदद मिल सकती है। हालांकि मोबाइल फोन के कुछ नुकसान भी हैं। इसकी अत्यधिक उपयोगिता से आंखों और मस्तिष्क प्रभावित हो सकते हैं। मोबाइल के कारण ध्यान केंद्रित करने में कमी आती है और यह नशे की तरह आदत बन सकता है, जिससे सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं। इससे स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि नींद न आना, तनाव और मानसिक विकार भी हो सकते हैं। तो आइए एक खास विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं कि बच्चों की मोबाइल पर नजर रखें। मित्रों, आज के युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। पढ़ाई, जानकारी, मनोरंजन और बातचीत के लिए मोबाइल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आज मोबाइल चलाने लगे हैं। मोबाइल का ये सही उपयोग लाभदायक है, लेकिन इसका अधिक और गलत उपयोग बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो बच्चों को मोबाइल गतिविधियां पर उचित नजर रखें। आज के युग में मोबाइल का बढ़ता प्रभाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। आज बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल, वीडियो, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम में भी मोबाइल का उपयोग करते हैं। कोरोना काल के बाद ऑनलाइन शिक्षा के कारण मोबाइल का महत्व और बढ़ गया है। कई बच्चे घंटों तक मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, इससे उसकी आदत बन जाती है और वो वास्तविक दुनिया से दूर होने लगते हैं। बच्चों पर मोबाइल के दुष्प्रभाव पर यदि हम नजर डालें, तो देख पाते हैं कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर बुरा प्रभाव डालता है। जैसे पढ़ाई में गिरावट, मोबाइल पर अधिक समय बिताने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। वे गेम और वीडियो में इतना खो जाते हैं कि पढ़ाई में रुचि कम होने लगती है। दूसरा, आंखों और स्वास्थ्य पर असर। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, सिर दर्द और नींद की समस्या होने लगती है। बच्चे शारीरिक खेलकूद से दूर हो जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य कमजोर पड़ जाता है। तीसरा यह है कि गलत जानकारी और सामग्री। इंटरनेट पर अच्छी जानकारी के साथ साथ गलत और अनुपयुक्त सामग्री का भी मौजूद होती है। यदि बच्चे पर निगरानी न रखी जाए तो वो गलत दिशा में जा सकते हैं। सामाजिक दूरी। मोबाइल की लत बच्चों को परिवार और मित्रों से दूर कर देती है। वो बातचीत कम करते हैं और अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। बच्चों का लगातार मोबाइल उपयोग से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और तनाव बढ़ सकता है। कई बच्चे मोबाइल ना मिलने पर परेशान हो जाते हैं। मित्रों, बच्चों को मोबाइल से पूरी तरह से दूर करना संभव नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग सिखाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यह माता पिता का जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। समय सीमा तय करें, जैसे कि माता पिता को बच्चों के मोबाइल उपयोग का समय निर्धारित करना चाहिए। पढ़ाई और जरूरी काम के अलावा मोबाइल का सीमित उपयोग होना चाहिए। बच्चों से संवाद करें, बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें और उन्हें मोबाइल के लाभ और हानि समझाएं। डरने के बजाय समझाने की आदत डालें, अच्छे कार्य में लगाए। बच्चों को खेलकूद, पुस्तक पढ़ने, संगीत, चित्रकला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को हमेशा निगरानी रखने की आवश्यकता है। जैसे कि माता पिता को यह जानना चाहिए कि बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं और कौन कौन से ऐप का उपयोग कर रहे हैं। यदि बड़े लोग हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चों भी वही सीखेंगे, इसलिए माता पिता को भी संतुलित उपयोग करना चाहिए। मित्रों, मोबाइल आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन बच्चों के लिए इसका संतुलित उपयोग करना आवश्यक है। माता पिता की जागरूकता और सही मार्गदर्शन से बच्चे मोबाइल के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि उन पर प्यार, विश्वास और उचित निगरानी रखें। सही दिशा में उपयोग किया गया मोबाइल ज्ञान का साधन बन सकता है, जबकि गलत उपयोग बच्चों को जीवन को नुकसान पहुंचा सकता। मित्रों, आज के युग में IVF एक ऐसा नाम है या फिर तकनीक है, बहुत तेजी से लोगों के बीच सुना जा रहा है। कहा जाए तो IVF पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। बोलचाल की भाषा में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जा सकता है। यह एक आधुनिक चिकित्सा तकनीक है, जिसका उपयोग उन दंपतियों को माता पिता बनने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो मित्रों, आइए विशेष चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर करुणा झा, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल। और

0: इनका चर्चा का विषय है गर्भधारण की तकनीक IVF। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर करुणा झा जी को।
1: मित्रों नमस्कार जोहार। मित्रों माँ बनना हर महिला का एक सपना होता है, लेकिन किसी कारणवश वो माँ नहीं बन पाती है, कुछ समस्याएं आ जाती हैं। तो उस समस्याओं को दूर कैसे करें, आजकल एक नई तकनीक ईजाद है जिसे हम कहते हैं IVF या कृत्रिम गर्भाधान या IUI। इसके सहारे भी इस पद्धति के द्वारा माँ बनने का सुख हमारी माताएं पा सकती हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि IVF तकनीक या IUI के द्वारा महिला माँ कैसे बन सकती है और क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं रांची के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करुणा झा। मैडम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। माँ बनना हर स्त्री का सपना होता है, किसी कारणवश माँ नहीं बन पाती है तो कौन कौन सी समस्याएं आ जाती है और इस समस्याओं को कैसे इस तकनीक के द्वारा दूर किया जाता है।
2: नमस्कार। कि अगर कोई महिला माँ नहीं बन पाती है तो आपने सुना कि IVF एक तकनीक है, IUI भी एक तकनीक है जिसकी वजह से माँ बनने की सुविधा उसको मिल सकती है। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी कभी कोई दंपति गर्भधारण करना चाहे तो उन लोगों की जांच होनी चाहिए, पति और पत्नी दोनों की, काफ़ी विस्तार में, ताकि पता चल सके कि कारण कहाँ है। क्योंकि हम हर एक महिला जिसे बच्चा नहीं ठहर पाता उसको सीधा हम लोग IVF नहीं करते। IVF एक ऐसी तकनीक है जो थोड़ी जटिल है और इसके साथ साथ में महंगी भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि हमारे समाज में अधिकांश लोग इतने धनी नहीं होते कि वो आराम से 5 लाख रुपया निकाल सकें, तो ऐसी हालत में बेहतर होता है कि हम लोग बाकी और भी दूसरे तकनीक के बारे में सोचें जो सस्ती तकनीक है। तो अगर आप जांच करेंगे तो जांच करने पे पाएंगे कि तकरीबन 50-50% कारण दोनों ही पति और पत्नी में होता है। इसलिए ये ख्याल करना, ये सोचना कि स्त्री ही उसकी वजह होगी जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा है, ये बिल्कुल ही निहायत गलत बात है। कि पति का जांच हम लोग हमेशा पहले करते हैं, उसके धातु में बीज किस तरह के हैं, सही संख्या में है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, गतिमान है कि नहीं, इन सब चीज़ की जानकारी हम लोग लेते हैं। और अगर कहीं गड़बड़ी लगी तो हम लोग विस्तार में फिर उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पुरुष में हम लोगों को जांच करना पड़ता है धातु का, जबकि स्त्री में हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि क्या उसे उनकी उम्र कितनी है, क्या उनके हर एक महीने में अंडा बन रहा है, अंडाणु बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और क्या उसकी अंदर के पूरी योनि से लेकर के पूरी गर्भाशय और दोनों नलियां फेलोपियन ट्यूब्स वो पूरे खुले हुए हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक ये तीन कारक सही ना हो तो बच्चा ठहरना संभव नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ होती है कि सारी चीज़ें ठीक हो इसके बावजूद उम्र, अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा 40 के करीब पहुंच जाए तो वैसी हालत में भी उसके अंडाणुओं की शक्ति बहुत घट जाती है और मुश्किल से कुछ अंडे बन पाते हैं जिसमें फिर बच्चा ठहरना मुश्किल होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये तीनों कारण हम लोगों को ढूंढना पड़ता है और विस्तार में जांच करके देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी स्त्री की दोनों ही नली बंद हो, बिल्कुल बंद हो, जो खोली नहीं जा सके, तो उसको तो IVF करना ही पड़ेगा। और अगर किसी पुरुष के धातु में बीज नहीं है या बहुत कम है तो उनको भी कम वालों को तो चलिए हम लोग IVF से बच्चा ठहरवा सकते हैं। वो सिंपल IVF नहीं होता है, IVF कहते हैं हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है जबकि हम लोग बच्चा ठहरने के प्रोसेस को, इस विधि को शरीर के बाहर हम लोग उसको करें, अपनाएं। यानी हम लोग लेबोरेटरी में स्त्री के शरीर से अंडे को निकालते हैं और उसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में डाल के रखते हैं, पति के धातु को लेते हैं, फिर उसकी खास किस्म की सफाई होती है, फिर उसको भी हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और साथ मिलाते हैं। दोनों जब मिल जाए तो मिलने के बाद उसे भ्रूण बनता है। ये भ्रूण कम से कम 3-4 दिन 5 दिन का हो जाए तो फिर हम लोग महिला के यूट्रस में, बच्चेदानी के अंदर में उसको डाल देते हैं। ये IVF का तरीका हुआ। लेकिन जिनके बहुत कम धातु में बीज है, ऐसी हालत में बच्चा नहीं ठहर पाता है, तो हम लोग उनको ICSI करते हैं। ICSI का अर्थ होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर मान लीजिए किसी पुरुष के धातु में सिर्फ 1 या 2 बीज है लेकिन वो

स्वस्थ है। तो हम लोग उस बीज को वहाँ से निकालते हैं और उसकी सफाई करके उसको सीधे एक सिरिंज में ले करके एक अंडे के अंदर में एक स्पर्म डाल देते हैं, उसको सीधे अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से वो भ्रूण बन जाता है। और ये जो भ्रूण बनता है फिर इसको हम लोग महिला के गर्भाशय में डाल के आगे बढ़ने का इंतज़ार करते हैं। ये भ्रूण धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते अगर स्वस्थ रहा, हर एक हालात अगर अनुकूल हुए तो फिर वो शिशु बन जाता है। तो ये मैंने आपको बताया IVF और ICSI के बारे में। ये दोनों बहुत ही महंगे तकनीक हैं, होते हैं तो बहुत अच्छे, क्योंकि जिनको दूसरी तरह से कोई बच्चा ठहरने की कहीं आशा ही ना हो और उन्हें बच्चा अपना बच्चा हो सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें खर्च करीब समझ मान लीजिए कि आपको 4-5 लाख के आसपास पड़ जाता है। क्या आपको लगता है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं? आप सभी शायद नहीं। घर बेचना पड़ेगा, सामान बेचना होगा, कर्ज लेना पड़ेगा। सो बेहतर है कि हम लोग इससे हल्के तकनीक की तरफ जाएं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्त्री की नली पहला जांच है जिसके लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी, यानी नीचे यूट्रस के अंदर हम लोग दवा डाल करके एक्सरे लेके देखते हैं कि नलियाँ ठीक हैं कि नहीं, दोनों नली ठीक है, एक नली ठीक है या बिल्कुल ही बंद है। होता क्या है कि ये जो टेस्ट हम करके देखते हैं जिसमें नली बंद आती है, बहुत वक्त ऐसा होता है कि उसमें नली बंद होती नहीं है, लेकिन इस तकनीक में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से गलत रिपोर्ट भी आता है। तो हम लोग लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं जिसमें पेट के अंदर एक पतली नली जाती है और उसकी वजह से वहाँ अंदर में हम सारी चीज़ें देख सकते हैं और फिर देखते हैं नली खुली है कि बंद है। और नली अक्सर उसमें हम देखते हैं 50% से ज़्यादा हालात में कि नली खुली होती है लेकिन रिपोर्ट में नेगेटिव लिख देते हैं, या नली खुली हुई आती है दिखती है लेकिन वो बंद होता है। इसीलिए हम लोग कोई भी सर्जरी करने के पहले, IVF जैसी तकनीक को अपनाने के पहले, हम लोग एक लेप्रोस्कोपी करके देख लेते हैं और दूसरा है हिस्टेरोस्कोपी, जिसकी वजह से हम लोग यूट्रस के अंदर वो पतली नली डाल के उसके अंदरूनी हिस्से को देख लेते हैं जहाँ बच्चा ठहरेगा, जहाँ भ्रूण जा करके आराम करेगा और वो बढ़ पाएगा। तो वो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर ठीक है तो बनाने का तरीका है जिसमें कि हम लोग उसको रिपेयर करते हैं, बनाते भी हैं, अंदरूनी गड़बड़ियों को भी हम लोग ठीक करते हैं, नलियों को भी हम लोग खोलते हैं। ये सब उतना महंगा नहीं होता जितना कि IVF होता है। तो ये सारी तकनीक को अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नलियाँ खुल गईं, ठीक हो गई, तो ऐसी हालत में हम लोग पति का स्पर्म लेके, धातु ले, बीज लेके उसकी सफाई करके इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन IUI जैसे सस्ते विधि का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि पति का स्पर्म धातु ले लिया, उसकी सफाई कर ली स्पर्म की और सीधे उसको हम लोग बच्चेदानी के अंदर में, गर्भाशय के अंदर में डाल देते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं, जिसमें कि करीब समझिए कि 20-25% औरतें गर्भवती हो सकती हैं। तो ये सस्ता तरीका है, इसको ज़रूर करके अपनाना चाहिए IVF करने के पहले, अगर नली एक भी खुली हुई हो तो। आप 3-4 बार IUI कर रहे हैं फिर भी अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तब फिर अब IVF करिए, IVF करना चाहिए। तो ये हालात जिसमें कि पत्नी की दोनों नलियां बंद हों या उम्र ज़्यादा हो गई हो, अगर किसी की उम्र 45 साल की है, शादी भी आजकल बहुत देर से हो रहा है, तो ऐसी हालत में जब शादी लेट हो तो फिर बच्चा ठहरने का प्रोसेस भी लेट हो जाता है। तो पत्नी चाह रही है कि उसे बच्चा ठहरे, दंपति को बच्चा चाहिए और आप देख रहे हैं कि इनकी ओवरी का फंक्शन काफ़ी रुक गया है, तो ऐसी हालात में हम लोगों को फिर IVF करना पड़ता है। तो IVF में होता ये है कि या तो स्त्री के कुछ बचे हुए अंडे हों तो आप उनको निकाल लीजिए बाहर और उससे पति के स्पर्म को मिला करके देखिए। अगर अंडा सही नहीं हालत में है, बीमार है, तो इस स्थिति में हम लोग किसी और स्त्री से जो स्वस्थ है और कम उम्र की है उनका अंडा भी हम लोग ले सकते हैं, जिसको डोनर्स एग बोलते हैं हम लोग। तो डोनर से हम लोग डोनेट करवाते हैं अंडा, और अगर पति का स्पर्म ठीक है तो पति का ही धातु का बीज, या नहीं तो डोनर का भी हम लोग बीज लेकर के उसको मिलाते हैं, मिला करके फिर उससे भ्रूण बनता है और उस भ्रूण को हम लोग महिला के गर्भाशय में डालते हैं और IVF करके देखते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे तकनीक आ गए हैं जिसकी वजह से महिला गर्भवती हो सकती है। ये तरीका बहुत ही कारगर है,
इसमें करीब करीब समझिए कि 50 से 60% महिलाएं गर्भवती होती हैं।

0: लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में उसे गर्भ ठहर जाए, कभी कभी 3 से 4 बार भी करना पड़ता है। और चूँकि ये महंगा तरीका है, इसलिए इस चीज़ को हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं कि हम लोग कोई कुछ हल्का और कुछ सस्ता तरीका ढूंढें और कोशिश करें ये जानने की कि आखिर महिला या पुरुष दोनों या तो दोनों में ही कहाँ गड़बड़ी है जिसकी वजह से बच्चा ठहर नहीं पा रहा है। तो इस जानकारी के साथ जब हम लोग कोशिश पूरी मेहनत करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि शायद हम लोग को 10 से 15% ही ऐसी महिलाएं जिनके बच्चा नहीं ठहर रहा है उनको IVF की ज़रूरत है, और अधिकांश औरतें बिना IVF के भी गर्भवती हो जाती हैं।
1: मैडम, इन सारी प्रक्रियाओं को जब हम अपनाते हैं तो किन किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता हो जाती है महिलाओं को, क्योंकि एक बहुत चुनौती भरा कार्य हो जाता है।
0: देखिए, सावधानी, अगर बच्चा ठहर जाता है अच्छी तरह से, एक बार वो बच्चा नॉर्मल ढंग से प्राकृतिक ढंग से ठहरे या IVF या IUI के द्वारा ठहरे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको सुला के रखते हैं 9 महीने तक। वो अपना हल्का फुल्का काम घर का कर सकती हैं, सब कुछ करेंगी, लेकिन चूँकि बच्चा ये बहुत ही प्रेशस बेशकीमती बच्चा होता है, इसीलिए घर के लोग उनको ज़्यादा काम नहीं करने देते, सीढ़ी नहीं चढ़ने देते। ये बात ठीक है, हम लोग भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा काम वो ना करे, बहुत भारी भारी चीज़ें ना उठाए, सीढ़ियों पे बहुत दौड़ दौड़ के ना चढ़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चल भी सकती है, सीढ़ी भी चढ़ सकती है, हल्का फुल्का काम भी घर का कर सकती है। हाँ, इसके साथ दवाएँ हम लोग थोड़ा ज़्यादा ज़रूर देते हैं, जो कि हम लोग आमतौर पर सबको नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हार्मोन के रूप में होती हैं और यूट्रस को सावधान रखती हैं, यूट्रस में, ताकि जो बच्चा उसके अंदर में बढ़ रहा है उसको वो स्वस्थ हो सके और समय से बढ़ सके। तो स्वस्थ बच्चा पाने के लिए कुछ दवाइयाँ तो हम लोग को देनी ही होती हैं, जो हम लोग आमतौर पर दूसरों को भी देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है
1: जी।
0: और कुछ ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये औरतें जो ज़्यादा उम्र की होती हैं, जिनको हम लोग IVF से बच्चा हम लोग करवाते हैं, उन लोगों को सिजेरियन की करने का जो उनका रेट है वो थोड़ा बढ़ जाता है।
1: डॉक्टर करुणा झा, आज के 9 दंपतियों को आप क्या कहेंगे?
0: 9 दंपतियों को तो मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्हें हड़बड़ाना नहीं है। जब पति पत्नी साथ रहते हैं, क्या उन्हें बच्चा चाहिए या नहीं, वो उसके लिए तैयार हैं कि नहीं मन से, आर्थिक तौर पे, तो उसके बाद ही वो बच्चे की तैयारी करें। और बच्चा ऐसा मजाक में नहीं ठहरना चाहिए, हमेशा पहले आप प्लानिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद आप पति और पत्नी दोनों ही अपने स्वास्थ्य का पूरा चेकअप करवा लीजिए कि आपको कहीं कोई बीमारी ना हो। अगर किसी तरह की दिक्कत है कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या फिर आपका जो है सो शुगर बढ़ा हुआ है या कहीं उसके अलावा और भी कोई बीमारी है, तो सारी चीज़ों को पहले आप कंट्रोल कर लें, स्वास्थ्य को बिल्कुल सही हाल में आप रखें, उसके बाद फिर बच्चे की प्लानिंग करें। बच्चा हमेशा प्लान्ड होना चाहिए, अनप्लान्ड बच्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको इस बात को समझना पड़ेगा। और ये जानकारी जो मैंने आपको दी कि आप लोग साथ रहें, अगर बच्चा चाहिए तो आप इसी तरह से साथ रहिए कि ओव्यूलेशन के समय आप लोग साथ हो सकें, ये काफ़ी ज़रूरी होता है।
1: तो मित्रों, बड़ी अच्छी जानकारी आज आप तक पहुंची। IVF क्या है, किस कारण से IVF करवानी पड़ती है, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, IUI क्या है, और कैसे हम एक नई जीवन की शुरुआत करें, माँ बनने की राह में हम आगे बढ़ें। डॉक्टर करुणा झा, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, जीवन शैली में बड़े परिवर्तन के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि निसंतानता। निसंतानता से प्रभावित दंपतियों के लिए IVF तकनीक कारगर साबित हो रहा है। इस वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके लाखों दंपति संतान सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो साथियों, IVF तकनीक के लाभ और इनके उपयोग पर हम सुन रहे थे श्रीमती करुणा झा को, और इनसे बात कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। मित्रों, अब बातों के इस खूबसूरत सिलसिले को थोड़ा सा संगीत का रंग देते हैं और सुनते हैं एक सदाबहार गाना।

0: मित्रों
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरगम का यह गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आशा करते हैं कि यह गीत आपको खूब पसंद आया होगा। मित्रों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। जितना हम कम समय में आत्मनिर्भर बनेंगे, उतनी जल्दी हम विकास की राह में अग्रसर होंगे। यदि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त बनेगा। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं, आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने। साथियों, मनुष्य के जीवन में आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करने की क्षमता रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है और सम्मान प्राप्त करता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी पर बोझ नहीं बनता, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान देता है। आज के समय में आत्मनिर्भर बनना केवल आवश्यकता ही नहीं, बल्कि सफलता की कुंजी भी है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। मित्रों, आइए हम समझते हैं कि आत्मनिर्भरता क्या है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने कार्यों और आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहना। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति किसी से सहायता ना ले, बल्कि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बने। आत्मनिर्भर व्यक्ति मेहनती, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होता है। आज के समय में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता अत्यधिक है। आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि हम हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। कोरोना महामारी के समय यह स्पष्ट हो गया कि आत्मनिर्भर व्यक्ति और आत्मनिर्भर देश ही संकट का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी कारण हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी दिया गया है, ताकि लोग स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और अपने कौशल को बढ़ाकर रोजगार के अवसर पैदा करें। दोस्तों, कभी आपने सोचा भी है सशक्त बनने का मार्ग क्या है? तो दोस्तों, सशक्त बनने के लिए शिक्षा, कौशल और मेहनत बहुत आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत पहचान कराती है, जबकि कौशल उसे रोजगार और आत्मविश्वास पैदा करता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान कर मेहनत करता है, वह निश्चित रूप से सशक्त बनता है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता भी समाज में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। आज महिलाएं शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, खेल और राजनीति जैसे हर एक क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही है।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, जिसमें चर्चा हुई बच्चों की मोबाइल पर नजर रखें। साथ ही भेंट वार्ता थी गर्भधारण की तकनीक IVF, भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर करुणा झा और भेंटकर्ता थे संजीव कुमार लाल। इसके साथ ही कार्यक्रम कल्याणी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम जोहार रांची बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम जोहार रांची सुनने वालों को मेघना का जोहार नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप? गर्मी तो बहुत हो गई है, लेकिन आप गर्म ना हो और ख़ुद को हाइड्रेट रखें। खूब सारा पानी पिए, मौसमी फल जैसे कि मौसमी फल सब्जियां, बराबर अपना संतुलित आहार लें और ख़ुद को हाइड्रेट रखें। कार्यक्रम जोहार रांची आगे बढ़ाते हुए आज का सुविचार सुनते हैं। तो आज का सुविचार है, हमारे जीवन यात्रा में धैर्य हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि यदि हमारे पास धैर्य है तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुँच ही जाती है, सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी शांत रखती है और हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का साहस देती है। जीवन में जितनी भी देरी लगती है वो बेवजह नहीं होती, हर चीज़ अपने सही समय पर सही वजह के साथ आती है। इसीलिए धैर्य रखे, भरोसा बनाए रखे और सबसे ज़रूरी है चलते रहे, क्योंकि जो आपका है ना वो आपको समय आने पर ज़रूर मिलेगा।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही कर पड़े भारतीय सेना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर
3: संदेश के बाद कार्यक्रम जोहार सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मौसम के मिजाज के बारे में। तो झारखंड में पूरी तरह से गर्मी और लू से बेहाल है पूरा झारखंड, और 14 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक है। और ये सुन के आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा कि दो दिनों तक और राहत अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, लेकिन 25 मई के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची का तापमान भी 39.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शुक्रवार को राज्य भर में सबसे गर्म पलामू ज़िला रहा, जहाँ का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिन भर तपिश की वजह से लोग घरों में रहने को विवश दिखे और दोपहर के वक्त पूरे सड़क पर सन्नाटा रहा। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार शनिवार को भी पलामू, चतरा, गढ़वा और कोल्हान के ज़िलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं संथाल समेत सभी जिलों में, जैसे कि धनबाद, बोकारो में तेज़ हवा और गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। तो इस हीट वेव में तप रहा है पूरा झारखंड, तो इसमें आप अपने खुद का ख़ास ख्याल रखें और ख़ुद को हाइड्रेट रखें। और इस के बाद हम सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, आज की तारीख कौन सी है? हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, याद है आपको? कौन सी? वही कछुए और खरगोश की कहानी। चलिए मैं आपको थोड़ा याद कराती हूँ कि बहुत पहले की बात है, एक जंगल था, वहाँ एक कछुआ और खरगोश रहते थे। कुछ याद आ रहा है? फिर दोनों में एक दिन रेस लगती है कि दौड़ने के इस रेस में प्रथम कौन आए। तो खरगोश तो तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़कर बीच में पेड़ की छांव में बैठ जाता है, क्योंकि कछुआ तो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। और खरगोश को पेड़ की छांव में फिर नींद आ जाती है, लेकिन वहीं कछुआ धीरे धीरे चलने के बावजूद, निरंतर चलने के कारण जीत जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज बचपन की ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा कछुआ है, आज उसे संरक्षण की ज़रूरत है। जी हाँ, कछुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष आज के दिन, आज की तारीख है 23 मई को, विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन, आवासीय क्षेत्रों का विनाश, प्लास्टिक प्रदूषण के कारण कछुओं को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए कछुआ अभयारण्य और कछुआ संरक्षण केंद्र खोलकर उन्हें संरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आज के दिन यानी 23 मई को इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य कछुआ और उनकी तेजी से लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति नाल व्रण उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। महिलाओं में प्रसव के दौरान इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। वहीं 23 मई 1929 को ही मिकी माउस का पहला पुण्य वाला कार्टून द कार्निवल किड भी रिलीज हुआ था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 23 मई यानी आज के ही दिन 1984 में बछेंद्री पाल ने दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया था। ये एक महान उपलब्धि है और ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो भारत की पहली और दुनिया की पांचवी महिला बनी।

दोस्तों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो समाज, देश और दुनिया के समक्ष प्रेरक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 23 मई के दिन जन्मे कुछ विशेष लोगों के बारे में आपको जानकारी देते चलती हूँ। आज 23 मई 1919 को महान शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ और जयपुर की पूर्व महारानी महारानी गायत्री देवी का जन्म हुआ था। सुगंधा मिश्रा, जो कि एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और हास्य कलाकार थी, उन्होंने भी आज के दिन ही जन्म लिया था। 23 मई 1980 को हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता समीर कोचर और दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री भामा का भी जन्म, यानी आज के ही दिन 23 मई 1980 को हुआ था। वहीं मराठी सिनेमा और रंगमंच की अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित का भी जन्म आज के दिन 1986 में हुआ था। वहीं भारतीय पार्श्व गायिका टिया वाजपेयी भी आज के ही दिन, यानी कि 23 मई 1988 को उन्होंने जन्म लिया था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दुनिया को अलविदा करने के बाद भी अपने अच्छे कर्मों के कारण याद किए जाते हैं। तो बात करते हैं प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद और इतिहासकार राखालदास बंदोपाध्याय का, जिनका निधन आज के ही दिन यानी 23 मई 1930 को हुआ था। उन्हें मुख्य रूप से मोहनजोदाड़ो में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज करने के लिए जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट और पूर्व टेस्ट विकेट कीपर माधव मंत्री का निधन भी आज के ही दिन 2014 में हुआ था। वहीं अ ब्यूटीफुल माइंड फिल्म के प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ और नोबल पुरस्कार विजेता जॉन नैश का भी निधन 23 मई 2015 को हुआ था। वहीं मशहूर जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए जाने माने दिग्गज कलाकार रोजर मूर का भी निधन आज के ही दिन 2017 में हुआ था। बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि अब इस कार्यक्रम को बस यही विराम देना होगा। तो कार्यक्रम की होस्ट और अपनी दोस्त मेघना को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, यह बताते हुए हमें अपार हर्ष और खुशी हो रही है कि आकाशवाणी के प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 90 वर्षों से आकाशवाणी न सिर्फ अपने श्रोताओं का मनोरंजन कर रहा है बल्कि एक लोक सेवा प्रसारक की भूमिका में भी अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाता आ रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हमने एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, स्वर यात्रा के 90 वर्ष। और इस कार्यक्रम में हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं, उन विभूतियों से मिलवाते हैं जिन्होंने आकाशवाणी को इस भूमिका को निभाने में अपना अहम योगदान दिया है। मुख्य रूप से आकाशवाणी रांची के ग्रामीण सभा कार्यक्रम से, यानी ग्रामीण कार्यक्रम से आप जुड़े रहे और संतु भाई के नाम से बहुत लोकप्रिय रहे। तो आइए आज हम इस कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री प्रमोद कुमार राय जी को। प्रमोद जी नमस्कार।
1: जोहार जोहार नमस्कार।
0: सबसे पहले तो आकाशवाणी से आप कब जुड़े और वो पहला अनुभव साझा करें जब आकाशवाणी से पहली बार आप जुड़े थे।
1: सबसे पहले तो हम ये बताए थे खुजब कि हमारे परिवार में 1952 ईस्वी में जब पहली पंचवर्षीय योजना इस देश में लागू हुए रहे से बेरा हमार परिवार में सरकार वर्ष से लाइब्रेरी और रेडियो ले जाए रहे। तो रेडियो से करीबी तो घरे से शुरू होलक, बचपन से शुरू हो गया। हाँ, और रेडियो का हमने सुनत रही और सह वाला से रेडियो के बारे में जानत भी रही थोड़ा मोड़ा। बाद में हमार परिवार से एगो कलाकार रहे पांडे दुर्गानाथ राय कहीं, वो भी आकाशवाणी में सेवारत रहे 11 साल और वो आकाशवाणी कर पटना केंद्र में भी जाके अपन प्रसारण नागपुरी में दिले, तो और भी नजदीकी ऊपर से बढ़लक। बाद में 1958-59 ईस्वी में करीब करीब उनकर भी नियुक्ति आकाशवाणी का रांची केंद्र में हो गलक। तो इत उनकर साथे हम रहत रही, आगे जाकर सिलसिला आकाशवाणी में शुरू होलक और छुआ मनकर प्रोग्राम खास करके बाल सभा में जो नागपुरी में होते रहे उकर खातिर नागपुरी भाषी परिवार कर छुआ मन हिया नहीं भेटात रहे, तो घर से छुआ के लाने कर बात रहे उकर में, तो हमके आगे कर मौका मिलल तो आकाशवाणी से ईसन घर अंगना नियर हो गल, तो अपरिचय जैसे माहौल नहीं रहे।
0: मतलब पहली बार जब आकाशवाणी से आप जुड़े एक नियमित कर्मचारी के रूप में, नियमित उद्घोषक के रूप में, तब तक आप काफी कुछ आकाशवाणी से वाकिफ हो चुके थे एक बाल कलाकार के रूप में।
1: हाँ, बाल कलाकार के रूप में और नाटक ड्रामा कलाकार के रूप में नागपुरी कर,
0: तो वो भी कम उम्र में ही बालक के रूप में ही आपने नाटक भी करना शुरू कर दिया।
1: बालक के रूप में भी, युवा के रूप में भी।
0: आकाशवाणी आने से पहले आपके मन में जब बहुत छोटे रहे होंगे तो उस समय इसके पहले कभी मन में आया था कि आकाशवाणी से जुड़ के और पूरा करियर हम आकाशवाणी को देंगे?
1: नहीं नहीं,
0: मतलब परिस्थिति ऐसी बन गई।
1: हाँ, हाँ,
0: और माहौल ऐसा मिल गया आपको। हाँ, कि आपका जुड़ाव आकाशवाणी से हो गया।
1: हाँ,
0: ग्रामीण कार्यक्रम में जब आप जुड़े नियमित तौर पर तो उसमें आपकी क्या भूमिका थी?
1: एक तो हमारे जन्म गाँव में होला और गाँव में भी ऐसा गाँव में जहाँ पर हर किस्म का आदमी जो कि झारखण्ड का विशेषता है, आदिवासी है, सदार है और धर्मावलंबी है, सबकर बीच में हम हुआ जन्म पाली और वह संस्कृति में, वह स्वभावों में और वह माटी में धूरा में खेल के बड़ होली। तो रच बस गलक छोटा नागपुर या झारखंड का धरती कर माटी पानी सब रच बस गलक से बोलक में या संगीत में या कविता में वो अपने आप समाई गलक। हमारे परिवार वैसे भी दशकों पहले 200-300 बरिस से नागपुरी का एगो प्रसिद्ध कवि होले अनूप राय, तो वो बिराकर काल में बहुत पुराना काल में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का समकक्ष का रचना वो अपन कही रहे, तो रचना मन के पढ़ते गेली हम

0: और हमारे बाबा भी कवि रहे तो उनके भी पढ़ ली हम, गांव घर में संगीत का माहौल रहे उनके भी देख ली हम, और फिर यहाँ कर उपजा खेती बाड़ी धूर जंगल भेड़ बकरी सबकर संगे एकात्म होली और वो परिवेश और वो परिस्थिति हमके अपने आप में समाय लेलक और हम वही लिए अपने आप के बनाए ले ली।
1: आकाशवाणी से जब आप जुड़े और ग्रामीण कार्यक्रम से जुड़े, बाहर आकाशवाणी के जो श्रोता थे उनकी कैसी प्रतिक्रिया मिलती थी, उसका क्या तरीका था, आप कैसे जान पाते थे कि आपके कार्यक्रमों को लोग कितना पसंद कर रहे हैं?
0: सिमरा में वहाँ पे लगे कि एकमात्र साधन जो आकाशवाणी से श्रोता मन के जाने कर रहे वो रहे पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड कर माध्यम से श्रोता मन कौन कार्यक्रम के पसंद कर रहे, कौन चीज अच्छा लगलग, केकर विचार अच्छा लगलग, इकर जानकारी रेगुलर बराबर उम्र देते रहे। और पूरा आकाशवाणी में कहूँ तो महिला में हजारों हजार चिट्ठी आवत रहे पोस्ट कार्ड कर अंतर्देशीय में और पोस्ट कार्ड में, उसके माध्यम से हमारे मन आकलन करते रही का उमन के बेस लागल।
1: और किसानों के बीच जाकर कभी उनकी रिकॉर्डिंग की, इसकी शुरुआत हुई
0: 1972 ईस्वी हमके जहाँ तक याद है। 1972 ईस्वी में ग्रामीण कार्यक्रम का नाम बदल करके कृषि व गृह एकांश रखल गया, कृषि और गृह एकांश
1: जो अभी तक जारी है,
0: एक हद तक जारी है। और सरकार वर्ष से मैंने योजना वर्ष से ये विचार कर गया कि ग्रामीण कार्यक्रम जो एक घंटा का प्रोग्राम होला उकर में कृषि के आधा घंटा दे जाए और आधा घंटा समाज के दे जाए,
1: मतलब समाज जो सामाजिक इश्यूज है,
0: हाँ नहीं सामाजिक सांस्कृतिक जो भी समस्या मने है सिकल बारे में आधा घंटा और आधा घंटा पूरा पूरे कृषि के, इकर में कृषि कर बहुत बड़ा योगदान रहे।
1: कृषि तो बिल्कुल आर्थिक आधार भी हुआ करता था लोगों का, तो कृषि कार्यक्रम के अलावे जैसा कि आपने कहा कि आधे समय तक सांस्कृतिक और सामाजिक बिंदुओं पर आप कार्यक्रम करते थे, उन विषयों पर कार्यक्रम करते थे, उसमें क्या क्या गीत वगैरह भी उसमें शामिल होते थे?
0: सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है एक तो उमन कर हिया कर जो भाषा है उकर में प्रसारण कि हमर आदमी हमर प्रतिनिधि हमर बीच कर आदमी जे हमके जानेला हमर गांव के जानेला वो आदमी जाके हमर खातिर और हमर भाषा में जो बोलत है आकर्षण का केंद्र
1: बिल्कुल। और इसीलिए अभी जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की जो प्लानिंग की गई तो उसमें हमने यही डिस्कस किया कि क्यों नहीं इस कार्यक्रम को आपकी भाषा में, जिस भाषा में आप कार्यक्रम करते थे उसी भाषा में श्रोताओं तक पहुंचाई जाए।
0: और दूसरा आकर्षण लोक संगीत, समय कर प्रवाह में लोक संगीत जो यहाँ कर बहुत बड़ा सांस्कृतिक धरोहर है वो काल क्रम में एकदम खत्म हो जाता अगर आकाशवाणी नहीं रहता। यहाँ कर लोक भाषा के और यहाँ कर लोक संगीत के जीवित करने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। आज रांची विश्वविद्यालय में 9 भाषा कर पढ़ाई शुरू हो रख है और यहाँ कर संगीत नृत्य वाद्य और कलाकार मन दुनिया में जाके प्रदर्शन करत है तो एक बीजारोपण तो आकाशवाणी कर रख है।
1: आपकी नजर में उस समय जिस तरह से आकाशवाणी ने इन कलाकारों को मंच दिया, किसानों को भी एक मौका दिया कि जो भी वैज्ञानिक प्रगति हो या जो कुछ भी कृषि के क्षेत्र में हो रहा है पूरी दुनिया में वो समाचार उन तक पहुंचे, आप क्या मानते हैं आकाशवाणी की क्या भूमिका रही, किस तरह से देखते हैं?
0: बहुत बड़ा मैंने ये तो विषय है लेकिन हम देखब कि इसल देखिला कि कृषि कर उत्पादन के बढ़ाई में और किसान तक कृषि कर उत्पाद कर तकनीक के पहुंचाए के में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है और इकर में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे खेती करब, कौन बेरा में खेती करब, कौन बीज के लगाब, कैसे उकर खेत कर तैयारी करब, कीटनाशी में कौन तरह कर कीटनाशी कर प्रयोग करब, वर्षा नहीं आले का करब, इकर खेत कर रखवाली कैसे करब, खेत में दिया लागे तो उकर का उपाय करब, बहुत सब चीज कर जानकारी हमारे मन हियाँ कर माध्यम से प्रसारण कर माध्यम से किसान तक पहुँचा ली और परिणाम होला कि इस क्षेत्र में कई ठो गाँव तो कृषक गाँव हो गए जेकर में बेमौसम कर खेती होय के लागलक। बेमौसम कर खेती मतलब हमारे बचपन में जब रही तो हमारे मन देखत रही कि बरसात कर काल में सब्जी खाले नहीं मिलत रहे, कोई सब्जी नहीं मिलत रहे, आलू भी नहीं गोभी भी नहीं भिंडी वगैरह तो बात तो नहीं रहे। लेकिन ये कृषि कर जब प्रगति होलक और ये कृषि कर जब विकास के हमारे मन आकाशवाणी कल माध्यम से जन जन तक पहुंचा ली उकर परिणाम होलक कि 12 मास हमारे मन हर सब्जी यहाँ खाए लगली।
1: ये बहुत बड़ा परिवर्तन,
0: बहुत बड़ा परिवर्तन।

0: दूसर बात की हमने कर माय मने जब बड़ा छोट रही से बड़ा बरसात खातिर उमने बड़ी बनाए बनाए के रखत रहे है नी काले कि बरसात में कोई सब्जी हमारे मन के नहीं मिली तो इकरे से खाए लगे छो मने। लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो बारह मास सब्जी रकम रकम कर मिलत है, सब तरह कर मिलत है नी। छोटा नागपुर में कृषि कर उत्पादन वर्षा आधारित मानल जाए और यहाँ वर्षा कर बहुत अभाव रहे एक समय में। लेकिन ऐसन वैज्ञानिक मनकर निर्देश में उमन ऐसन मौसम में खेती कर ले जेकर पानी का कम से कम दरकार हो। रबी खेती यहाँ उकरे प्रचार होला, रबी का खेती यहाँ नहीं होते रहे। फिर गर्मी कर मौसम में जो दो इलाका है जे धान खेत है उकर में जे खीरा कद्दू नेनुआ भिंडी वगैरह की खेती होते वो भी पहले नहीं होते रहे। ये तो कृषि का योगदान है नहीं,
1: और उसमें आकाशवाणी की बड़ी
0: बहुत इके पहुँचा के तो आकाशवाणी का योगदान रहे। हमने मन कह दाओ कृषि वैज्ञानिक मन के ले ले करके और जात रही किसान मन का खेत मन में और वह देखत रही उकर किसान मेला लागत रहे उकर में जेके नहीं देख रहे से फल मन के देख लिया हमारे मने जे आकार कर जे साइज कर कद्दू खीरा कुहड़ा वगैरह जे अलग हुआ प्रदर्शनी में अद्भुत एक होला।
1: किसानों को भी इतना विश्वास था कि आकाशवाणी से जो चीज़ें प्रसारित की जा रही हैं वो उनके काम की हैं, उसको बिल्कुल वो फॉलो करते थे।
0: इकर सबसे बड़ा योगदान हो लगा कि किसान फॉलो तो करत रह लेकिन वो मने कृषि विश्वविद्यालय चल जाते रहे किसानों ने एक ई बात कर समाधान खातिर का कि प्रसारण के माध्यम से एकदम व्यावहारिक चीज तो नहीं बता पा रहे अपने शब्द कर माध्यम से बहुत व्यवहार कर चीज के नहीं बताल जा सकेला जेके कि करके दिखाए कर दरकार है प्रयोग करके। तो उकर खातिर ई विशा विश्वविद्यालय में किसान मनकर संयोजन होते रहे और उकर में जाके ट्रेनिंग भी लेते रहे मने और उके जाके पूछत भी रहे विशेषज्ञ मन से कि चलो हमारे गाँव में खेती होते तो दे बताए दे। एक उदाहरण है ये कांके के नजदीक पिठोरिया गांव, रांची के नजदीक चुटिया, ये बुड़बू प्रखंड का ठाकुर गांव।
1: अभी भी ये सब जगह जो है सब्जी के लिए बड़ा एकदम एक तरह से गढ़ माने जाते हैं।
0: तो ये तो होला कृषि के क्षेत्र में योगदान। इकर में मछली पालन पशुपालन सुअर पालन गौ पालन मधुमक्खी पालन और जितना किस्म कर मैंने उद्योग खातिर लाह पालन लाह पालन रेशम पालन ये सब कर भी जानकारी हमारे मन यहाँ से दिली। ये कृषि क्षेत्र में अलग लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जो प्रसारण होला वो भी बहुत बड़ा योगदान कर चीज बनला। जब देश आजाद होला तो सिबरा में ये गांव गांव कर और देश कर दशा विकल दशा रहे जे मन के स्मृति हुई पुराना आदि मन के वो मन शायद सोच पावे ना कि सिबरा में कोई चीज के कल्पना करना कठिन रहे कि कैसे खात रहें एक सांझ खात रहें एक सांझ उपास रहत रहें ये स्थिति रहे यहाँ छोटा नागपुर विशेष करके। तो भोजन कर आवश्यकता के भी पूरा कर लग कृषि लेकिन सामाजिक जो विषमता रहे अनपढ़ अशिक्षा अंधविश्वास शराबखोरी आपस में झगड़ा झाटी है नी डाइन बिसाही भूत प्रेत इस सब पर प्रसारण होलक और ये प्रसारण जैसे कहीं न कहीं बहुत भीतर तक उके असर करलक है और उकर समाज में परिवर्तन दिशत है।
1: और उस समय तो आकाशवाणी इकलौता
0: एक एक
1: माध्यम रहा होगा
0: इके हमारे मन संगीत के माध्यम से भी नाटक के माध्यम से भी वार्ता के माध्यम से भी और कविता के माध्यम से भी वो मन तक पहुँचा लियो चीज के।
1: सबसे प्रभावशाली कौन सा माध्यम अभी जितना आपने गिनाया उसमें सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा रहा जिसका असर ग्रामीणों पर सबसे ज्यादा पड़ता था? लोकगीत
0: लोकगीत में शब्द बहुत स्पष्ट क्लियर नहीं आवत रहे। कविता सबसे बड़ा माध्यम रहे जे बिना बाजा कर जे कविता गावल जात रहे उकर असर बहुत ज्यादा रहे। कविता माने संगीत संगीत में बाजा अगर ना होए तो शब्द ठीक जाए लो वहाँ और बाजा अगर हो गलत छोटा नागपुर क्षेत्र में जैसे की बजाय कर परंपरा है तो बहुत ज्यादा बाजा हो जाए ला तो शब्द पहुँच नहीं पा रहे ला तो जेकर शब्द पहुँच चाहिए तब वो मन कर प्रेरणा मिली तो बाजा के कम करके कविता कर माध्यम से नाटक कर माध्यम से शब्द कर जे पहुँच होला वो बड़ा योगदान देला। नाटक भी बहुत बड़ा योगदान देला और हमारे कर बातचीत भी बहुत योगदान देता मैंने चार आदमी बैठ के जो बतियात रहे हाँ उकर असर अनोखा रहे।
1: आकाशवाणी की एक भूमिका यह भी रही है कि यहाँ की जो संस्कृति है, जो यहाँ की लोक परंपराएं हैं, उसको संजोने में, सहेज कर रखने में आकाशवाणी की, मैं समझता हूँ, बड़ी भूमिका है। आपकी राय क्या है इस बारे में?
0: प्रभु जी, हम सच्ची लकी हमने मनी कर बारे में चर्चा तो कर ली कि आई जगह आकाशवाणी नहीं होता तो इस क्षेत्र का जो नौ भाषा का संगीत है, साहित्य है और भाषा है, ये तीनों कर का गलती होता कहा ले जा सकता, इतना बड़ा योगदान है। दूसरा योगदान ये है कि आज आकाशवाणी कर ई केंद्र कर माध्यम से नौ भाषा तो जिंदा हो, नौ भाषा का साहित्य तो बढ़ रहा है, उकर में शोध होते, हजारों हजार आदमी शोध करते हैं उकर में, उमर के काम मिल लो भाषा साहित्य कर, आकाशवाणी में कितना आदमी के योगदान मिल लग वो अलग बात है। लेकिन ये जो संरक्षण हो लग तो इकर से एक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में एक विभाग खुल गया, अब विभाग में कितना आदमी काम कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: है नहीं, संरक्षण भी होलक, संवर्धन भी होलक और शोध भी होलक उखर में और होते।
1: आपके समय में मुझे जहाँ तक याद है बहुत सारी राष्ट्रीय आपदाएं आती थी उस समय, शुरू में 60s में बात कर लें तो, या फिर देश पर कोई संकट है, इस तरह की स्थितियां भी आती रहती थी उस समय। आकाशवाणी की भूमिका उसमें क्या होती थी, क्योंकि संचार का सबसे बड़ा माध्यम, लोगों तक सूचना पहुंचाने का सबसे सरल और आसान माध्यम आकाशवाणी ही था।
0: हमके 1962 में जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहे, से बड़ा उम्र कम रहे हमार, लेकिन सेवरा से भी आपके स्मृति में आवे ला बात है नहीं, तो उकर में हम देख ली कि सैनिक बनकर महत्व के बहुत प्रसारण में स्थान दिल गलत पलटन कहत रहे है नहीं। अच्छा, उकर बाद 1965 कर युद्ध, उकर में भी कतरा कतरा गीत हमने मन ब्रॉडकास्ट कर ली उकर में, जुलमी याहिया खान कैसा है बेईमान, हमके यही दावे लोग याहिया खान हुआ कर प्रधानमंत्री रहे है नहीं, चलू तो भाई भारत जवान देख पहलवान, चीना है कैसा बलवान, इस टाइप कर गीत हमने बनाए बनाए के संगीत में संजोए के अब प्रसारण करत रही, जेकर से जनमानस में वो युद्ध कर प्रति विरक्ति ना हो, बल्कि ये योगदान जो मन पलटन मन देते हैं, जे मिलिट्री मन योगदान देते हैं, वो मन के मनोबल बढ़े, तो हर युद्ध में, हर आपत्तकाल में, और विशेषता ये रहा कि रेडियो के कभी बंद नहीं करल गलक, हमरे मन जे प्रसारक रही, जे रेडियो में प्रसारण कर रखावत रही, वो मन के स्पेशल सरकार भर से कर्फ्यू पास देवल गलक, जेकर से कि ऑफिस जाए के इमन प्रसारण के अबाध गति से प्रसारण रखें, सरकार कर सूचना के तुरंत अगर जन जन तक पहुँचाए के, गांव तक पहुँचाए के, तो कौन सा माध्यम रहे, अखबार का तो इतना प्रचलन रहे नहीं, और क्यों पढ़े जानते रहे क्यों नहीं पढ़े जानते रहे, लेकिन रेडियो में उके दे करके और जन सामान्य के सावधान कर जाते रहे उखर में, ये हमने मन देख ली।
1: कहा जाता है कि ये जो जो भी सांस्कृतिक विरासत है और जितने भी कलाकार हैं, साहित्यकार हैं या कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी ने उन सबको एक मंच प्रदान किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आकाशवाणी की क्या भूमिका रही उन्हें मंच देने में?
0: रुतावर मन कर बात के कही दिली 1972 कर आसपास कर बात है के, जब हम मान लो 2-3 साल हमारे आकाशवाणी नावल हुए रहे, तो यहाँ कर प्रसारण कर जो शैली हम देख ली, उकर से हमारे मन में एक बात जुक्ति आला कि ऐसा काल नहीं करल जाए कि जे कभी कलाकार बन ही आवे ना, वो मन के अलग से आपस में योगदान करके या परिचय करवाए करके यही कार्यक्रम की प्रस्तुति, चूंकि आकाशवाणी में समय सीमा रहे 20 मिनट या 30 मिनट का प्रसारण हम लोग बेसिस बेसिक कर सकते रहे, लेकिन खुला मंच में जाए आदमी तो रात भर प्रोग्राम हो सकत रहे, तो हमारे मन में सवाल अलग और हमारे मन कैठो कभी कलाकार मन से सलाह कर ली, हाँ ये तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, ये तो बहुत बढ़िया सोच है, तो ये कर परिचय से ये कर जो कवि बनावत रहे
1: आकाशवाणी में
0: अब कहाँ रहे के पूछत रहे से मेरा ने, वो मन के बुलाए के एक दिन तय होलक कि हाँ आज यहाँ प्रोग्राम कर जाए, और वैसा प्रोग्राम कर बाद में भरमार हो गया, और आज तो मंच इतना सजल है नागपुरी कर, बल्कि बहुत कलाकार मन कर से अपन जीवन बनाए ले, ले।
1: आप भी कवि हैं?
0: हाँ
1: आप भी लिखते हैं?
0: हाँ।
1: अगर एक छोटी सी कोई कविता 2-4 लाइन सुना दे हमारे श्रोताओं को।
0: कौन भाव कर कविता सुना जाए,
1: कोई भी जो आपको पसंद हो।
0: देखो ऐसा है कि नागपुरी एक ऐसा भाषा है जे कि का कहना कि हिंदी के रूप बोली है, देश में हिंदीतर भाषा है, मगही, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, पंजाबी, है ना, जकर में हिंदी का समावेश है
1: जी,
0: और हिंदी से ही निश्रित है ये।
1: हाँ, मतलब इसकी बोलियों के रूप में जानी जाती है जाती
0: तो, लेकिन नागपुरी कड़ी में छूटल है, जबकि एक साहित्य का भंडार बहुत भरल है। एक साहित्य का भंडार इतना भरल है, हमर मन में भाव आवेला अगर नागपुरी के पहले आदमी जानता तो हिंदी का भंडार और भरता है नी? तो इतना महान कवि और महान रचनाकार मन इकर में होले है, जेके की समाज के सामने में आवेक में बड़ा देरी भेल। तो हम भी कुछ रचना कर ली, बल्कि वह कवि बनकर, वह महान कवि बनकर प्रेरणा से कुछ रचना कर ली, लेकिन उकर से पहले हम एगो उ काल कर कविता का सुराय खोजा करके, जे बेरा में खड़ी बोली का प्रचलन हिया रहे भारतेंद्र चंद्र काल में, तो वो लिखा है ना, आखिरी एक दिन है मरना, तेही कारण काह सजन डरना, आखिरी एक दिन है मरना, तेही कारण काह सजन डरना, मातु पितु परिवार सकल जन, क्यों नहीं राखी सकाय सरना, तेही कारण काहे सजल डरना। इन नागपुरी का रचना है, लेकिन यहाँ के लागे लगे कभी मीरा दास मिल जाए, कभी सूरदास मिल जाए, कभी भारतेंदु मिल जाए, कहाँ कहाँ मिली इकर समकक्ष रचना, लेकिन इके नहीं जाने पा रहे आदमी मैंने। ये को हमारे परिवार में रचनाकार बहुत पहले हुए रहे, उनका चार पंक्ति हम सुना थी
1: जी जी।
0: वो लिखा ना, सिंधु सुता पति गौरी पति, सिंधु सुता पति गौरी पति, गणपति सुमरी मनाए, गणपति सुमरी मनाए, रचेउ विवेक कछु बिरह गति, फल फूल नाम बनाए, सकरा ग्राम निज धाम है, फणिपुर दक्षिण देश, वैद्य कुल में जन्म मुहि, विष्णु चरण लवलेश, संवत मुनि विधुखंड शशि, विधिमुख तिथि शनिवार, मास असार शुभ शुक्ल पक्ष, अधिन अनूप विचार।
1: बहुत सुंदर।
0: तो ई दर्जा का रचना नागपुरी में है, लेकिन इके संजोग से सिवरा कर साहित्यकार मन इके हुआ तक नहीं आने पारल है,
1: कोई कारण कुछ भी रहा।
0: हाँ हाँ, कारण कुछ भी रहे, लेकिन नागपुरी का महत्ता अपने आप में बहुत मुश्किल है। एक रचना रुके हम सुना थी है नी, जे की पूरा पूरी तो नागपुरी में राग रागिनी में लख है, हिंदी का छंद में की रचना है, लेकिन उनका में शब्द जैसे नागपुरी कर
1: बिल्कुल
0: समझक में भी दूसरा का सलाम हुई, ही से कई से भला।

रे सपना जागी जागी दिन राती देखी रहूं रे सपना संग संग जिए के मर के

0: उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
1: आकाशवाणी के हम कोनो काल में हम मान ली कि विश्वकर ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जेकर में कि हर विभाग कर हर चीज कर शिक्षा उपलब्ध है। जे आकाशवाणी में आलक जे इकर मरम के बुझलक उकर लिए ज्ञानी दूसर रखें, और वो धन्य है जे के आकाशवाणी में सेवा करे कर मौका मिललक और आकाशवाणी के छुए पारलको। कहे कि ज्ञान करी अजस्र स्रोत है आकाशवाणी, हमरे मन जे कुछ भी बने पारली जे कुछ भी अपन जीवन में उतराली है सब आकाशवाणी कर कृपा है, आकाशवाणी कर देन है, ये हम मान ली रहे। दूसरा चीज है कि समय कर संगे प्रसारण कर जो कला है प्रकाश कर जो विधा है ये विधा में परिवर्तन तो जरूरी है। कहे कि आप वही चीज के उस श्रोता नहीं सुने खोजी जो कि आज से 50 साल पहले सुनत रहे। संगीत के क्षेत्र में भी चाहे बात के क्षेत्र में विषय के चुनाव के क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हो गया है। एखन तो समय स्वयं परिवर्तनकारी है और परिवर्तन समय का अनिवार्य अंग है। तो विचार व्यवहार आचार समाज सब कुछ बदल जाएगा तो आकाशवाणी भी परिवर्तन हो लक है और परिवर्तन सुखद है। बस कामना यह है कि कैसे जुड़ाव बनल रहे आदमी कर, जुड़ाव बनल रहे, जुड़ाव ना टूटे और इके और सबलता मिले। हमार कामना है कि आकाशवाणी जैसे केंद्र के प्रसारण केंद्र के और सबलता मिले जेकर में समाज कर एक मानक रूप में ये आकाशवाणी अपने आप के रख पाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपने समय निकाला, हमारे श्रोताओं से बहुत अच्छी बात की, दिल से बात की, हृदय से बात की और वो सारी चीज़ें बताई और अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक श्री प्रमोद कुमार राय और प्रभु शरण की से उनसे बातचीत कर रहे थे। सहयोग प्रस्तुति थी बसंत कुमार की। हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपकी पसंद बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में पहला खत आया है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिम्बा कौर, बिहारी कॉलोनी महासुमंद से वली उल्ला फ़कीर, डब्लू उल्ला फ़कीर और परवीन आसमा फ़कीर। साथ ही बुलंद शहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी ने फिल्म इस फिल्म शर्मिली से इस गाने की फरमाइश की है, जिसके गायक है किशोर कुमार और शब्द रचना है गोपाल दास सक्सेना नीरज की और इस गीत को संगीतबद्ध किया है एस डी बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

अलीशा चुनाव और साथी की आवाज़ में अगला गीत फिल्म बंटी और बबली से। इस गीत की फरमाइश की है महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम वसीम अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम नदीम अकरम शमीम अकरम अमन अकरम ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। साथ ही ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम नेताम प्रोणिका प्रोणामिका और उत्कर्ष नेताम। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.
3: संदेश के बाद कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका एक बार फिर से स्वागत है. कार्यक्रम की अगली फरमाइश निदा फैजल के शब्दों में, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म आप तो ऐसे ना थे से है. इस गीत को संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना और कमल जोशी ने, और इस गीत की फरमाइश की है नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी, गोलाघाट से विजय केसरी, गौरी शंकर केसरी और शंभू केसरी, साथ ही आज़ाद नगर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां.

कार्यक्रम का अंतिम गीत येशुदास की आवाज़ में कुलवंत जैनी की रचना है और इस गीत को संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम है दादा। इस गीत को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। वहीं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। साथ ही दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें चर्चा होगी ऑनलाइन उच्च शिक्षा में महिलाओं के बढ़ते अवसर। साथ ही गीतों भरी कहानी भी प्रस्तुत की जाएगी। इसकी प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

भोर के उजाले के साथ ही मन की ऊर्जा से प्रकाशित करें अपना विश्वास जीवन में आगे बढ़ने का।

कार्यालय का पहला दिन और सभी अनजान चेहरे, थोड़ा घबराहट होना तो लाजमी है। जिस मैडम के अंडर में रहकर मुझे काम करना था, गरिमा राज नेम प्लेट पढ़ते हुए उनके कक्ष तक पहुंचकर कंपन भरे स्वर में मैंने पूछा, मैं आई कम इन मैम? टेबल पर नजर झुकाते हुए लिखा पढ़ी के काम में तल्लीन मैडम ने सिर उठाकर मेरी ओर देखते हुए बोला, यस आ जाइए। नमस्ते मैम, मेरा नाम नेहा है, बनारस से यहाँ मेरा स्थानांतरण हुआ है। एक सांस में सभी बात बोलकर राहत की सांस लेना चाहती थी मैं कि तभी मैडम गरिमा अपने बड़े गोल फ्रेम के चश्मे में से अपनी पारखी नज़र मेरी तरफ घुमाती हुई बोली, अच्छा अच्छा आप ही नेहा हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप अपना चार्ज ले लें और काम संभालें, जहाँ परेशानी होगी मुझसे पूछ लें। मैं धीरे से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई, पर डर था कि जा ही नहीं रहा था। मम्मा लंच तैयार हो गया क्या? तभी बेटे की आवाज़ नेहा के कानों में पड़ती है और उसका ध्यान भंग होकर पुनः रसोई के कामों में आ जाता है। हाँ हाँ बेटा बस दो मिनट, कहते हुए नेहा लंच पैक करने में लग जाती है। सुबह के घरेलू कामों को निपटाने के बाद नेहा तैयार होकर निकल जाती है ऑफिस के लिए। ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद हाथ में पहने घड़ी पर दृष्टि डालती है। अच्छा अभी 9 ही बजे हैं, ठीक भी है, 9:15 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगी। सोचते सोचते फिर से वो लीन हो गई बीते कल की इंद्रधनुषी दुनिया में। गरिमा मैडम के साथ काम करते संभवतः कुछ सप्ताह ही तो थे ना बीते हुए, जब एक सहकर्मी ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा था, गरिमा जी के साथ काम करती हैं आप? मैं सोच में पड़ गई थी, आखिर क्या बात है गरिमा मैडम के अंडर में रहकर काम करने में। मेरे मन का कौतूहल जानने के लिए बेचैन था, साथ ही डर भी कि गरिमा मैडम के साथ कार्य करने में इतना विस्मय क्यों। धीरे धीरे लोगों की दबी जुबान से पता चल ही गया कि गरिमा मैडम के साथ काम करने का मतलब सही नियम और कानून में रहकर अपने दायित्वों को पूरा करना, और यही गरिमा मैडम के जीवन का मूल मंत्र भी है। गरिमा मैडम के साथ काम करते करते कब वरिष्ठ कनीय का व्यवहार आपसी सद्भाव और प्रेम में बदल गया कुछ पता ही नहीं चला।

गरिमा मैडम अब गरिमा दीदी बन चुकी थी और ऑफिशियल कामों के साथ ही मेरे दुख दर्द परेशानियों की साझेदार भी बनने लगी थी। समस्या का हल निकालना और उसे अपने तक समेटना हमारी गरिमा दीदी को खूब अच्छे से आता है। मैडम यहीं उतरना है ना आपको? तभी ऑटो चालक की आवाज नेहा के कानों में जाकर टकराती है और यहीं उतरना है भैया कहते हुए अपनी तंद्रा तोड़ती हुई वह ऑटो चालक को पैसे देकर नीचे उतर जाती है। ऑफिस आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा रोज रहता है, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर भी मेरे अंदर आज इतनी हलचल क्यों? अपने कार्यों में लगी नेहा कुछ समझ नहीं पा रही है। शाम का वह समय जब कार्यालय से मैडम गरिमा की सम्मान पूर्वक विदाई की जाएगी धीरे धीरे नजदीक हो चला था। बेचैन नेहा अपने आप को झटकती है। रिटायर तो सभी को होना है, उम्र का यह पड़ाव है, आज उनके साथ तो कल मेरे साथ, फिर गरिमा दीदी की सेवानिवृत्ति पर इतनी वेदना मेरे दिल को क्यों हो रही? कहीं मैं अपने लाभ के बंधन से तो नहीं घिरी हूं? रजिस्टर में लिखते लिखते नेहा अपने अंदर के उठते सवालों का जवाब खुद ही तलाशने का प्रयास करती है। तभी सामने की कुर्सी पर बैठी गरिमा दीदी पर उसकी दृष्टि पड़ती है, जो अपने आंखों से में से भरे आंसुओं को चश्मे के अंदर ही अंदर छुपाने की कोशिश में लगी होती हैं। नेहा समझ चुकी थी कि जिस प्यार को आज वो छुपा रही है गरिमा दीदी उसे स्पष्ट देख रही हैं।

शाम के 4 बज चुके हैं। ऑफिस के मुख्य हॉल में सभी कर्मचारी एकत्रित हो चुके हैं। बड़ा सा गोल टेबल मिठाई के डिब्बों और सुंदर फूलों के गुलदस्तों से सजा ऐसा दिख रहा मानो जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत सतरंगी रंगोली से की जा रही हो। और ठीक सामने की कुर्सी पर बैठी गरिमा दीदी का आनंद उस वट वृक्ष के गौरव को झलका रहा था जिसकी छांव में न जाने कितने करियर ने सफलता के फूल खिलाए। रिटायरमेंट की इस भावुक और उल्लास भरी शाम में सभी सहकर्मियों ने अपने बीते स्वर्णिम दिनों को दिल से याद किया। अब बारी नेहा की थी। हाथ में माइक पकड़ी नेहा, आज लग रहा था कि उसके दिल के शब्दकोश से शब्द ही गायब हो गए हों। हॉल में सभी लोग शांत नेहा की तरफ देखने लगे और नेहा गरिमा दीदी की तरफ। तभी अचानक उसके मुख से शब्द प्रस्फुटित हो गूंज उठे पूरे वातावरण में। सेवानिवृत्ति कार्यों का अवसान नहीं, बल्कि नवल उदित वह प्रभात की बेला है जो संचित अपने अनुभव और कार्य प्रवाह की धारा से औरों की जीवन वाटिका को सिंचित करता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी गरिमा मैम का आने वाला कल सभी अकिंचन की सहायता करेगा। आप भले ही यहाँ कल उपस्थित ना हों, पर आपका व्यक्तित्व दीप शिखा सदैव चहु दिशा को उजियारा देकर हम सभी को गौरवान्वित करेगा। बोलते बोलते नेहा की आंखें भर आती हैं। तेजी से उठकर गरिमा दीदी नेहा के पास आ जाती हैं और उसे गले लगाकर ये कहते हुए आगे बढ़ जाती हैं, बोलते हुए कि जीवन चक्र है, कल नव प्रभात आएगा, स्नेह आपका यूं सदा मुस्कुराएगा, न टूटेंगे यादों के बंधन कभी, इन रिश्तों की उष्मा से जीवन उपवन सदा खिलखिलाएगा। तालियों की प्रतिध्वनि के साथ घड़ी की टिक टिक करती सुइयां भी शाम के 6 बजा चुकी थी। कार्यालय की वरिष्ठ मैडम गरिमा राज दीदी को खुशी मिश्रित भीगी नैनो

अभी आपने सुना सकियों गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक था जीवन चक्र। कहानी का लेखन और वाचन मधु चौबे यानी कि मेरा ही था। कार्यक्रम की आज की समय सीमा अब समाप्त होने को चली सकियों। कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी। इस वादे के साथ कि फिर होगी कभी मुलाकात, अब दीजिए अपनी रेडियो सखी मधु को इजाजत। नमस्कार।

0: गृहलक्ष्मी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। चर्चा हुई ऑनलाइन उच्च शिक्षा में महिलाओं के बढ़ते अवसर पर। साथ ही आपने अभी गीतों भरी कहानी भी सुनी। प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण शैक्षिक प्रसारण, जिसमें वार्ता होगी पौधों में परागण और उसके महत्व के बारे में। वार्ताकार होंगी प्राची गोयल, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार की और प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की।

0: लीजिए, प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय है पौधों में परागण और उसका महत्व। वार्ताकार हैं प्राची गोयल।
1: नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं प्राची गोयल आज उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। बच्चों, जब हम किसी सुंदर बगीचे में टहलते हैं तो हमारा मन रंग बिरंगे फूलों, उन पर मंडराती मधुमक्खियों और तितलियों को देखकर कितना प्रसन्न हो उठता है ना। अधिकांश लोग इस नज़ारे को देखकर मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और ये नन्हे कीड़े मकौड़े हमारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएं तो क्या होगा? शायद आप सोचेंगे कि कुछ फूल कम खिलेंगे या शहद मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर ये जीव ना रहे तो मानव सभ्यता भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएगी। बच्चों, आज हम उस जीवंत विज्ञान की बात करने जा रहे हैं जो आपकी खिड़की के बाहर, आपके बगीचे में और इस पूरी धरती पर हर सेकंड घटित हो रहा है। तो आज का हमारा विषय है पौधों में परागण और उसका महत्व। हम ये भी जानेंगे कि कैसे यह एक छोटी सी जैविक प्रक्रिया हमारे इकोसिस्टम, हमारी इकोनॉमी और हमारे वजूद को संभाले हुए है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि परागण आखिर है क्या। सरल शब्दों में कहें तो यह पौधों में प्रजनन यानी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। जैसे हर जीव को अपनी वंश वृद्धि के लिए नर और मादा अंशों के मिलन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों में भी होता है। फूलों के दो मुख्य भाग होते हैं, नर भाग जिसे हम पुंकेसर या स्टैमेन कहते हैं और मादा भाग जिसे स्त्री केसर या पिस्टिल कहा जाता है। नर भाग में नन्हे नन्हे दाने होते हैं जिन्हें पराग कर्ण यानी पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। जब ये पराग कर्ण किसी भी माध्यम से मादा भाग के ऊपरी हिस्से यानी वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसी क्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। एक बार जब पराग कर्ण सही जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां से वे फूल के अंडाशय यानी ओवरी तक जाते हैं और वहां निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद ही फूल फल में बदलता है और उसके भीतर बीज बनते हैं। यानी यदि परागण ना हो तो ना फल बनेगा और ना ही भविष्य के लिए बीज। आइए अब हम जानेंगे कि परागण यानी पॉलिनेशन के प्रकार कितने होते हैं। प्रकृति में परागण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें एक ही फूल के पराग कर्ण उसी फूल के मादा भाग पर गिरते हैं या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल तक पहुंचते हैं। यह उन पौधों में होता है जिन्हें किसी बाहरी मदद की बहुत कम जरूरत होती है, जैसे मटर, टमाटर और गेहूं। परागण का दूसरा प्रकार है पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। यह प्रक्रिया थोड़ी अधिक रोमांचक है। इसमें एक पौधे के फूल के पराग कर्ण किसी दूसरे पौधे जो उसी प्रजाति का हो के फूल तक पहुंचते हैं। प्रकृति इस प्रक्रिया को ज्यादा पसंद करती है क्योंकि इससे पैदा होने वाले फल ज्यादा पुष्ट होते हैं और बीजों में नई खूबियां भी आती हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन पराग कर्णों का पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण है? चूंकि पौधे तो स्थिर है, वे इमोटाइल हैं, वे अपने पराग कर्णों को खुद ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इवोल्यूशन के लाखों सालों में इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब तरीका विकसित किया है जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। पौधों ने दो रास्ते चुने, जैविक और अजैविक परागण यानी अबायोटिक एंड बायोटिक पॉलिनेशन। जब हम बात करते हैं हवा द्वारा परागण

की, जिसे विज्ञान में एनिमोफिली कहा जाता है, तो इसके उदाहरण हैं घास, गेहूं, मक्का आदि। इसमें हवा हल्के और सूखे पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती है। यहाँ पौधों को करोड़ों की संख्या में पॉलिन ग्रेन्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हवा का तो कोई भरोसा नहीं है कि वो सही पते पर कुरियर पहुँचाएगी भी या नहीं। पानी द्वारा भी परागण होता है। जो पौधे पानी के भीतर या किनारे उगते हैं, उनके पराग कण पानी की लहरों में तैरते हुए अपना गंतव्य ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो सबसे इंटेलिजेंट डिजाइन प्रकृति ने बनाया है, वो है जैविक परागण, यानी जीवों के माध्यम से परागण। दुनिया के लगभग 85-90% फ्लावरिंग प्लांट्स जीवों पर निर्भर हैं। पौधे इन जीवों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाते हैं। चमकीले रंग की पंखुड़ियाँ, तीखी या मीठी खुशबू, और सबसे बढ़कर नेक्टर यानी मकरंद, जो कीड़ों के लिए एक हाई एनर्जी ड्रिंक की तरह है। जब कोई मधुमक्खी, तितली या भंवरा फूल पर बैठता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण पराग कण उनके शरीर से चिपक जाते हैं। जब वे दूसरे फूल पर जाती हैं, तो वहाँ वे कण गिर जाते हैं। यह प्रकृति का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बिजनेस मॉडल है, जहाँ दोनों पक्षों का फायदा है। हमारे अगले पॉलिनेटर्स हैं पक्षी और जानवर। हमिंगबर्ड जैसे छोटे पक्षी और कुछ क्षेत्रों में चमगादड़ भी परागण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। चमगादड़ रात में खिलने वाले बड़े फूलों का परागण करते हैं। वे केले, आम और कुछ कैक्टस प्रजातियों के परागण में सहायक होते हैं। यहाँ तक कि इंसान भी कृत्रिम रूप से यह कार्य करते हैं। बच्चों, अब बात करते हैं कि यह प्रक्रिया हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। यदि आप 12वीं के छात्र हैं, तो आपने इकोलॉजी में इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा जैसे वैज्ञानिकों ने बताया था कि प्रकृति हमें जो मुफ्त सेवाएं देती हैं, उनकी कीमत खरबों डॉलर में है। परागण उसी में से एक है। जरा सोचिए, वैश्विक स्तर पर हम जो भोजन करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कीट परागण पर निर्भर करता है। आपकी सुबह की कॉफी, बादाम, सेब, संतरा, तरबूज, सरसों, मिर्च, टमाटर, ये सब उन फसलों के उत्पाद हैं जिन्हें पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है। यदि दुनिया से पॉलिनेटर्स ही गायब हो जाएं, तो हमारी डाइवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी। तब हमारे पास खाने के लिए सिर्फ गेहूं, धान और मक्का जैसी हवा से परागित होने वाली फसलें ही बचेंगी। यानी हमारी थाली से सारे रंग, सारे विटामिन्स और सारा स्वाद ही गायब हो जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, तो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था में परागणकर्ताओं का योगदान हर साल अरबों डॉलर का है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं, अगर परागण की दर गिरती है, तो सीधे तौर पर किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो पहला और इसका सबसे बड़ा महत्व हमने देखा, खाद्य सुरक्षा, और दूसरा है स्थानीय वनस्पति और जैव विविधता। बच्चों, प्रत्येक पौधा और जीव एक दूसरे पर जीवन, आहार, आवास और भोजन के लिए निर्भर करते हैं। प्रकृति में हर कीट पतंगे का एक होस्ट प्लांट होता है, जिस पर वे अपने अंडे देते हैं। उनके लार्वा उनके पत्ते खाकर बड़े होते हैं। एक वनस्पति का लुप्त होना, यानी एक कीट का जीवन चक्र टूट जाना। अतः स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। बच्चों, अब हम बात करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी की। आज हमारे ये नन्हे परागणकर्ता, विशेषकर मधुमक्खियाँ, एक वैश्विक संकट से गुजर रही हैं। पूरी की पूरी मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ नष्ट हो रही हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का मुख्य कारण। पहला कारण है अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग। नियोनिकोटिनॉइड्स जैसे केमिकल पेस्टिसाइड्स जब खेतों में छिड़के जाते हैं, तो ये मधुमक्खियों के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। वे अपना रास्ता भूल जाती हैं और अपने छत्ते तक वापस नहीं पहुंच पाती। दूसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन।

0: कंक्रीट के बढ़ते शहरों और मोनोकल्चर के कारण इन जीवों को साल भर भोजन और सुरक्षित आश्रय नहीं मिल पाता है। और तीसरा है जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण फूलों के खिलने का समय और कीड़ों के सक्रिय होने का समय मिसमैच हो रहा है। फूल पहले खिल जाते हैं और कीड़े बाद में आते हैं, जिससे परागण नहीं हो पाता। बच्चों, अब बात करते हैं युवाओं की भूमिका के विषय में। आखिर इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप देश के सबसे पढ़े लिखे और जागरूक वर्ग हैं। आप भविष्य के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और नागरिक भी हैं। केवल किताबी ज्ञान लेकर परीक्षा पास कर लेना ही काफी नहीं है। इस संकट का समाधान भी हमारी और आपकी सोच में छुपा है। हम अपने स्तर पर क्या क्या योगदान दे सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला है सिटीजन साइंस। अपने आसपास की बायोडायवर्सिटी को ऑब्जर्व करिए, बायो इन्वेंट्री बनाइए, जाने कि आपके इलाके में कौन से पॉलिनेटर्स पाए जाते हैं। दूसरा है इको फ्रेंडली गार्डनिंग। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपनी बालकनी या छत पर पॉलिनेटर गार्डन विकसित करें। नेटिव प्लांट्स या स्थानीय पौधे लगाएं, जैसे गेंदा, गुड़हल, तुलसी, जो स्थानीय मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करते हैं। और तीसरा है अवेयरनेस और रिसर्च। कृषि के क्षेत्र में जैविक कीटनाशकों और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के बारे में सोचिए। यदि आप आगे चलकर रिसर्च में जाते हैं तो पॉलिनेटर कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फील्ड है। तो बच्चों, आज की इस वार्ता का सार यही है कि प्रकृति में कोई भी जीव आइसोलेशन में नहीं जी सकता। एक छोटा सा कीड़ा जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का आधार स्तंभ है। जब आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर को पढ़ें तो केवल नंबर्स के लिए नहीं, बल्कि इस धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए भी पढ़ें। हमें इन नन्हे पॉलिनेटर्स को बचाने की ज़रूरत है। हम अपने घरों में फूलों वाले देसी पौधे लगाकर, रसायनों का उपयोग कम करके और जैव विविधता का सम्मान करके इस महान कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। अगली बार जब आप किसी फूल पर तितली को बैठे देखें तो समझ जाइएगा कि वहाँ आने वाले पीढ़ी के लिए भोजन तैयार करने का काम चल रहा है। प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि हम प्रकृति से ही हैं। इसी के साथ आज की इस वार्ता को मैं यहीं विराम देती हूँ। मुझे यानी आपकी दोस्त प्राची को दीजिए अनुमति।
1: शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था पौधों में परागण और उसका महत्व। जानकारी दे रही थी प्राची कोयल। प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी और प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का।

अभी आप सुन रहे थे शैक्षिक प्रसारण मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्मी संगीत में सबसे पहला नगमा फिल्म इजाजत से आशा भोसले की आवाज़ है, शब्द रचना गुलजार का है और इस गीत को संगीत बद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

आर डी बर्मन के संगीत में गुलजार का लिखा अगला गीत फिल्म गोलमाल से। इस गीत के गायक कलाकार है किशोर कुमार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन

किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा 30 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: निगरानी का दिया निर्देश। भारत में अब तक नहीं मिला है इबोला का केस। और नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड समेत देशभर के 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करना है। दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में रोजगार मेला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 88 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
2: कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इसके साथ ही पीएम इंटर्नशिप युवा को लगभग 1.25 लाख प्रतिभागी जो युवा है उनको देश की शीर्ष कंपनियों में अनुभव और आर्थिक सहायता प्राप्त करने का भी बेहतर अवसर भी मिल रहा है।
0: इधर रांची में कार्यक्रम आयोजन सीसीएल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बैठक कर मोरहाबादी, लालपुर, धुरवा, हेहेल, एचसी क्षेत्र और बीआईटी मेसरा समेत आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में जल्द पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स गठित कर युद्ध स्तर पर कनेक्शन दिए जाएं, ताकि अधिक से अधिक घरों को पाइपलाइन से सस्ती और पर्यावरण अनुकूल गैस मिले। इस दौरान मंत्री ने तंग मोहल्लों में आग बुझाने के लिए 2 फायर बाइक का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से 11 जून तक रांची में सभी विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इन मैराथन बैठकों में सभी प्रमुख विभागों के कार्यों का मूल्यांकन और योजनाओं का क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने पर जोर रहेगा। साथ ही बजट घोषणाओं पर भी चर्चा होगी। 25 मई को जल संसाधन, वित्त और वाणिज्य कर विभाग से शुरुआत होगी और 11 जून को परिवहन, राजस्व, निबंधन, भू सुधार और विधि विभाग की समीक्षा के साथ यह अभियान समाप्त होगा। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कल रांची के रातू में 2.25 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जर्जर सड़कों से बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल की समस्या थी। नई सड़कों से किसानों को मंडी, छात्रों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में आसानी होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में यह तीसरी बार संशोधन है। आज की वृद्धि के बाद रांची में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 63 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 66 पैसे हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा YouTube चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही झारखंड की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि

0: भाजपा राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।
1: भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी भी थी और चुनाव जीतेगी भी। राज्य में करप्शन व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है सभी स्तरों पर। किस प्रकार से हेमंत सोरेन के राज्य में विकास का काम रुका पड़ा, इन सारे मुद्दों को लेकर हम स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम करते हैं, प्रदेश स्तर पर भी कार्यक्रम करते हैं।
0: बता दें कि झारखंड की दो सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। रांची के खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पार्टी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
2: इंडिया एयरलाइंस भावनात्मक भी है, इंडिया एयरलाइन राजनीति भी है और इंडिया एयरलाइन देश का आने वाला जो डिमांड है उसका भी एक कड़ी है। इसीलिए निर्णय जो होंगे सारे पार्टियों का भावना को लेकर के सारे पार्टियां मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करें ताकि जो है कि दोनों का दोनों सीट हम आसानी से जीत सके।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने GST में राज्य का हिस्सा नहीं मिलने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
3: हमारे राज्य में GST का पैसा नहीं आ रहा। जो भी राज्य के कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार का सहायता होता है, सहायता और ये फेडरल सिस्टम का एक स्थापित मूल्य, किसी योजना में एक रुपए नहीं आना, राज्य सरकार के कमर को तोड़ने का काम कर रही है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी और रोकथाम के सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि भारत में अब तक कोई मामला नहीं मिला है। झारखंड में केंद्र के निर्देश पर तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही सभी सिविल सर्जन्स को अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाने व अन्य एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने समन्वित निगरानी, समय पर रिपोर्टिंग और चिन्हित स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों पर विशेष जोर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्यभर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोलहान प्रमंडल में लू लगने से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक हीट वेव को लेकर लोगों से सतर्क रहने और धूप से बचाव की अपील की है। 11वीं नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। रुद्रांश शर्मा की लगातार दूसरी स्वर्णिम सफलता पर रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड में खुशी की लहर है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपये प्रति किलो है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में झारखंड समेत देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं के लिए बन रहे लाखों रोजगार के अवसर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में पाइपलाइन से PNG आपूर्ति शुरू करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से सभी विभागों के करेंगी समीक्षा। बजट की घोषणाओं पर चर्चा भी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी का दिया निर्देश। भारत में अब तक नहीं मिला है इबोला का केस। और नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। आज की कलाकार है शोभा गुरटू।

अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में शोभा कुर्टू को। हम आकाशवाणी के राजी केंद्र से बोल रहे हैं, सुगम संगीत बस कुछ ही देर में।

मीडिय वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में पहली गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह को सुगम संगीत में। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जय भारती। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 2:55 पर और फिल्मी संगीत का आनंद लीजिए 3:00 से। 3:10 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, ये हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

रांची मेलोडीज़ का समय होगा 3:25 पर और 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 4:02 पर सुनिए कल्याणी, जिसमें आज चर्चा होगी बच्चों की मोबाइल पर नज़र रखें। साथ ही भेंट वार्ता होगी गर्भ धारण की तकनीक IVF पर। भेंट वार्ताकार होंगी डॉक्टर करुणा झा और भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल। इसके साथ चर्चा होगी आत्मनिर्भर बने सशक्त बने, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। और अब से कुछ ही देर में यानी 2 बजे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित आईसीएफ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्यभर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। यह गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान

0: में हुआ बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय भारती में हरिहरन की आवाज़ में बॉर्डर फिल्म से इस गीत को।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

संदेश के बाद कार्यक्रम जय भारती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का अगला नगमा मजरू सुल्तानपुरी के शब्दों में, राजेश रोशन के संगीत में, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, फिल्म दूसरा आदमी से ये गीत।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। देश भर में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: इस कड़ी में रांची के सीसीएल सभागार में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। रांची के इस मेले में रेलवे, सेना और डाक विभाग सहित 6 अलग अलग विभागों के 132 सफाई

0: अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खुद 25 युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किया हर वादा पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को लाखों नौकरियां देने का संकल्प क्रमबद्ध तरीके से पूरा हो रहा है।
1: हमारा स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है, हमारा एमएसएमई अच्छा काम कर रहा है, देश के युवा दुनिया के किसी भी युवा से कम नहीं। और इसी तरह रोजगार, सरकारी नौकरी, और अब तक लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। यह है प्रधानमंत्री का मंत्र, सबका साथ सबका विकास। देश विकसित भारत 2047 की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: रामगढ़ के पतरातू में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन 2026 की शुरुआत की गई है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड PVUNL ने 22 मई को इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत आसपास के स्कूलों की 50 छात्राओं को चुना गया है। उद्घाटन समारोह में PVUNL के CEO AK सहगल और स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्षा रेणु सहगल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में शामिल सभी 50 छात्राओं को पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए बैग, यूनिफॉर्म, जूते और जरूरी किट भी बांटे गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: कोडरमा के एनसीसी कैडेट आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की 17,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने देश के 20 लाख कैडेट्स में से चुने गए केवल 8 कैडेटों में शामिल होकर झारखंड का मान बढ़ाया है। आकाश ने दिरांग के राष्ट्रीय संस्थान से अपना उन्नत पर्वतारोहण प्रशिक्षण पूरा किया है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर एनसीसी कैडेट्स और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। आकाश ने कहा कि माता पिता के आशीर्वाद और गुरुओं की प्रेरणा से उन्होंने इस कठिन मुकाम को हासिल किया है।
1: उन लोगों ने 4 दिन आर्टिफिशियल अर्थ एक लाइन किया, वहां से फिर अपना रक्षक वगैरह जितना था पैक करने के बाद फिर हम लोग वहां से ऊपर किया और गए। फिर वहां भी एक हथियार है, फिर वहां से क्लाइम करने के बाद फिर वहां पर हम लोग 14,650 फीट ऊपर गए, फिर वहां भी कुछ दिन रहा। उसके बाद फिर वहां से फिर हम लोग सीधा गए थे 16,460 फीट ऊपर, फिर वहां पे टेंट लगा के रहते थे। फिर हम लोग लास्ट दिन हाइट जब गेन किए थे उस दिन 17,000 फीट ऊपर गए थे।
0: बोकारो के बालीडीह पुलिस ने एल्यूमिनियम तार चुराने और बेचने वाले एक छात्र गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने एक कार का पीछा कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार की तलाशी लेने पर उसके अंदर से करीब 70 किलो कटा हुआ एल्यूमिनियम तार बरामद हुआ। मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि यह गिरोह बोकारो स्टील प्लांट के आसपास से 4 तार चोरी करता था। उधर हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए राहुल दुबे गैंग के शातिर अपराधी जियाउल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। बड़कागांव एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह बानादाग रेलवे साइडिंग में लेवी वसूलने और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने जा रहा था। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस गीत को सुना फिल्म पगला कहीं का से। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म अनुरोध से किशोर कुमार की आवाज़ है और इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है।

0: कार्यक्रम की शुरुआत आज आपके साथ शनिवार की दोपहरी सीमा वर्मा और कार्यक्रम आप जानते हैं
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, जिंदगी जीना आसान ही होता, काफ़ी चढ़ाव उतार आते हैं इस जिंदगी में। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम जिंदगी के मज़े ले रहे हैं या जिंदगी हमारे मज़े ले रहे हैं। पर परिस्थितियाँ जैसी भी हो, अगर हमारा साथ देने वाला कोई है तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। साथ वो नहीं है जो तस्वीरों में साथ खड़ा हो, साथ वो है जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा हो।

भले ही बातें कम हो और मुलाकातें ना हो पाए, मगर इस दिल को बस तुम्हारा ही साथ निभाना है। बदल जाए भले ही मौसम या ये ज़माना, मुझे तो उम्र भर तुम्हारी परछाई बन जाना है।

है, सुनाना है, रूठना है, मनाना है, हंसाना है, रुलाना है, इस जिंदगी का हर लम्हा, इस जिंदगी का हर लम्हा बस तुम्हारे साथ ही बिताना है।

उजाले में तो मिल जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे।

अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले तो बहुत है, पर साथ देने वाला कोई नहीं।

दोस्तों, जब तक हम किसी से ये आशा रखते हैं कि वो हमारा साथ दे, हमारे हमेशा साथ खड़े, ये तो समय की बात है कि कब कौन हमारे साथ खड़ा होता है। लेकिन अगर हम इसी को अपना स्वभाव बना लें कि कोई मेरे साथ होगा तो हम ये करेंगे, तो कहीं ना ये कहीं ये हमारी कमज़ोरी को भी दर्शाता है। इसीलिए ज़िंदगी में कई परिस्थितियाँ आती है, ये ज़रूरी है कि किसी का साथ मिलने से हम आगे बढ़ते हैं। कहते भी हैं कि एक अकेला कुछ भी करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, एक 11 हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम ज़िंदगी में अकेले होते हैं, तो उस समय हमें हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता, तो हमें खुद को ज़िंदगी का साथ निभाना सीखने आना चाहिए। कहते भी हैं कि ज़िंदगी का साथ निभाना सीखो जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, क्योंकि अपना कहने वाले पता नहीं कब गैरों से नाता जोड़ ले। तो हम ये नहीं जा कह रहे हैं कि कोई अपना कहने वाला अगर गैरों से नाता जोड़ ले तब आप दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, बिल्कुल नहीं। आप खुद अपनी ज़िंदगी के साथ, खुद की ज़िंदगी के साथ साथ निभाना सीखिए।

दोस्तों, बातें तो हर कोई बनाता है, मगर ज़रूरत पे साथ देना किसी किसी को ही आता है। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर उसका साथ निभाए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने के लिए। तो दोस्तों, आप जितना हो सके हमेशा दूसरों के सहयोग के लिए खड़े रहिए, साथ देने के लिए खड़े रहिए, और हर पल को जिए और हमेशा खिलते मुस्कुराते रहिए इस गीत की तरह।

0: हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में आज सुबह से मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिन मतदाताओं का नाम इस सूची में मिल रहा है, वे तुरंत बीएलओ से मिलकर अपनी मैपिंग पूरी करवा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार यह सूची अगले दो हफ्तों तक सभी केंद्रों पर लगी रहेगी। राज्य सरकार ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों और थानों को अपने दफ्तरों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। पलामू के चैनपुर में आज जमीन विवाद में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जाँच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जामताड़ा में आज विभिन्न पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने सुपाईडी, बिंदापाथर, देवालबाड़ी, बंदरडीहा पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सरायकेला के गम्हरिया में टाटा कंपनी फाटक के पास से पुलिस ने 10 टन चोरी के स्क्रैप मेटल के साथ एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में एक गाड़ी भी जब्त की गई है और पुलिस फरार तीन अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। राज्य के 8 जिलों में कल गर्जन के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम कल्याणी, जिसमें चर्चा होगी बच्चों की मोबाइल पर नज़र रखें, भेंट वार्ता होगी गर्भधारण की तकनीक IVF, भेंट वार्ताकार होंगी डॉक्टर करुणा झा, भेंट करता होंगे संजीव कुमार लाल, साथ ही साथ चर्चा होगी आत्मनिर्भर बने सशक्त बने, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम आपसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, भेंट वार्ता सुनेंगे और साथ ही साथ सदाबहार गानों का भी आनंद लेंगे। तो दोस्तों, आप तैयार हैं ना हमारे साथ इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कार्यक्रम का आनंद भी लेंगे। दोस्तों, मोबाइल फोन आज के दौर में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना दिन गुजारना लगभग मुश्किल सा हो गया है। मोबाइल के कई लाभ हैं। यह हमें दुनिया से जोड़ता है, जिससे हम कहीं भी किसी से भी संवाद कर सकते हैं। इसे शिक्षा, व्यवसाय और मनोरंजन की सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती है। समय की बचत होती है और आपातकालीन परिस्थितियों में भी तुरंत मदद मिल सकती है। हालांकि मोबाइल फोन के कुछ नुकसान भी हैं। इसकी अत्यधिक उपयोगिता से आंखों और मस्तिष्क प्रभावित हो सकते हैं। मोबाइल के कारण ध्यान केंद्रित करने में कमी आती है और यह नशे की तरह आदत बन सकता है, जिससे सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं। इससे स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि नींद न आना, तनाव और मानसिक विकार भी हो सकते हैं। तो आइए एक खास विषय पर हम आपसे चर्चा करते हैं कि बच्चों की मोबाइल पर नजर रखें। मित्रों, आज के युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। पढ़ाई, जानकारी, मनोरंजन और बातचीत के लिए मोबाइल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आज मोबाइल चलाने लगे हैं। मोबाइल का ये सही उपयोग लाभदायक है, लेकिन इसका अधिक और गलत उपयोग बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो बच्चों को मोबाइल गतिविधियां पर उचित नजर रखें। आज के युग में मोबाइल का बढ़ता प्रभाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। आज बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल, वीडियो, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम में भी मोबाइल का उपयोग करते हैं। कोरोना काल के बाद ऑनलाइन शिक्षा के कारण मोबाइल का महत्व और बढ़ गया है। कई बच्चे घंटों तक मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, इससे उसकी आदत बन जाती है और वो वास्तविक दुनिया से दूर होने लगते हैं। बच्चों पर मोबाइल के दुष्प्रभाव पर यदि हम नजर डालें तो देख पाते हैं कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर बुरा प्रभाव डालता है। जैसे पढ़ाई में गिरावट, मोबाइल पर अधिक समय बिताने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। वे गेम और वीडियो में इतना खो जाते हैं कि पढ़ाई में रुचि कम होने लगती है। दूसरा, आंखों और स्वास्थ्य पर असर। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, सिर दर्द और नींद की समस्या होने लगती है। बच्चे शारीरिक खेलकूद से दूर हो जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य कमजोर पड़ जाता है। तीसरा यह है कि गलत जानकारी और सामग्री। इंटरनेट पर अच्छी जानकारी के साथ साथ गलत और अनुपयुक्त सामग्री का भी मौजूद होती है। यदि बच्चे पर निगरानी ना रखी जाए तो वो गलत दिशा में जा सकते हैं। सामाजिक दूरी। मोबाइल की लत बच्चों को परिवार और मित्रों से दूर कर देती है। वो बातचीत कम करते हैं और अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। बच्चों का लगातार मोबाइल उपयोग से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और तनाव बढ़ सकता है। कई बच्चे मोबाइल ना मिलने पर परेशान हो जाते हैं। मित्रों, बच्चों को मोबाइल से पूरी तरह से दूर करना संभव नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग सिखाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यह माता पिता का जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। समय सीमा तय करें, जैसे कि माता पिता को बच्चों के मोबाइल उपयोग का समय निर्धारित करना चाहिए। पढ़ाई और जरूरी काम के अलावा मोबाइल का सीमित उपयोग होना चाहिए। बच्चों से संवाद करें, बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें और उन्हें मोबाइल के लाभ और हानि समझाएं। डरने के बजाय समझाने की आदत डालें, अच्छे कार्य में लगाएं। बच्चों को खेलकूद, पुस्तक पढ़ने, संगीत, चित्रकला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना चाहिए।

0: बच्चों को हमेशा निगरानी रखने की आवश्यकता है। जैसे कि माता पिता को यह जानना चाहिए कि बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं और कौन कौन से ऐप का उपयोग कर रहे हैं। यदि बड़े लोग हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चों भी वही सीखेंगे, इसलिए माता पिता को भी संतुलित उपयोग करना चाहिए। मित्रों, मोबाइल आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन बच्चों के लिए इसका संतुलित उपयोग करना आवश्यक है। माता पिता की जागरूकता और सही मार्गदर्शन से बच्चे मोबाइल के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि उन पर प्यार, विश्वास और उचित निगरानी रखें। सही दिशा में उपयोग किया गया मोबाइल ज्ञान का साधन बन सकता है, जबकि गलत उपयोग बच्चों को जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। मित्रों, आज के युग में IVF एक ऐसा नाम है या फिर तकनीक है, बहुत तेजी से लोगों के बीच सुना जा रहा है। कहा जाए तो IVF पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। बोलचाल की भाषा में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जा सकता है। यह एक आधुनिक चिकित्सा तकनीक है जिसका उपयोग उन दंपतियों को माता पिता बनने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो मित्रों, आइए विशेष चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर करुणा झा, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल, और इनका चर्चा का विषय है गर्भधारण की तकनीक IVF। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर करुणा झा जी को।
1: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों, माँ बनना हर महिला का एक सपना होता है, लेकिन किसी कारणवश वो माँ नहीं बन पाती है, कुछ समस्याएं आ जाती हैं। तो उस समस्याओं को दूर कैसे करें, आजकल एक नई तकनीक ईजाद है जिसे हम कहते हैं IVF या कृत्रिम गर्भाधान या IUI। इसके सहारे भी इस पद्धति के द्वारा माँ बनने का सुख हमारी माताएं पा सकती हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि IVF तकनीक या IUI के द्वारा महिला माँ कैसे बन सकती है और क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं रांची के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करुणा झा। मैडम, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। माँ बनना हर स्त्री का सपना होता है, किसी कारणवश माँ नहीं बन पाती है, तो कौन कौन सी समस्याएं आ जाती है और इस समस्याओं को कैसे इस तकनीक के द्वारा दूर किया जाता है?
2: नमस्कार। कि अगर कोई महिला माँ नहीं बन पाती है तो आपने सुना कि IVF एक तकनीक है, IUI भी एक तकनीक है, जिसकी वजह से माँ बनने की सुविधा उसको मिल सकती है। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी कभी कोई दंपति गर्भधारण करना चाहे तो उन लोगों की जांच होनी चाहिए, पति और पत्नी दोनों की, काफ़ी विस्तार में, ताकि पता चल सके कि कारण कहाँ है। क्योंकि हम हर एक महिला जिसे बच्चा नहीं ठहर पाता उसको सीधा हम लोग IVF नहीं करते। IVF एक ऐसी तकनीक है जो थोड़ी जटिल है और इसके साथ साथ में महंगी भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि हमारे समाज में अधिकांश लोग इतने धनी नहीं होते कि वो आराम से 5 लाख रुपया निकाल सकें, तो ऐसी हालत में बेहतर होता है कि हम लोग बाकी और भी दूसरे तकनीक के बारे में सोचें जो सस्ती तकनीक है। तो अगर आप जांच करेंगे तो जांच करने पे पाएंगे कि तकरीबन 50-50% कारण दोनों ही पति और पत्नी में होता है। इसलिए ये ख्याल करना, ये सोचना कि स्त्री ही उसकी वजह होगी जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा है, ये बिल्कुल ही निहायत गलत बात है। तो पति का जाँच हम लोग हमेशा पहले करते हैं, उसके धातु में बीज किस तरह के हैं, सही संख्या में है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, गतिमान है कि नहीं, इन सब चीज़ की जानकारी हम लोग लेते हैं। और अगर कहीं गड़बड़ी लगी तो हम लोग विस्तार में फिर उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पुरुष में हम लोगों को जांच करना पड़ता है धातु का, जबकि स्त्री में हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि क्या उसे उनकी उम्र कितनी है, क्या उनके हर एक महीने में अंडा बन रहा है, अंडाणु बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और क्या उसकी अंदर के पूरी योनि से लेकर के पूरी गर्भाशय और दोनों नलियां, फेलोपियन ट्यूब्स, वो पूरे खुले हुए हैं कि नहीं। क्योंकि तीन, जब तक ये तीन कारक सही ना हो तो बच्चा ठहरना संभव नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ होती है कि सारी चीज़ें ठीक हो इसके बावजूद उम्र, अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा, 40 के करीब पहुंच जाए, तो वैसी हालत में भी उसके अंडाणुओं की शक्ति बहुत घट जाती है और मुश्किल से कुछ अंडे बन पाते हैं, जिसमें फिर बच्चा ठहरना मुश्किल होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये

करते हैं और उसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में डाल के रखते हैं, पति के धातु को लेते हैं, फिर उसकी खास किस्म की सफाई होती है, फिर उसको भी हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और साथ मिलाते हैं। दोनों जब मिल जाए तो मिलने के बाद उसे भ्रूण बनता है। ये भ्रूण कम से कम 3-4 दिन 5 दिन का हो जाए तो फिर हम लोग महिला के यूट्रस में बच्चेदानी के अंदर में उसको डाल देते हैं। ये IVF का तरीका हुआ। लेकिन जिनके बहुत कम धातु में बीज है, ऐसी हालत में बच्चा नहीं ठहर पाता है, तो हम लोग उनको ICSI करते हैं। ICSI का अर्थ होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर मान लीजिए किसी पुरुष के धातु में सिर्फ 1 या 2 बीज है लेकिन वो स्वस्थ है, तो हम लोग उस बीज को वहाँ से निकालते हैं और उसकी सफाई करके उसको सीधे एक सिरिंज में ले करके एक अंडे के अंदर में एक स्पर्म डाल देते हैं, उसको सीधे अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से वो भ्रूण बन जाता है। और ये जो भ्रूण बनता है फिर इसको हम लोग महिला के गर्भाशय में डाल के आगे बढ़ने का इंतज़ार करते हैं। ये भ्रूण धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते अगर स्वस्थ रहा, हर एक हालात अगर अनुकूल हुए, तो फिर वो शिशु बन जाता है। तो ये मैंने आपको बताया IVF और ICSI के बारे में। ये दोनों बहुत ही महंगे तकनीक हैं, होते हैं तो बहुत अच्छे, क्योंकि जिनको दूसरी तरह से कोई बच्चा ठहरने की कहीं आशा ही ना हो और उन्हें बच्चा अपना बच्चा हो सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें खर्च करीब समझ मान लीजिए कि आपको 4-5 लाख के आसपास पड़ जाता है। क्या आपको लगता है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं? आप सभी शायद नहीं। घर बेचना पड़ेगा, सामान बेचना होगा, कर्ज लेना पड़ेगा। सो बेहतर है कि हम लोग इससे हल्के तकनीक की तरफ जाएं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्त्री की नली पहला जांच है जिसके लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, यानी नीचे यूट्रस के अंदर हम लोग दवा डाल करके एक्सरे लेके देखते हैं कि नलियाँ ठीक हैं कि नहीं, दोनों नली ठीक है, एक नली ठीक है या बिल्कुल ही बंद है। होता क्या है कि ये जो टेस्ट हम करके देखते हैं जिसमें नली बंद आती है, बहुत वक्त ऐसा होता है कि उसमें नली बंद होती नहीं है, लेकिन इस तकनीक में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से गलत रिपोर्ट भी आता है। तो हम लोग लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं जिसमें पेट के अंदर एक पतली नली जाती है और उसकी वजह से वहाँ अंदर में हम सारी चीज़ें देख सकते हैं और फिर देखते हैं नली खुली है कि बंद है। और नली अक्सर इसमें हम देखते हैं 50% से ज़्यादा हालात में कि नली खुली होती है लेकिन रिपोर्ट में नेगेटिव लिख देते हैं, या नली खुली हुई आती है दिखती है लेकिन वो बंद होता है। इसीलिए हम लोग कोई भी सर्जरी करने के पहले, IVF जैसी तकनीक को अपनाने के पहले, हम लोग एक लेप्रोस्कोपी करके देख लेते हैं और दूसरा है हिस्ट्रोस्कोपी, जिसकी वजह से हम लोग यूट्रस के अंदर वो पतली नली डाल के उसके अंदरूनी हिस्से को देख लेते हैं जहाँ बच्चा ठहरेगा, जहाँ भ्रूण जाकर के आराम करेगा और वो बढ़ पाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर ठीक है तो बनाने का तरीका है जिसमें कि हम लोग उसको रिपेयर करते हैं, बनाते भी हैं, अंदरूनी गड़बड़ियों को भी हम लोग ठीक करते हैं, नलियों को भी हम लोग खोलते हैं। ये सब उतना महंगा नहीं होता जितना कि IVF होता है। तो ये सारी तकनीक को अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नलियाँ खुल गईं, ठीक हो गईं, तो ऐसी हालत में हम लोग पति का स्पर्म लेके, धातु ले, बीज लेके उसकी सफाई करके इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन IUI जैसे सस्ते विधि का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि पति का स्पर्म धातु ले लिया, उसकी सफाई कर ली स्पर्म की और सीधे उसको हम लोग बच्चेदानी के अंदर में, गर्भाशय के अंदर में डाल देते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं, जिसमें कि करीब समझिए कि 20-25% औरतें गर्भवती हो सकती हैं। तो ये सस्ता तरीका है, इसको ज़रूर करके अपनाना चाहिए IVF करने के पहले, अगर नली एक भी खुली हुई हो तो। आप 3-4 बार IUI कर रहे हैं फिर भी अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तब फिर अब IVF करिए, IVF करना चाहिए। तो ये हालात जिसमें कि पत्नी की दोनों नलियां बंद हों या उम्र ज़्यादा हो गई हो, अगर किसी की उम्र 45 साल की है, शादी भी आजकल बहुत देर से हो रहा है, तो ऐसी हालत में जब शादी लेट हो तो फिर बच्चा ठहरने का प्रोसेस भी लेट हो जाता है। तो पत्नी चाह रही है कि उसे बच्चा ठहरे, दंपति को बच्चा चाहिए और आप देख रहे हैं कि इनकी ओवरी का फंक्शन काफ़ी रुक गया है, तो ऐसी हालात में हम लोगों को फिर IVF करना पड़ता है। तो IVF में होता ये है कि या तो स्त्री के कुछ बचे हुए अंडे हों तो आप उनको निकाल लीजिए बाहर और उससे पति के
स्पर्म को मिला करके देखिए, अगर अंडा सही नहीं हालत

0: में है, बीमार है। तो इस स्थिति में हम लोग किसी और स्त्री से जो स्वस्थ है और कम उम्र की है उनका अंडा भी हम लोग ले सकते हैं, जिसको डोनर्स एग बोलते हैं हम लोग। तो डोनर से हम लोग डोनेट करवाते हैं अंडा, और अगर पति का स्पर्म ठीक है तो पति का ही धातु का बीज, या नहीं तो डोनर का भी हम लोग बीज लेकर के उसको मिलाते हैं, मिला करके फिर उससे भ्रूण बनता है, और उस भ्रूण को हम लोग महिला के गर्भाशय में डालते हैं और IVF करके देखते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे तकनीक आ गए हैं जिसकी वजह से महिला गर्भवती हो सकती है। ये तरीका बहुत ही कारगर है, इसमें करीब करीब समझिए कि 50 से 60% महिलाएं गर्भवती होती हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में उसे गर्भ ठहर जाए, कभी कभी 3 से 4 बार भी करना पड़ता है। और चूंकि ये महंगा तरीका है, इसलिए इस चीज़ को हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं कि हम लोग कुछ हल्का और कुछ सस्ता तरीका ढूँढें, और कोशिश करें ये जानने की कि आखिर महिला या पुरुष दोनों, या तो दोनों में ही कहाँ गड़बड़ी है जिसकी वजह से बच्चा ठहर नहीं पा रहा है। तो इस जानकारी के साथ जब हम लोग कोशिश पूरी मेहनत करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि शायद हम लोग को 10 से 15% ही ऐसी महिलाएं जिनके बच्चा नहीं ठहर रहा है उनको IVF की ज़रूरत है, और अधिकांश औरतें बिना IVF के भी गर्भवती हो जाती हैं।
1: मैडम, इन सारी प्रक्रियाओं को जब हम अपनाते हैं तो किन किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता हो जाती है महिलाओं को, क्योंकि बहुत चुनौती भरा कार्य हो जाता है।
0: देखिए, सावधानी, अगर बच्चा ठहर जाता है अच्छी तरह से, एक बार वो बच्चा नॉर्मल ढंग से प्राकृतिक ढंग से ठहरे या IVF या IUI के द्वारा ठहरे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको सुला के रखते हैं 9 महीने तक। वो अपना हल्का फुल्का काम घर का कर सकती हैं, सब कुछ करेंगी, लेकिन चूँकि बच्चा ये बहुत ही प्रेशस बेशकीमती बच्चा होता है, इसीलिए घर के लोग उनको ज़्यादा काम नहीं करने देते, सीढ़ी नहीं चढ़ने देते। ये बात ठीक है, हम लोग भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा काम वो ना करे, बहुत भारी भारी चीज़ें ना उठाए, सीढ़ियों पे बहुत दौड़ दौड़ के ना चढ़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चल भी सकती है, सीढ़ी भी चढ़ सकती है, हल्का फुल्का काम भी घर का कर सकती है। हाँ, इसके साथ दवाएँ हम लोग थोड़ा ज़्यादा ज़रूर देते हैं, जो कि हम लोग आमतौर पर सबको नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हार्मोन के रूप में होती हैं और यूट्रस को सावधान रखती हैं, यूट्रस में, ताकि जो बच्चा उसके अंदर में बढ़ रहा है उसको वो स्वस्थ हो सके और समय से बढ़ सके। तो स्वस्थ बच्चा पाने के लिए कुछ दवाइयाँ तो हम लोग को देनी ही होती हैं, जो हम लोग आमतौर पर दूसरों को भी देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है
1: जी।
0: और कुछ ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये औरतें जो ज़्यादा उम्र की होती हैं, जिनको हम लोग IVF से बच्चा हम लोग करवाते हैं, उन लोगों को सिजेरियन की करने का जो उनका रेट है वो थोड़ा बढ़ जाता है।
1: डॉक्टर करुणा झा, आज के नव दंपतियों को आप क्या कहेंगे?
0: नव दंपतियों को तो मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्हें हड़बड़ाना नहीं है। जब पति पत्नी साथ रहते हैं, क्या उन्हें बच्चा चाहिए या नहीं, वो उसके लिए तैयार हैं कि नहीं मन से, आर्थिक तौर पर, तो उसके बाद ही वो बच्चे की तैयारी करें। और बच्चा ऐसा मजाक में नहीं ठहरना चाहिए, हमेशा पहले आप प्लानिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद आप पति और पत्नी दोनों ही अपने स्वास्थ्य का पूरा चेकअप करवा लीजिए कि आपको कहीं कोई बीमारी ना हो। अगर किसी तरह की दिक्कत है, कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फिर आपका जो है सो शुगर बढ़ा हुआ है, या कहीं उसके अलावा और भी कोई बीमारी है, तो सारी चीज़ों को पहले आप कंट्रोल कर लें, स्वास्थ्य को बिल्कुल सही हाल में आप रखें, उसके बाद तो फिर बच्चे की प्लानिंग करें। बच्चा हमेशा प्लान्ड होना चाहिए, अनप्लान्ड बच्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको इस बात को समझना पड़ेगा। और ये जानकारी जो मैंने आपको दी कि आप लोग साथ रहें, अगर बच्चा चाहिए तो आप इसी तरह से साथ रहिए कि ओव्यूलेशन के समय आप लोग साथ हो सकें, ये काफ़ी ज़रूरी होता है।
1: तो मित्रों, बड़ी अच्छी जानकारी आज आप तक पहुंची। IVF क्या है, किस कारण से IVF करानी पड़ती है, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, IUI क्या है, और कैसे हम एक नए जीवन की शुरुआत करें, मां बनने की राह में हम आगे बढ़ें। डॉक्टर करुणा झा, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, जीवन शैली में बड़े परिवर्तन के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि निसंतानता। निसंतानता से प्रभावित दंपतियों के लिए IVF तकनीक कारगर साबित हो रहा है। इस वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके लाखों दंपति संतान सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो साथियों, IVF तकनीक के लाभ और इनके उपयोग पर हम सुन रहे थे श्रीमती करुणा झा को, और इनसे बात कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। मित्रों, अब बातों के इस खूबसूरत सिलसिले को थोड़ा सा संगीत का रंग देते हैं और सुनते हैं एक

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरगम का यह गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आशा करते हैं कि यह गीत आपको खूब पसंद आया होगा। मित्रों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। जितना हम कम समय में आत्मनिर्भर बनेंगे, उतनी जल्दी हम विकास की राह में अग्रसर होंगे। यदि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त बनेगा। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं, आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने। साथियों, मनुष्य के जीवन में आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करने की क्षमता रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है और सम्मान प्राप्त करता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी पर बोझ नहीं बनता, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान देता है। आज के समय में आत्मनिर्भर बनना केवल आवश्यकता ही नहीं, बल्कि सफलता की कुंजी भी है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। मित्रों, आइए हम समझते हैं कि आत्मनिर्भरता क्या है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने कार्यों और आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहना। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति किसी से सहायता ना ले, बल्कि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बने। आत्मनिर्भर व्यक्ति मेहनती, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होता है। आज के समय में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता अत्यधिक है। आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि हम हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। कोरोना महामारी के समय यह स्पष्ट हो गया कि आत्मनिर्भर व्यक्ति और आत्मनिर्भर देश ही संकट का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी कारण हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी दिया गया है, ताकि लोग स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और अपने कौशल को बढ़ाकर रोजगार के अवसर पैदा करें। दोस्तों, कभी आपने सोचा भी है सशक्त बनने का मार्ग क्या है? तो दोस्तों, सशक्त बनने के लिए शिक्षा, कौशल और मेहनत बहुत आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत पहचान कराती है, जबकि

0: कौशल उसे रोजगार और आत्मविश्वास पैदा करता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान कर मेहनत करता है वह निश्चित रूप से सशक्त बनता है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता भी समाज में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। आज महिलाएं शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, खेल और राजनीति जैसे हर एक क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही है। साथियों, यदि हम बात करें कि आज के समय में युवाओं की भूमिका क्या है, तो दोस्तों देश के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे तो राष्ट्र तेजी से प्रगति करेगा। युवाओं को नौकरी के पीछे भागने की बजाय नए कौशल सीखकर स्वरोजगार की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कृषि, हस्तशिल्प, डिजिटल तकनीक, छोटे उद्योग और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। आत्मनिर्भर युवा ही देश को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। मित्रों, आत्मनिर्भरता ही सशक्त जीवन का आधार है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह मेहनत से आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हमें शिक्षा, कौशल और आत्मविश्वास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना चाहिए तथा दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जब हर नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा तभी हमारा देश वास्तव में मजबूत और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत आपको पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को, फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
1: कार्यक्रम कल्याणी यही संपन्न होता है। भेंट वार्ता करते डॉक्टर करुणा झा, भेंट करता एवं प्रस्तुति संजीव कुमार लाल के। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए साथी, आपको आज बता दें हमारी तीसरी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। इस कार्यक्रम विवरण के पश्चात 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम सांस सरगम के अंतर्गत, और शाम को 5 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी हम लेकर हाजिर होंगे 5:02 पर। आज चर्चा का विषय होगा इंटरनेशनल डे ऑफ एंड एब्स्ट्रैटिक फिचुला, और साथ ही साथ आप जानकारी लेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर को जाने। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पर आप सुन सकेंगे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोग। आज चर्चा का विषय होगा बदलते दौर के गवाह हमारी आकाशवाणी। साथ ही साथ पीए स्वनिधि योजना, क्लिक करने से पहले सोचिए डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के मंत्र, और डिजिटल युग में कुटीर उद्योग, ई कॉमर्स और नई संभावनाओं के विषय में आप जानकारी लेंगे प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। और 6 हम लेकर हाजिर होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। हमारे किसान भाइयों को समर्पित कार्यक्रम किसान वाणी का समय तो आप जानते हैं, शाम को 6:02। आज चर्चा का विषय है मोटे अनाजों की उपयोगिता। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाली बीमारियों के घरेलू चिकित्सा। भेंट करता होंगे कृष्ण कुमार पौराणिक और प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल के। 6:32 पर आप सुन सकेंगे हमारी दुनिया। आज चर्चा का विषय होगा दहेज प्रथा का आधुनिक समय में बदलना स्वरूप, और कुर्माली वार्ता में भेंट वार्ता का विषय होगा महिला सशक्तिकरण से ही देश में विकास संभव। भेंट वार्ताकार होंगी डॉक्टर गीता कुमारी सिंह और प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और 7:15 पर वक्त होगा लोकगीतों का। आज आप सुनेंगे हुल लोकगीत और कलाकार होंगे बुधन सिंह कुंकल एवं साथी। 7:20 पर हम हाजिर होंगे क्षेत्रीय समाचार के साथ।

समाचार ध्वनि चित्र का समय होगा 7:45 और आपका पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा, जिसमें आप सुनते हैं एक से एक सुपरहिट सॉन्ग्स, वो लेकर हम हाजिर होंगे रात 8:00।

सुर्खियों में आप सुन सकेंगे रात 8:30 पर और समाचार संध्या 8:45 9:09 बजे से, और उर्दू में समाचार का समय रहेगा 9:15।

राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती का अनुप्रसारण किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम थिरुवंतपुरम के ई श्रेणी के कलाकार चंगा ससेरे सिपी माधवन नामपुथिरी का कर्नाटक गायन आप सुन सकेंगे रात 11 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11 बजे से क्रमशः आप हिंदी और अंग्रेजी समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर मीडियम वेव पर हमारी सभा आज समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज हमारी तीसरी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रेखा। उससे कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे कार्यक्रम सांझ सरगम के साथ।

यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। स्वीकार करें अपने रेडियो हम सफर मौनिता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, क्या खूब कहा है, किसी ने की जिंदगी बदलती रहती है और हर पल कुछ नया होता है और हर मुश्किल का हल भी जरूर होता है। तो आप भी अपनी जिंदगी को हर पल बहुत प्यार करें और कोशिश करें कि जिंदगी को हमेशा थैंक यू कहें और उससे कहें आई लव यू जिंदगी।

दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इसे हर पल जीकर खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। और यह चुनौतियों और सपनों का संगम है, जहां हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है और हमें खुद पर विश्वास कराना भी सिखाता है। तो हमेशा अपने दिल से ये जरूर कहे कि ए दिल, ऑल इज वेल।

0: दोस्तों, जिंदगी में राहें होती हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। और क्या खूब कहा है किसी ने कि कहाँ हर किसी की चाहत पूरी होती है। तो आप भी अपने लाइफ में सनशाइन जरूर ढूंढें और लाइफ को एंजॉय करें।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

वक्त तो गुजर जाता है अपनी रफ्तार से, पर कुछ लम्हे जिंदगी को वहीं रोक देते हैं। काश लौट आते वो प्यारे से लम्हे।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम सांस सरगम यही संपन्न होता है। चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि रास्ता खुद बनाइए, हमेशा

आप पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने अगल बगल के सारे लोगों को, आपके रिश्तेदार को, आपकी फैमिली को ढेर सारा प्यार देंगे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव है तो ज़रूर है कि हम पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैला सकते हैं। तो रास्ता खुद बनाइए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। आप अपनी रेडियो हम सफ़र मौनिता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज़ तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज धनबाद में कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना और उन पर बोझ कम करना है। संक्षिप्त दौरे पर धनबाद पहुंची केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 5 यूरोपीय देशों की यात्रा पर भी बात की। राज्य में आज से सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रदर्शित कर दी गई है, जिसे देखने के लिए बूथों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि यह सूची आज से अगले 2 सप्ताह तक सभी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। राज्य सरकार ने राज्य में भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों और थानों को अपने दफ्तरों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। रामगढ़ के पतरातू से असम के लिए 4000 टन फ्लाई ऐश की पहली रेलगाड़ी रवाना की गई। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने पर्यावरण को बचाने के लिए यह बड़ी पहल की है। PVUNL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AK सहगल ने इस मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। गिरिडीह साइबर पुलिस ने गांडई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह SP डॉ. विमल कुमार ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बड़ी सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, ATM कार्ड और 3 चेकबुक बरामद किए गए हैं। खूंटी पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी को महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तस्करी कठरटोली गांव से 19 वर्षीय आरोपी संतोष महली को दबोचा। आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि इस गर्मी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कूल भी होंगे, और हमारे इस युववाणी के कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त निश्चय,
1: और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी।
0: और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी रोचक चर्चाएँ, और आज हम बात करेंगे एक बेहद ही गंभीर विषय पे जो कि महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज की तेज़ भागती ज़िंदगी में हम कई ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी बातें।
1: सही कहा, कई बार जानकारी की कमी और लापरवाही ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जिन्हें समय रहते रोका जा सकता था।
0: इसलिए आज हम दो बेहद ज़रूरी विषयों पर बात करेंगे। पहला, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फेस्टिवला, और दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर को जाने।
1: तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खास प्रस्तुति, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फेस्टिवला।
0: दोस्तों, हर साल 23 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फेस्टिवला मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करना है।
1: लेकिन कई लोग आज भी नहीं जानते दोस्तों कि आखिर ऑब्स्टेरिक फेस्टुला होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी समस्या है जो कठिन और लंबे समय तक चले प्रसव के कारण हो सकती है।
0: जब समय पर सही इलाज या मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, तब महिला को अंदरूनी चोट पहुँच सकती है। इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है।
1: कई महिलाएं तो इस समस्या की वजह से लोगों से मिलना जुलना कम कर देती हैं। उन्हें शर्म, डर और अकेलेपन का सामना भी करना पड़ता है।
0: और सबसे दुख की बात यह है कि कई बार महिलाएं इलाज करवाने से भी डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें समझेंगे नहीं।
1: जबकि दोस्तों, सच्चाई ये है कि यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह एक स्वास्थ्य समस्या है और इसका इलाज संभव है।
0: दोस्तों, आज भी कई गांवों और दूर दराज इलाकों में महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती। अस्पताल दूर होते हैं, जानकारी कम होती है, और कई बार आर्थिक परेशानी भी इलाज में रुकावट बन जाती है।
1: इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, पौष्टिक भोजन और सुरक्षित अस्पताल में प्रसव बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: इसके साथ ही परिवार का सहयोग भी बहुत जरूरी है। अगर घर के लोग महिला का साथ दे, उसका ध्यान रखें, समय पर डॉक्टर के पास ले जाएं, तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है।
1: हम अक्सर कहते हैं कि माँ स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ, लेकिन असल जिंदगी में महिलाओं के स्वास्थ्य को सबसे आखिर में रखा जाता है।
0: बिल्कुल, कई महिलाएं पहले पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद की परेशानी को नज़रअंदाज कर देती है।
1: दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
0: और यही इस दिवस का सबसे बड़ा संदेश भी है, हर महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आगे की चर्चा पर बढ़ने से पहले आइए हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
3: दोस्तों अब बात करते हैं हमारे दूसरे विषय की, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर को जानिए।
4: जी हाँ दोस्तों, आजकल हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी है कि हम अपने शरीर की बात सुनना भी भूल गए हैं।
3: सुबह जल्दी उठना, भागते भागते काम करना, घंटों मोबाइल चलाना और देर रात तक जागना।

0: रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है दोस्तों।
1: बिल्कुल, सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखने वाली फिटनेस असली स्वास्थ्य नहीं होती। असली स्वास्थ्य वह है जहां शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों।
0: सही कहा, अच्छी नींद, संतुलित भोजन, व्यायाम और तनाव कम करना, ये चार बातें हमारी जिंदगी बदल सकती है।
1: और एक जरूरी बात, पानी। कई लोग पूरे दिन बहुत कम पानी पीते हैं, जबकि शरीर को ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त पानी बहुत जरूरी है। हमारा शरीर हर दिन बिना रुके हमारे लिए काम करता है, इसलिए उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।
0: जब हम अपने शरीर को समझना शुरू करते हैं तभी हम सच में स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी पाते हैं।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जागरूकता और सही जानकारी हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है।
0: चाहे महिलाओं का स्वास्थ्य हो या खुद अपने शरीर को समझना, दोनों ही बातें एक स्वस्थ समाज के लिए बेहद जरूरी है।
1: अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत कीजिए,
0: स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं आज के दिन यानी 23 मई को हमारे इतिहास में क्या कुछ घटनाएं हुई थी। 1829 में आज ही के दिन अकॉर्डियन नामक संगीत वाद्य यंत्र का पेटेंट कराया गया था। यह इंस्ट्रूमेंट बाद में यूरोपीय लोक संगीत और मंचीय प्रस्तुतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बना।
1: दोस्तों, 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी यह उपलब्धि भारतीय महिलाओं के साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक मानी जाती है।
0: दोस्तों, आज ही के दिन 1995 में जेम्स गोस्लिंग ने जावा को आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। यह भाषा आगे चलकर कंप्यूटर और मोबाइल तकनीक की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में शामिल हुई थी।
1: इसके साथ साथ दोस्तों, 2008 में नेपाल अबॉलिशन ऑफ मोनार्की के तहत नेपाल में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हुई और देश को आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया।
0: इसके बाद है दोस्तों, 2019 में आज ही के दिन इंडियन जनरल इलेक्शन के परिणामों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को बड़ी जीत मिली और लगातार दूसरी बार सरकार बनी।
1: दोस्तों, 23 मई को विश्व भर में कछुओं और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड टर्टल डे भी मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे, मगर आइए उससे पहले हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: चर्चा की इसी कड़ी में आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं रोचक तथ्यों के बारे में, यानी कि अमेजिंग फैक्ट्स। क्या आपको पता है दोस्तों, जैसे जैसे किसी नेटवर्क में लोग बढ़ते हैं उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसे नेटवर्क इफेक्ट कहा जाता है। इसी कारण से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से शक्तिशाली बनता जा रहा है।
1: दोस्तों, महान निवेशक चार्ली मंगेर कहते थे कि बुद्धिमान लोग दुनिया को समझने के लिए कई मेंटल मॉडल्स का उपयोग करते हैं, यानी अलग अलग विषयों के सिद्धांतों को मिलाकर निर्णय लेना। इसलिए दोस्तों, आप भी कोशिश करें कि अपना कोई भी निर्णय इसी आधार पर लें।
0: क्या आपने कभी ऐसा फील किया है दोस्तों कि जब हम किसी नए अनुभव से गुजरते हैं तो समय धीमा सा महसूस होता है, लेकिन एक जैसे कामों के कारण समय तेजी से बीतता हुआ लगता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ लोगों को समय तेजी से गुजरता हुआ महसूस होने लगता है।
1: और पता है दोस्तों कि निर्णय लेने में भावनाओं की खास भूमिका होती है। थोड़ा अजीब लगा ना, पर हाँ ऐसा ही होता है। अक्सर लोग मानते हैं कि बड़े निर्णय केवल तर्क से लिए जाते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे अधिकतर निर्णयों में भावनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या आप जानते हैं दोस्तों, रिसर्चर्स बताते हैं कि कई बार अलग अलग लोगों का समूह मिलकर किसी जटिल समस्या का समाधान एक अकेले विशेषज्ञ से भी बेहतर कर सकता है, और इसे हम कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं।
1: अब आइए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं करंट अफेयर्स पर।
0: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की क्वैड बैठक नई दिल्ली में 26 मई को आयोजित होगी। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करना है।
1: दोस्तों, भारत और अफ्रीकन यूनियन ने अफ्रीका में फैले इबोला संक्रमण के कारण प्रस्तावित इंडिया अफ्रीकन समिट को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
0: दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया नॉर्डिक समिट में ग्रीन टेक्नोलॉजी, 6G रिसर्च और क्लाइमेट पार्टनरशिप पर जोर दिया है। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच कई अहम समझौते हुए।
1: दोस्तों, भारत में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच कई नए राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
0: WHO ने निकोटिन पाउच के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई और युवाओं में इसके दुष्प्रभावों को लेकर चेतावनी जारी की है।
1: दोस्तों, आगे की चर्चा पर बढ़ने से पहले आइए हम लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले आए हैं और आज हम हमारी पूरी चर्चा में एक संदेश जो कि काफ़ी साफ था वो था कि अच्छा स्वास्थ्य कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली यात्रा है। दोस्तों,
1: बिल्कुल, स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ बीमारी से दूर रहना नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना है।
0: हम अक्सर अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं।
1: अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे तभी अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे।
0: तो दोस्तों, याद रखिए कि गुड हेल्थ इज अ कॉन्स्टेंट जर्नी, यानी स्वास्थ्य जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन लिया जाने वाला एक अच्छा फैसला है।
1: तो दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज का कार्यक्रम आपके दिल को छू गया होगा और आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर ले आया होगा।
0: बिल्कुल सही कहा खुशी तुमने। दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमारे इशारे कर रही है, तो इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त
1: खुशी
0: और अपने दोस्त निश्चय को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: श्रमिक लोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की हम सफर और आपकी दोस्त श्वेता का प्यार भरा नमस्कार साथियों। दोस्तों आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सुषमा, आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार श्वेता और सभी साथियों को मेरा भी स्नेह भरा नमस्कार। और श्वेता, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है ना, तो ऐसे में हम सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्यों?
0: बहुत सही कहा। वैसे हर मौसम की अपनी खासियत और जरूरत होती है, लेकिन गर्मी भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इस मौसम में थोड़ी सावधानी अगर बरती जाए तो आप इसके प्रकोप से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, इस मौसम में पानी का सेवन खूब करें, मतलब ज्यादा मात्रा में करें। पानी वाले रसदार फल यानी जैसे तरबूज हो गया,
0: हाँ,
1: खरबूज हो गया, फल, हरी साग सब्जियां का जो सेवन करें,
0: बिल्कुल,
1: है ना। और आम का पन्ना, छाछ, सत्तू, इनका भी सेवन आपको ठंडक देगा, साथ ही आपके शरीर की जो पानी की कमी को भी दूर करेगा, है ना।
0: बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही कहा इन्होंने। और सावधानी ही तो बचाव है। इस मौसम में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि ताजा खाना ही खाएं और ठेले पर बिकने वाले मसालेदार तले भुने खाने से बचें। स्वस्थ रहेंगे तभी तो ऊर्जावान रहेंगे।
1: बहुत अच्छी बात कही श्वेता आपने। और अब साथियों को एक और जानकारी दे दें दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी हमारे देश की राष्ट्रीय सेवा है। वर्ष 1936 में इसकी शुरुआत हुई और 2026 में हम आकाशवाणी की स्थापना का 90वां, है ना, मतलब 90 वर्ष मना रहे हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, और रेडियो एक ऐसा माध्यम था जिससे लोग देश दुनिया की खबरें जान पाते थे, मनोरंजन भी करते थे। धीरे धीरे यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। बदलते दौर के साथ आकाशवाणी में भी बहुत कुछ बदलाव आया।
1: हाँ दोस्तों, सरकार की योजनाएं, शिक्षा, खेती बाड़ी, स्वास्थ्य और विज्ञान से जुड़ी जानकारियां गांव-गांव तक रेडियो के माध्यम से ही तो पहुंचाया जाता था।
0: बिल्कुल, और जब टीवी और इंटरनेट का दौर नहीं था तब हम सब जो समाचार सुनते थे, गीत संगीत का आनंद लेते थे, नाटक या क्रिकेट की कमेंट्री जो सुनते थे, या यूं कहे कि हर जानकारी के लिए रेडियो पर ही निर्भर थे, क्योंकि गांव-गांव तक रेडियो की पहुंच थी। और दोस्तों, आकाशवाणी ने देश की संस्कृति और भाषाओं को भी सुरक्षित रखने में बड़ा योगदान दिया है।
1: बिल्कुल, और रेडियो ने शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, कविताओं को भी मंच दिया है। समय के साथ आकाशवाणी ने खुद को नए और मतलब कहे नए दौर के अनुसार बदला और डिजिटल माध्यमों का उपयोग शुरू किया और आज भी इसकी लोकप्रियता बनी हुई है इस डिजिटल युग में भी।
0: बिल्कुल, अब तो लोग हर हाथ में जो स्मार्टफोन है या जो आप अगर फोर व्हीलर पर ड्राइव कर रहे हैं तो हर जगह आप ट्यून कर सकते हैं और रेडियो का हर कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। और जो हमारा श्रमिक लोक कार्यक्रम है इसे भी आप खूब सुन सकते हैं और जानकारियां और मनोरंजन कर सकते हैं।
1: और अब हम अगली बातचीत की ओर आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मतलब हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो अपनी मेहनत से शहरों और कस्बों की रौनक बढ़ाते हैं, मतलब हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी, चाय, सब्जी, फल, नाश्ता या रोजमर्रा का सामान बेचने वाले ये मेहनतकश लोग देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है। और इन्हीं के कारण जो मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है वो है, मतलब इन रेहड़ी पटरी वालों को मजबूत बनाने के लिए एक जो सरकार की तरफ से जो योजना शुरू की गई है वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।
0: अब बिल्कुल दोस्तों, कई बार पूंजी की कमी के कारण छोटा कारोबार आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। और इस योजना के तहत बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि छोटे व्यापारी अपना काम बढ़ा सकें।
1: और तो और, समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है और डिजिटल लेन देन करने पर कैश बैक का लाभ भी दिया जाता है। जरा सोचिए साथियों, जब हाथ में आर्थिक सहारा हो तो ठेला छोटा नहीं, सपना बड़ा दिखने लगता है। और कोई अपनी दुकान में नई सामग्री जोड़ रहा है तो कोई ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा दे रहा है, यही आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है।
0: बिल्कुल, और मेहनत कश साथियों, आज जरूरत है जागरूक बनने की। यदि आप भी रेड़ी पटरी का काम करते हैं तो अपने नजदीकी बैंक, नगर निगम या कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें और पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाएं। यह योजना केवल ऋण नहीं बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य का रास्ता है।
1: बिल्कुल साथियों, और श्वेता ये बात तो हम सबको जरूर याद रखनी चाहिए साथियों कि मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता और अवसर मिलने पर उसका हौसला कभी रुकता नहीं है।
0: कितनी
1: है
0: अच्छी बात कही आपने। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम में हम लोग शुरू में बात कर रहे थे गर्मी की, इससे तो कोई भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता, और हमारे साथ ही चाहे किसी भी मौसम में उन्हें तो काम करना ही है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो इतनी धूप में जो वो काम करने निकलते हैं, तो उनसे हम कुछ कहना चाहते हैं कि जब आप निकलते हैं घर से बाहर तो छाता, गमछा इनका इस्तेमाल जरूर करें, कभी हैंड ग्लव्स पहन करके निकलें ताकि आप धूप का सीधा जो असर है वो आपके चेहरे पर, आपके शरीर तक ना पड़े। और एक बहुत ही खास बात दोस्तों, गर्मी के मौसम में जब कभी भी आप घर से बाहर निकले तो खाली पेट बिल्कुल ना निकले, क्योंकि इस वजह से लू लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं,
1: स्ट्रोक होने की संभावना हो जाती है। और साथियों, जब तेज धूप में आपको निकलना ही है तो अपने सर पर पतले कपड़े, सूती कपड़े को बांध कर ही
0: बचाव के साथ निकलेंगे, तभी तो आप काम भी कर पाएंगे। और साथ में पानी जरूर रखें क्योंकि इस मौसम में प्यास कुछ ज्यादा ही लगती है, तो पानी का सेवन लगातार करते रहें।
1: और अब दोस्तों हम अपने वक्तव्य को यही

0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
1: अब क्या करें?
2: और साथियों, इस गाने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर। और श्वेता, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि गर्मी का मौसम में तापमान भी बढ़ते रहता है और हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो साथियों, गर्मी के मौसम में जो बढ़ता तापमान कई बीमारियों को न्योता दे सकता है। ऐसे में साफ सफाई, स्वच्छ पानी और संतुलित खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। विषय है गर्मी के मौसम में साफ सफाई का रखिए ध्यान। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर सुनील कुमार और आपसे बातचीत कर रही हैं हमारी रेडियो सहयोगी श्वेता आर्या।
3: दोस्तों, बीमारियां कभी भी किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ बीमारियों से हम थोड़ी सी सावधानी बरतकर बच सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है साफ सफाई। तो साफ सफाई हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पर विशेष रूप से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू।
3: सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे जीवन में साफ सफाई कितना जरूरी है।
4: साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, वैसे हमें अपने आसपास के जगह को भी साफ रखना चाहिए। साफ पानी, साफ खाना और साफ हवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
3: जी सर, तो जैसे कि हमारा शरीर हुआ, हमारे कपड़े हुए, तो इन सब की साफ सफाई क्यों जरूरी है और इसके लिए हम किन बातों का ध्यान रखें?
4: शरीर की साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण रोल होती है। जैसे कि नाखून हमें अपने काटने चाहिए, नाखून में कचरा नहीं रहना चाहिए। खाने पीने के द्वारा, नाखून के द्वारा हमारे पेट में जम्स जा सकते हैं, जिससे हमें डायरिया और तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। बचपन से हमें बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि वो अपने दांत को साफ रखें। खाना खाने से पहले कुल्ला करें, खाना खाने के बाद कुल्ला करें, सुबह शाम करके दातुन करें, ताकि दांत में कीड़े ना लगें और हमें खाना खाने में दिक्कत ना हो, खाने का मजा हम अच्छे से ले सकें।
3: जी जी।
4: शरीर की साफ सफाई में स्नान बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। नहाने से हमारा क्या होगा, शरीर में हमारे स्किन साफ सुथरा रहेगा, चर्म रोग नहीं होगा और हमें अंदर से भी अच्छा लगेगा, जिससे हमें काम करने में भी सुविधा रहेगी और आगे की जिंदगी हम अच्छे से जी पाएंगे।
3: जी सर, हमारा शरीर जो है वो एक मशीन है और जिस तरह से मशीन की साफ सफाई से, उसी तरह से हमारा शरीर तो इतना सारा काम करता है, अगर इसे हम साफ नहीं रखेंगे तो वाकई हम तो बीमार पड़ेंगे।
4: सही बात बोल रहे हैं।
3: सर, साफ सफाई में और क्या क्या चीज रोल निभाता है?
4: साफ कपड़े पहनना चाहिए, धो के धूप में सुखा के पहनना चाहिए, ताकि जम चर्म रोग ना हो पड़ जाए हमें। रुमाल तौलिया हम लोग को एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपना अपना रुमाल इस्तेमाल करना चाहिए, तो आंखों की बीमारी, स्किन की बीमारी हो जाती है। कपड़े में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कपड़े हमें रोज साफ करके पहनने चाहिए। एक ही कपड़े को रोज रोज नहीं पहनना चाहिए। गर्मियों के दिन में कपड़े, एक ही कपड़े पहनने से चर्म रोग हो जाता है, पसीने के कारण स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पसीने के कारण शरीर से बदबू आने लगती है। इसलिए कपड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कपड़े हमें धो के साफ सुथरे करके रोज चेंज करके पहनना चाहिए।
3: जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कई लोग इस बात को इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन कपड़ों में छुपे हुए कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सर, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि हमें खाद्य सामग्री में क्या साफ सफाई का ध्यान हम रख सकते हैं?
4: खाद्य पदार्थ में साफ सफाई भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि हमें कोई भी सब्जी बाहर से खरीदते हैं और तुरंत खा लेते हैं, उसे धो के साफ करके खाना चाहिए, क्योंकि आप कीटनाशक दवाइयाँ छिटकी जाती हैं जो सब्जी के माध्यम से हमारे पेट में जा सकती है, उससे पेट की बीमारियाँ और स्किन के जर्म रोग, नहीं तो ब्रेन की बीमारी पड़ती है, कीड़े घुस जाते हैं पेट में। इसलिए सब्जी को हमें धो के साफ सुथरा करके छील के खाना चाहिए। फल जो हम लोग खरीदते हैं, तो फल को हमें धो के छील के खाना चाहिए, क्योंकि फल के जो छिलके होते हैं, छिलके के द्वारा हमें जर्म्स, बैक्टीरिया हमारे पेट में जाके हमारे इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसलिए फल को हमें साफ करके खाना चाहिए। फल तो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, मगर फलों के ऊपर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होता है, उसमें कीटाणु छुपे रहते हैं, इसलिए हम लोग फल को हमें साफ सुथरा करके छील के खाना चाहिए, धो के खाना चाहिए, ताकि वो कीटाणु और कीटनाशक दवाई हमारे पेट में ना जाए और हमें इन्फेक्शन ना हो जाए।
3: बिल्कुल, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो सड़क किनारे जो फल बेच रहे होते हैं, वो देखने में तो बहुत खूबसूरत चमकीले फल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें वो जो कीटाणु होते हैं वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि पानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना पानी का तो हम रह ही नहीं सकते, जल ही जीवन है, तो पानी की स्वच्छता पर हम किस तरह से ध्यान रखें?
4: देखिए, पानी बहुत बहुत जरूरी चीज़ होती है हमारे शरीर में। पानी की जरूरत सब हर इंसान हर जानवर को होती है। पानी हमें साफ पीना चाहिए। पानी साफ पीने के लिए हमें पानी का स्रोत जो होता है उसको देखना चाहिए, उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। पानी पानी को उबाल के पीना चाहिए। यदि पानी का स्रोत में गंदगी के लक्षण लिख रहे हैं तो पानी को उबाल के पीना चाहिए, पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब काम करने वाले आदमी घर से निकलते हैं तो साथ में अपना पानी ले जाने से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें बाहर का पानी नहीं पीना पड़ेगा, अपना स्वच्छ पानी वो पी पाएंगे। कहीं भी इधर उधर का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी के माध्यम से हमारे पेट में तरह तरह के कीटाणु घुस सकते हैं जिससे हमें तरह तरह के बीमारियां पकड़ सकती
3: है। बिल्कुल सर, जैसा कि हमने देखा है कि कई हमारे जो साथी हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, तरह तरह का उनका कार्य क्षेत्र तो कई जगहों पर होता है, तो ऐसा ना हो कि वो घर से निकले इसी तरह से और जहाँ आज यहाँ काम करना है आज यहाँ का पानी पी लिए, कल दूसरे जगह काम करना है वहाँ का पानी पी लिए, तो इससे तो बीमारियाँ होंगी ही होंगी। तो इसलिए पानी का खास ध्यान रखना होगा और अपना पानी साथ लेके जाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा है, दिखने में तो साफ सुथरा होता है, तो घर और आसपास की स्वच्छता कैसे रखी जा सकती है?
4: देखिए, जिस प्रकार से हम घर को साफ सफाई रखते हुए उसी प्रकार से हमें आसपास भी साफ सफाई करनी चाहिए। घर को साफ सफाई करने में घर क्या करते हैं, हम घर को ऊपरी तरीके से साफ करते हैं, कोनों में नहीं देखते हैं, कोने में कॉकरोच कीड़े हो जाते हैं जो हमारे चल चल के खाने पीने में शरीर में चल जाते हैं, जिसे मच्छर होते हैं, मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है। उसी प्रकार से घर का गंदगी हम बाहर में फेंक देते हैं, सोचते हैं कि घर साफ है, बाहर तो बाहर से हमें क्या मतलब, मगर यदि बाहर में भी गंदगी होगी तो घर भी गंदा ही करिए सोच के चलिए आप। जैसे घर के घर गंदा होगा तो जैसे हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, बाहर भी गंदगी होने से बाहर से मच्छर पनपते हैं, कीड़े पनपते हैं जो हमें हमारे अंदर घर में घुस के हमें काटते हैं, जिससे हमारे इन्फेक्शन होने का चांस होता है। जैसे घर साफ सफाई रखते हैं उसे आसपास साफ सफाई रखेंगे तो हम सबके लिए अच्छा ही रहेगा।
3: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि घर के साथ साथ आप आस पास की भी साफ सफाई पर हम ध्यान रखें, अपने गली मोहल्लों की साफ सफाई तो वो तो हमारी जिम्मेदारी होगी। सर, हमारा कार्यक्रम श्रमिक लोक है, हमारे जो साथी हैं वो कई जगहों पर काम करते हैं, तो ऐसे में उन्हें साफ सफाई का क्या खास ध्यान रखना चाहिए?
4: देखिए, परिश्रम करने वाले आदमी जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक कोई काम कर रहा है तो आसपास में गंदगी मचा देता है, तो उससे उस आपने आसपास की सफाई करनी चाहिए ताकि वो दूसरे दिन काम करने आया तो उसके वो जगह में जहाँ काम करे वो साफ सफाई रहेगा तो उससे भी अच्छा लगेगा और उसे वहाँ पे गंदगी मची रहेगी तो उसे काम करने में दिक्कत होगी, वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा, उसके स्किन की बीमारी, हवा साफ नहीं होने से सांस लेने में भी बीमारी हो जाती है। इसलिए कार्य परिसर को साफ सफाई करने से कार्य परिसर साफ तो रहेगा, साथ साथ हमें उन्हें बीमारियों से भी छुटकारा मिले।
3: हमारा खान पान और रहन सहन ये कैसा होना चाहिए?
4: खान पान में हमें देखिए, हमें जैसे कि ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ही अच्छा खाने की कोशिश में आदमी क्या करता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खाने से अच्छा रहता है, आप कम पैसों में भी अच्छा खाना खा सकते हैं। जैसे कि चना हमें भिगो के सुबह खा सकते हैं, नमक के संग खा सकते हैं, चना भी बहुत पौष्टिक होता है, उसमें प्रोटीन होता है। उसी प्रकार से हमें ऐसा नहीं कि ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, महंगे खाना खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, ऐसे कि आदमी सोचते हैं कि उन्हें खाने पीने में कमी रह गई। ऐसा नहीं कि नॉर्मल हम लोग अच्छी कम पैसों की चीज़ भी खरीद के, मौसमी चीज़ खरीद के भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई कॉस्टली महंगी फ्रूट्स खरीद के खाना चाहिए, जो मौसमी फ्रूट्स खा सकते हैं जो उस मौसम में मिले, जो कम पैसों में मिले, उसको खा के भी हमें पौष्टिक आहार मिल सकता है। समय पे सो के उठ के सुबह दातुन करना चाहिए, दांत भी स्वस्थ रहेंगे, खाना खाने का भी मन करेगा, टाइम पे स्नान करना चाहिए, टाइम पे शौच करना चाहिए जिससे हमारे पेट की बीमारियां नहीं पकड़ेंगी, शरीर साफ रहेगा, जिससे हमें काम करने का मन लगेगा, काम करके घर में आने के बाद हमें अच्छे से खाना खा के सोने के टाइम पे सोना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी आसपास जो नशा करते हैं उन्हें बताना चाहिए कि नशे से कितनी बीमारियां हो सकती हैं। और एक चीज़ इस मामले में नशे के बारे में ये भी बताता हूँ कि हम कितनी मेहनत से कमाई करते हैं, नशे पे हम पैसा व्यर्थ करते हैं जिससे हमें आर्थिक नुकसान तो होता ही है, पारिवारिक शांति भी खराब होती है और सोशल माहौल भी खराब होता है। इसलिए नशापान से हमें दूर रहना चाहिए। नशापान से जितने हम दूर रहेंगे हम अपने परिवार पे, अपने पे और अपने सोसाइटी पे ध्यान दे पाएंगे और उनकी तरक्की के और उनके लिए हम सोच पाएंगे कि आदतें डालेंगे ताकि बड़े होके वो उस आदत को फॉलो कर पाएंगे और ताकि साफ सफाई पे ध्यान दे पाएंगे।
3: बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि लोग बच्चों को बच्चा समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ब्रशिंग की आदत अगर बचपन से नहीं डाली जाएगी तो निश्चित रूप से बड़े होकर के भी ऐसा मेंटेलिटी होगा कि क्या हुआ, बचपन में तो खाते थे, अभी भी खा सकते हैं। लेकिन ये जो मुंह के द्वारा जो हमारे जर्म्स पेट में जाते हैं तो वो हमें कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये बचपन से ही बताना होगा।
4: बच्चों को हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि सुबह सो के उठ के दातुन करें, अपने दांतों की सफाई रखें, खाना खाने से पहले साफ़ सफाई रखें, कुल्ला करें, खाना खाने के बाद कुल्ला करें, अपने सही तरीके से कपड़े पहनें, शौच करने के बाद हाथ पांव को अच्छे तरीके से धो लें, शौच के जगह को साफ रखें। क्या होगा, बचपन से ये आदत पड़ी रहेगी तो बड़े होकर भी बच्चे ये आदत को वो फॉलो कर पाएंगे, उसी कारण बड़े होकर भी उन्हें बीमारियों से छुटकारा मिलेगा।
3: जी जी सर, आपने हमारे साथियों को बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू।
2: सचमुच में डॉक्टर सुनील कुमार जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: दोस्तों याद रखिए, स्वच्छता और सावधानी ही खास जीवन की कुंजी है और इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए साफ वातावरण अपनाइए, बीमारियों से बचिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। वैसे भी आज के डिजिटल दौर में मोबाइल इंटरनेट ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन सावधानी या कहें सतर्कता हो तो और भी ज्यादा जरूरी हो सकता है।
2: बिल्कुल। और अब छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले और श्रमिक साथी भी ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल लेन देन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सुविधा के साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है। इसलिए क्लिक करने से पहले सोचें और डिजिटल युग में सुरक्षित रहें।
3: बिल्कुल, अभी आप सोच रहे होंगे कि क्लिक ये कहां से आ गया। साथियों, कई बार अनजान लिंक, फर्जी कॉल या लालच भरे मैसेज लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना देते हैं। कोई बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी मांगता है तो कोई इनाम या लोन का झांसा देता है। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन पर आपका ओटीपी, यूपीआई पिन या पासवर्ड कभी नहीं मांगता।
2: और डिजिटल सुरक्षा का सबसे बड़ा मंत्र है साथियों, सतर्कता। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सच्चाई जांचें, अपने मोबाइल में मजबूत पासवर्ड रखें और समय समय पर बदलते रहें। केवल भरोसेमंद ऐप का ही उपयोग करें। अगर कोई संदेह भरा कॉल आए तो उसे अनदेखा करें, यानी नजरअंदाज करें, और यदि किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। साथियों, जागरूकता ही सुरक्षा है और सावधानी अपनाइए और डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाइए।
3: और मुझे लगता है कि आज एक और खूबसूरत गीत अगर हम लोग सुन लें तो हमारे साथी ज्यादा खुश हो जाएंगे।
2: बिल्कुल।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सबों से विदा लेने का, तो दीजिए अपनी दोस्त श्वेता
1: और सुषमा को इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: कार्यक्रम श्रमिक लोग यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जामताड़ा के उपायुक्त आलोक कुमार ने आज नारायणपुर प्रखंड अंचल कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी विभिन्न पंजीयों की बारीकी से जांच की। इसके बाद उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। लोहरदगा में सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची जारी कर दी गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत इन मतदाताओं के लिए मैपिंग का विशेष शिविर लगाया गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद दास और अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार सहित कई अधिकारियों ने विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। हजारीबाग के समाहरणालय परिसर में आज जिला प्रशासन द्वारा कुल 24 दिव्यांगजनों के बीच बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। उपायुक्त हेमंत सत्ती के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त रिया सिंह ने लाभुकों को गाड़ियां सौंपी। कोडरमा के एनसीसी कैडेट्स में से आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की 17,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने देश के 20 लाख कैडेट में से चुने गए केवल 8 कैडेटों में शामिल होकर झारखंड का मान बढ़ाया। धनबाद में आगामी 5 से 7 जून तक 13वीं झारखंड राज्य सीनियर महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ के महासचिव संजय कुमार झा ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य भर से करीब 40 से 45 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से अब तक 19 टीमों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। राज्य के 8 जिलों में कल गर्जन के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जतई गोबर ततई धान।
1: सब सुनो ये भाई बहन के रोल मन का संगी मनोज जर
0: और करण भाई कर जोहार।
1: का हाल चाल है करण भाई?
0: हाल चाल तो नगदे नगद है और अपन बताओ कैसा ना है
1: भाई। एक ठंग दिसन गर्मी चलत है कि हम परेशानी हो जाते हैं। खेती बारी में जाइला तो वहाँ भी दिक्कत है, का कर में समझे में नहीं आवेला।
0: सही बात है, रोज तो लागत है। अभी तो ये महीना में पानी पानी खूबे रहे, लेकिन दो चार दिन से रोज सेकत है तो लागत है कि बाप रे बाप कितना रोद नहीं
1: बात है। देखो हमारे मन तो यहाँ रात इतना खे उतना गर्मी कर, अचानक पड़ी तो भाई परेशानी तो होबे करी।
0: हाँ, हमारे घर किसान भाई बहन देखो रोद में आजकल माइंड मन बहुत है, खेत के तैयार करत हैं, रोद कर दिन है काले कि एखन बढ़िया से जोतबे कोड़बे तो देखो बहुत अखन कीड़ा मन है से मर जाए और पानी सोखे का क्षमता मन बढ़े ला। एखन डांड खेती का तैयारी तो चलत है नहीं
1: भाई? देखो सही बात है, खेत में तो जाए खेत तो जरूरी है, लेकिन संगे संग देखो पानी मन चाहे खाए पिए के लिए कोनो लेते जाए खे, चूँकि प्यास लगी तो पिए के लिए फिर पानी करबे दिक्कत हो जी, और नहीं पियब और नहीं खाब तो बीमार पड़ जाब जी, तो खेत कर कोनो मतलब नहीं रही।
0: सही बात है, जीव जहाँ रही तभी तो खेत कर कोनो मतलब है, तो पानी तो संगे लेके जाए के चाहिए। और आजकल देखो आम झोरा मना है, आंबा हूँ खूबे फोर है नहीं, आंबा पानी के पुरकस पीऊ, गांव घर में बेल हूँ खूब होवेला, बेल पानी के पीऊ,
1: कर करो लेकिन करते जाओ और पियो और अपने स्वास्थ्य के
0: बनाए के रखे थे। देखो ने स्वास्थ्य कहली तो मुके याद आवत है कि पहले कहत रहे ने कि मड़ुआ रोटी मन के खा भोले, ये गरीब मन कर खाए पिए के खाई बहुत के कहन कर या दिसेला।
1: सही बात है, लेकिन वैसे सोचे के रखे हमारे मन के देखो कोरोना बेरा में देखा होना तो गांव घर का देखो सब कुछ स्वस्थ रहते रहे या रहले, कारण सब वह है।
0: सही बात है, सफा सफा हवा और तरह के का खाए पिए जो है उनकर में बहुत मिलावट न खे उनकर खाए पिए में है नहीं। और हमारे मन तो इन्हें शहर बट देखेला तो का खेला मैदा कर चीज के जे फाकुस फाकुस तने तो कोनो चा बाबू नहीं करन कोनो चाबे इनका इसने मतलब घोट देवे ना ली देवे
1: का कमने से के करो तो नामो नहीं जानी लगा का मन।
0: सही बात है, हमरे खाप तब नहीं जाना।
1: तो भाई देखो ये कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: तो हमरे कहत रही तो भाई मन देखो मड़ुआ कर जे हमारे राज्य में बहुत बढ़िया खेती होवेला मड़ुआ कर है नहीं, मोटा अनाज में तो ज्वार बाजरा कोदो मनावेला, तो हमारे राज्य में देखो मड़ुआ कर खेती बढ़िया होवेला, तो उकर वैज्ञानिक तरीका से खेती करे के चाहिए।
1: और देखो ना भाई, देखो मड़ुआ का बात कर ले तो मड़ुआ आजकल देखो तो मिक्सचर बनत है, बिस्किट बनत है, केक बनत है, और का दुनिया भर का चीज़ है जी। अगर मतलब रोटी नहीं खाते तो कम से कम वह चीज़ के खाए के कम से कम स्वास्थ्य के ठीक रखे।
0: और शहर कर देखो कि रागी रागी कह के खाएं तो ना तनिक तो रागी कहले मड़ुआ से जैसे आदमी उनकर पहले रहे नहीं कि हीन भावना तो भावना हो निकसेला। और शहर करते देखो बढ़िया किन किन के खाते हैं, बड़का बड़का होटल में छिरका रोटी पाकत है उकर,
1: सही बात है,
0: कितना बढ़िया। वैज्ञानिक ने बताया ना कि बरिसा कृषि विश्वविद्यालय है, उजर से एक उन्नत तरीका कर खोज करल जाए है कि समय है तो बिरसा 1 2 3 ईसना है बढ़िया होवेला कहन, और 404 तो झारखंड में बढ़िया की सीमा है कहन, ये कृषि वैज्ञानिक मनीषन बताया ना।
1: भाई देखो हमारे मन तो खेती करके उपजाए लगा जे मन उपजात है वो मन कम से कम खा के तो अपन स्वास्थ्य को बनाए सके।
0: और देखो जो उपजात है से मन के कचिया भेटा खा भर नहीं, मन का जो कचिया आवे तो मन करो जीव जहान बढ़िया रही।
1: हाँ तो भाई देखो आज कर कार्यक्रम में सबसे पहले एक बाद हमारे मन जानब डॉक्टर विशाखा सिंह से देखिए बताबें कि पशुओं में होए वाला बीमारी के बारे में मतलब घरेलू इलाज के बारे में है नहीं। एक बाद कृषि विकास गीत में सुनब रंथु गिरी और संगी मनकर गावल गीत, और एक ठो किसान है आज कर संजीव जायसवाल। तो देखो तो मौसम मना है कि नहीं है, कहते नहीं पहुँचे
0: मौसम तो बहुत रौद है और रौद इसने बढ़ते जाइए खन कोनो कोनो बट पानी आवे करूँ सुना है, लेकिन रांची में तो सन कोनो असरा अनुमान नखे। और रवरी कहले कि पशु कर बहुत बड़े योगदान है, सही बात है, पशुधन नखे तो खेती बहुत दिक्कत है, गोबर कर दरकार पड़ेला, आजकल तो जोते के लिए भले बहुत यंत्र मनाई जाइए है नहीं, लेकिन तुम एखनो बहुत किसान मन जोते ना छोट छोट जो खेत है उकर में है गोरु काड़ा मन से हमारे मन जोतीला। और घर कर जो उपचार करे देखो हमारे हूँ बहुत एखन करत रही उ जे का कहन मनो भाई ओल उ केहूँ पशु मन बीमार हो जाए घरे उकर प्रयोग करल जाए जी भी के अथी तन तरी फोंक फोंक उकर में लगाए ना, और कीड़ा मन जैसे हो जाए घरे शरीफा पत्ती कर रस मन के हमारे मन देवत रही, तो में तो सलाह लेके काम करे चाहिए।
1: सही बात, देखो हमारे कर अपन गतर के जे नियर हमारे मन रक्षा करेला बचाईला उसने है, मवेशी मन कर भी जरूरी है मन तो नहीं बोलवा, लेकिन हमारे मन का तो अपने आप के बुझे के समझे के कि का जरूरत है का देवे का नहीं देवे के
0: है। और एखन बहुत रोद लागत है तो तने के छाई उकरो चाहिए है नहीं।
1: तो चलो भाई।

0: एकर बारे में हमरे मन के जानकारी देते हैं डॉक्टर विशाखा सिंह इनकर से गोठिया है हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: किसान साथियों नमस्कार जोहार। जैसा कि हम जानते हैं कि पशुधन हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र की रीढ़ है। अक्सर देखा गया है कि पशुओं में अचानक कोई बीमारी या छोटी मोटी तकलीफ होने पर अस्पताल दूर होने या रात का समय होने के कारण तुरंत डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाती। ऐसे में हमारे पूर्वजों के समय से चले आ रहे पारंपरिक और घरेलू नुस्खे किसी संजीवनी से कम नहीं होते। रसोई में मौजूद हल्दी, अजवाइन, काला नमक और आसपास मिलने वाले औषधीय पौधे कैसे हमारे मवेशियों की जान बचा सकते हैं, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज इस विषय पर गहराई से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाखा सिंह, सह प्राध्यापक रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची। डॉक्टर विशाखा, आपको नमस्कार है।
2: नमस्कार।
1: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, पशुओं में होने वाली बीमारियों की घरेलू चिकित्सा क्यों जरूरी है?
2: देखिए, जैसा आपने शुरुआत में ही कह दिया कि ये कई तरह की औषधियां हमारे रसोई में होती हैं।
1: जी,
2: कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो झारखंड में बहुतायत से हैं और हम नहीं जानते कि उनमें क्या औषधीय गुण है, लेकिन सभी गुणों की खान है। हर किसी पेड़ पौधे का, उसकी पत्तियों का या फल का किसी न किसी रूप में औषधीय उपयोग हम कर सकते हैं। और चूंकि ये चिकित्सा काफी सेफ है, कहने का मतलब है कि इसका पशुओं के स्वास्थ्य पे ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, साथ ही चूंकि आसानी से उपलब्ध हैं तो इसलिए इन पे खर्च भी नहीं आता, तो वैसे पशु चिकित्सक जिनकी आय का साधन कम है और जो एक सेफ तरीके से अपने पशुओं की चिकित्सा करना चाहते हैं, उनसे रोगों की रोकथाम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतर उपाय है कि आसपास उपलब्ध अपने पेड़ पौधों और रसोई घर में जो भी मसाले हैं उनका उपयोग करके हम पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें।
1: जी, तो गाय या भैंस को पेट फूलने पर क्या घरेलू उपचार देना चाहिए, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं।
2: जी, जैसे गाय भैंसों में पेट फूलना मतलब है कि उसमें गैस बन रहा है पेट के अंदर, तो इसलिए हम ऐसी दवाइयां यूज कर सकते हैं, ऐसे औषधि यूज कर सकते हैं जिनसे गैस बनने को कम किया जा सके। जैसे हमारे सभी के घरों में उपलब्ध है वो, जैसे अजवाइन। अजवाइन को या तो आप उबाल करके जानवर को उसका पानी पिला दें या अजवाइन को पीस करके उसका पाउडर बना करके दे दें। इसके साथ ही आप सौंठ या अदरक भी दे सकते हैं, थोड़ा सा हल्का गुड़ मिला दे तो पशु से और चाव से खा लेगा। तो इन तरीकों से पशुओं में हम गैस का उपाय कर सकते हैं। इसके साथ एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसमें सरसों तेल और पानी करीब करीब आधी मात्रा में 250-250 ग्राम दोनों को लेकर के मिलाकर और पशु को पिला दें, तो इससे गैस से काफी हद तक और बहुत जल्दी आराम मिलता है।
1: पशुओं को दस्त, डायरिया होने पर कौन सा घरेलू उपचार किया जाता है?
2: इसका बहुत ही आसान उपाय है, हमारे सभी के घरों में मौजूद है वो पेड़ जिसे अमरूद कहते हैं। अमरूद की पत्तियों को अगर पशुओं को ऐसे ही खिला दें आप, तो देखेंगे कि उनका दस्त रुक जाता है।
1: जी,
2: और भी जल्दी फायदा चाहते हैं तो आधा किलो के करीब पत्ती लेकर के और उसको पानी में उबाल करके उस पानी को पशु को पिला दें जब वो पानी आधा रह जाए। इसके अलावे शरीफा की पत्तियां उपयोग में लाई जा सकती हैं और जामुन के पेड़ की पत्तियां भी हम दे सकते हैं दस्त रोकने के लिए। और इसके साथ एक चीज जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दस्त के कारण पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो करीब 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच चीनी मिला करके पशु को देने से उसके शरीर में पानी की कमी दूर होती है। और दस्त जो होता है वो मुख्य रूप से बरसात के मौसम में होता है जानवरों में, जबकि हरा चारा बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हरा चारा ना देकर पशु को सूखा चारा दिया जाए जब उसे दस्त हो। तो इन उपायों से दस्त ठीक किया जा सकता है, उसे होने से रोका भी जा सकता है।
1: सर्दी खांसी जुकाम का घरेलू उपचार क्या है?
2: जैसा हम सभी जानते हैं, सर्दी होने पे हम तुलसी के पत्ते उपयोग में लाते हैं, तो यही चीजें हम अपने पशुओं को भी दे सकते हैं। तुलसी के 8-10 पत्ते लेकर के उसे पानी में उबाल लें, उसी में 8-10 काली मिर्च कूट करके डाल दें और

0: घरेलू लेप लगाना चाहिए?
1: देखिए, पशुओं में घाव कई तरह से हो सकते हैं। कुछ घाव संक्रामक होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह के संक्रमण से होते हैं, और कुछ जो होते हैं जैसे कट गया या जल गया, उसके कारण भी घाव बनते हैं। तो इन सभी तरह के घावों में, चाहे वो संक्रमण से हुए हो या कटने छिलने से हुए हो, नीम जो है वो सबसे सर्वोत्तम औषधि है। तो नीम के पत्तों का लेप जो है वो घाव पे लगाने से घाव बहुत जल्दी भरते हैं। इसके साथ ही साथ थोड़ा हमें ये कोशिश करना है कि घाव में संक्रमण ना फैले, तो इसके लिए उसको अच्छे से धो करके, अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आप डेटॉल को हल्का गर्म पानी में डाल करके और उस पानी से धो दें, और वहां पर फिर आप नीम का लेप लगा दें। नीम के साथ साथ, जैसे कई बार होता है कि पशुओं में खुजली की भी समस्या होती है, तो उसमें करंज का तेल काफी फायदा करता
0: जी,
1: है।
0: जी,
1: तो करंज का तेल, फिर पलाश के बीज का तेल, और अगर हम FMD, जिसे खुरहा चपका कहते हैं आम भाषा में, अगर उससे घाव हुआ है खुर में, तो वहां पे हमें नीम के पानी से धो करके आप नीम के पत्तों का भी लेप लगा सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि उसके जो कीड़े होते हैं, मक्खी के कीड़े जिसको मैगोट कहते हैं, वो उस घाव में घुस जाते हैं और उसको भरने नहीं देते हैं। तो वहां पे तारपीन का तेल बहुत अच्छा काम करता है।
0: जी
1: तारपीन के तेल को अगर आप उस घाव में डालेंगे तो कीड़े निकल जाते हैं और घाव जल्दी भरता है। और इसके साथ ही साथ आप गंधक भी डाल सकते हैं। तारपीन के तेल या करंज के तेल में गंधक मिला करके डालने से भी घाव जो है वो जल्दी भरता है।
0: पशुओं में अक्सर देखा जाता है कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो पशुओं के पेट में कीड़े होने पर क्या घरेलू उपचार किया जाना चाहिए?
1: जी देखिए, कीड़ों के लिए जो बहुत अच्छी औषधि है वो है मूली के पत्ते।
0: जी
1: मूली के पत्तों को करीब आधा किलो पत्ता लेकर के और 250 ग्राम प्याज का रस में मिला देना है और उसको पशु को खिला देना है। जब ये आप खिलाइएगा तो आप देखिएगा कि पेट के कीड़े बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी औषधि है। दूसरा है नीम। चूंकि नीम जो है वो गुणों की खान है, नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण भी हैं, ये परजीवियों को भी दूर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो नीम को अगर 8 से 10 पत्ते, कोमल पत्तियां नीम की अगर खिला दें, अगर जानवर खाना नहीं चाह रहा है तो उसको उबाल करके उसका काढ़ा बना करके पिला दें, तो भी देखते हैं कि पेट के कीड़े निकलते हैं।
0: जी
1: और इसके साथ तुलसी भी बहुत अच्छा एक हमारे पास एक साधन है, जिससे पेट के कीड़ों से निजात दिलाई जा सकती है पशुओं को।
0: जी पशुओं में दूध की कमी हो जाती है, तो दूध की कमी क्या किसी बीमारी होने पर होता है या कैसे होता है, और इसके लिए हम दूध की कमी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, दूध की कमी जो होती है पशुओं में, वो उसके, आपने सही कहा, उसके कई कारण हो सकते हैं। पशु में अगर कमजोरी है तो भी दूध कम होगा। कई बार देखा जाता है कि पशु को खुरहा चपका हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया लेकिन उसका दूध नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें पशु का खान पान कम हो जाए, पशु को भूख कम हो जाए, तो उसके दूध उत्पादन पे प्रतिकूल असर पड़ता है, दूध उत्पादन घटता ही है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी औषधि है वो है शतावर। शतावर का जो जड़ होता है उसको जब चूर्ण बना करके, और चारे के साथ भी आप दे सकते हैं या उबाल करके दे सकते हैं, किसी भी तरीके से उसके जड़ को दिन में 2 बार देना है, और कम से कम इसको 1 से 2 महीने तक देना है। तो ऐसा देखा जाता है कि पशुओं के दूध में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है दूध बढ़ाने में।
0: पशुओं को अक्सर कभी कभी बुखार आ जाता है, तो बुखार आने पर कौन सा घरेलू उपचार करना चाहिए?
1: देखिए, बुखार के लिए जो सबसे अच्छा काम करने वाला चीज है वो है गिलोय।
0: गिलोय।
1: जी, जैसा हम सभी ने देखा कोरोना के टाइम पे गिलोय जो बहुत प्रचलित था, ऐसा इसलिए क्योंकि गिलोय जो है वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बुखार बहुत जल्दी उतारता है। तो अगर आपके पास दवा नहीं है, पशु को बुखार हो गया है, तेज ज्वर है, तो गिलोय का काढ़ा बना दें और उसमें कुछ पत्तियां तुलसी की और कुछ काली मिर्च जिसको गोलकी कहते हैं, उसको कूट करके अगर डाल के और पशु को इसको पिलाएंगे तो बुखार बहुत जल्दी उतरता है।
0: जी
1: एक बात मैं और कहना चाहूंगी
0: जी
1: कि चिरैता भी बुखार में बहुत अच्छा काम करता है।
0: चिरता
1: चिरैता देने से भी बुखार उतरता है।
0: जी, जैसे बुखार आ गया या पेट में कीड़ा हो गया या किसी भी कारण से, बीमारियों से पशुओं में कमजोरी हो जाती है, तो कमजोरी दूर करने

0: के लिए क्या घरेलू उपाय किया जा सकता है?
1: देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली तो कि पशु के चारे को हमेशा संतुलित रखना चाहिए।
0: जी
1: जैसे उसमें कितना मात्रा में हमको हरा चारा देना है, कितना सूखा चारा देना है, कितना दर्रा देना है, ये सब जो मात्रा है वो निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कम दे दिए, कुछ ज्यादा। दूसरी चीज है कि मिनरल मिक्सचर पशु को जरूर देना चाहिए। तीसरी चीज है कि जो सहजन की पत्तियां होती हैं, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिखता है सहजन का पेड़, उसकी पत्तियां जो है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती हैं और लीवर को ताकत देती हैं, जिसके कारण आप देखिएगा कि जो कमजोर पशु हैं वो बहुत जल्दी स्वस्थ होते हैं। इसके अलावे शतावर भी खिला सकते हैं दुधारू पशुओं में, वो भी ताकत बढ़ाता है। और साथ ही एलोवेरा, अगर चारे में आप काट काट करके एलोवेरा के टुकड़े दें तो आप देखेंगे कि पशु की पाचन क्षमता बढ़ती है और उसकी वृद्धि अच्छी होती है और दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। तो इन चीजों को अगर चारे में साथ में मिला करके दें और संतुलित मात्रा में हरा चारा भी दें तो पशुओं में वृद्धि अच्छी देखी जाती है, दूध उत्पादन भी बढ़ता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है।
0: जी तो डॉक्टर विशाखा, आपने हमें बहुत ही सरल और सटीक जानकारी दी कि कैसे हम घरेलू उपचार के माध्यम से अपने पशुओं की चिकित्सा कर सकते हैं, विशेषकर।
2: तो भाई अखन हमारे मन सुन ली डॉक्टर विशाखा सिंह से, जो कि बता लें कि मवेशी में हो एक वाला बीमारी और कर घरेलू चिकित्सा करवा रहे हैं कि घर से गुठियाले हमारे कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक।
3: सही बात है, काले की बीमारी होते रहेला तो जानकारी रही, अगर घरेलू जो दवाई मन है ओके जानब तो बहुत खर्चा सुन बच जाब और सटीक इलाज हूँ होवेला है नहीं, तो जानकारी राखे के चाहिए कि पहले तो हमने कर बड़ बुजुर्ग मन जखन अस्पताल नहीं रह सके।

0: संगी साथी मन, हमारे मन कर खेती बाड़ी अगर ना खेत तो हमारे मन तनी सा ठाव में भी नर्सरी करके अपन आमदनी के बढ़ा सकेला और अपन जीविका कर साधन के अपना सकेला। तो आज हमारे ठीक एक ठो इसने नर्सरी उत्पादक किसान भी हैं, तो उनकर समरे में जानवर भाई रोरे के हमारे से जोहार।
1: जोहार, हमार नाम संजीव कुमार जायसवाल हके। तो मैं रहक वाला हको बसिया प्रखंड गुमला जिला कर रहक वाला हको।
0: कितना दिन हो गए नर्सरी कर?
1: नर्सरी कर ऐसे 8 साल तो नौकरी कर भेलक और यह क्षेत्र में अपन 2012 से मैं नर्सरी स्थापित कर लूँ।
0: तो रोरे कर नर्सरी में का कामन नर्सरी मन के तैयार करी ला?
1: नर्सरी में हमरे जैसे वन विभाग में जितना पौधा लागे ला वही पौधा कर उत्पादन भी करी ला और बाहर से भी मंगाए के देवी ला, तो एक तरह से ट्रेनिंग होला हमरे कर विभाग में।
0: तो शुरुआत दौर में जैसे नोरे नर्सरी के शुरू कर ली तो कोनो दिक्कत मन हो रही है कि नहीं होलक?
1: दिक्कत तो कोई भी काम में शुरुआत करे में दिक्कत तो तनी मनी आवे करेला, लेकिन चूंकि मैं 8 साल नौकरी कर रहा हूँ इस फील्ड में तो से चलते मुके तो ज्यादा तकलीफ कर सामना नहीं करे पड़लक, लेकिन तनी मनी तो जब अपन काम शुरू भेलक तो तकलीफ तो होबे करलक।
0: तो शुरुआती दौर में कितना पूंजी से शुरुआत कर रही?

0: शुरुआती दौर में मोए लगभग 4 से 5 लाख रुपया मुके लाइक रहे शुरुआत करे में। और
1: तो भाई अखन तो रहे जैसे नर्सरी करत थी तो नर्सरी में का कामन लगा है, का कामन बेचत थी?
0: नर्सरी में जैसे वन विभाग जितना पौधा लगाए ला, जितना फॉरेस्ट्री प्लांट कह कर मतलब है कि जंगल में हमरे मन कर जितना पेड़ पौधा देखे के लिए मिले ला, वह पौधा कर उत्पादन हमरे करेल जे की आसानी से वन विभाग भी ले लोग और मनरेगा भी हमर से किन ले वेला।
1: तो भाई जैसे रोरे नर्सरी कर बात कर लेकर मैं गाछ वृक्ष कर बात कर ले जी कि जंगल क्षेत्र में हो चाहे फलदार वृक्ष हो मन कर रोरे करेला नर्सरी के है ना, तो अपने से उत्पादन करेला कि कहीं से लाइन के बेचेला?
0: अपन से भी करेला और बाहर से भी जैसे बृहद मात्रा में जैसे हमारे मन के अगर सप्लाई करे का है तो अपन नर्सरी में संभव न के कि उतना उत्पादन हमारे कर पावे, लेकिन बाहर से भी आवेला अलग राज्य से भी मंगाए पड़ेला।
1: हाँ तो भाई देखो रोरे कलम करेला कि कोनो बीज मन से तैयार करेला
0: नहीं, बीज से
1: पौधा
0: करीला और ये बीज कर व्यापार भी हम रहे कर हके। तो मोर अपन फर्म है ग्रीन वर्ल्ड करके और इकर हमारे ऑफिस है आरा गेट महिलोंग नामकोम में। तो हमारे मन बीज कर सप्लाई भी वन विभाग कर चुके अपन नर्सरी होला तो जनवरी से लेके मई जून तक हमारे कर बीज कर भी सप्लाई होला वन विभाग के हमारे देवीला। और जब वो बीज से उत्पादन में मान लो कि किसी कारण से नर्सरी फेल हो जाए चाहे नया कोई प्लान आ जाएला तो अचानक पौधा कर जरूरत पड़ेला तो पौधा भी हमारे मन सप्लाई करेगा।
1: तो रोरे कितना ठाव में नर्सरी के लगा है?
0: हमारे नर्सरी है करीब करीब 3 एकड़ में।
1: 3 एकड़ में?
0: हाँ, और एखन आगे ओके नर्सरी के बढ़ाए कर है करीब करीब 7 एकड़ में हमारे मन के बढ़ाए है क्योंकि अब झारखंड बिहार दोनों राज्य में हमारे कर सप्लाई कर काम होते है। तो से चलते बड़ा ठाव एखन लेवे के लिए बातचीत चलत है।
1: बहुत सारे ऐसे श्रोता मन है अगर शुरुआत से मन करे चाहते तो का मन के शुरुआत दौर में करे चाहिए नर्सरी कर तैयारी?
0: शुरुआत में करे के लिए पहले तो हर काम के करे के लिए पहले पूंजी कर व्यवस्था करे पड़ेला। तो कुछ भी पूंजी है 1-2 लाख रुपया भी है तो उके करल जा सके, अपन जगह है तो ठीक है और नहीं तो कम से कम अपन अगर ठाव है तो अपन ठाव में एग्रीकल्चर विभाग से कृषि विभाग से संपर्क करके, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मनरेगा है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है अखन विशेषकर हॉर्टिकल्चर और कृषि विभाग ही कर ले फंड कर भी व्यवस्था करेला पूंजी कर और उकर में सब्सिडी है 35 से 40%। जैसे 1 लाख पूंजी अगर ले थी सरकार से तो उकर में 35-40% तो सब्सिडी कर रूप में रोरे के माफ हो जी। अब माफ करल के बाद 60% बाँची, 65-65% जे भी बाँची तो वो रोरे के धीरे धीरे करके भरे का है, कमाई के भरे का है।
1: तो भाई देखो सरकार जैसे सुविधा वाले के लिए का करे पड़ेगा हमारे मन की?
0: बस विभाग से संपर्क करे पड़ी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके हुआ कुछ फॉर्म कर है, जमीन कर कागजात है सब जमा करे पड़ी और उकर बाद हुआ से जिला स्तर पर भी कर है हॉर्टिकल्चर में, जिला स्तर कर जिला पदाधिकारी जी यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कर उकर से जाए के मिलू। अब मिलल कर बाद में हुआ फार्म मिली, फार्म भर के जमीन कर कागज कर साथ हुआ अप्लाई कर दू।
1: तो रोरे जैसे कि गाछ मन का करे का गाछ मन कर नर्सरी करी ले?
0: सागवान है, शीशम है, महोगनी ओकर साथ में करीब करीब 350 वैरायटी है लेकिन लगभग 30-40 वैरायटी ऐसा है जे की हमेशा बिकेला जे जनरली हमरे कर घर द्वार में देखे के लिए मिलेला जंगल में मिलेला, बस वह चीज कर करना है।
1: और फलदार वृक्ष मन?
0: फलदार वृक्ष में आम है, लीची है, अमरूद, लेम्बू, ये सब चीज कर सारा चीज कर बहुत सारा वैरायटी है ओके करल जा सकेला।
1: जैसे बहुत सारा किसान मन चाहे बहुत सारा ऐसा है जे की फलदार वृक्ष मन के लेवे चाहते ले ले उमन के गाछ के ले ले तो गाछ करे बढ़िया गाछ ओकर पहचान का है, कैसे पहचान में की बढ़िया गाछ है?
0: और पहचान करे के लिए तो पहले काम करे शुरू करे पड़ी और करते करते में पहचान हुई।
1: जिससे बहुत कुछ किन के लगे घर में रोप लें तो रोपे से पहले क्या करे चाहिए गड्ढा मन किसे
0: रोपे से पहले मोटा मोटी अगर समय है तो मार्च अप्रैल में वो गड्ढा के कोड़ देवे है जहाँ पौधा लगाए है कम से कम 1 से 1.5 फीट 2 फीट तक गड्ढा कोड़ देवे है और कोड़ल कर बाद में जो मिट्टी निकली उके बाहर में फैलाए देवे है और उके धूप लागे देवे है 1-2 महीना धूप लागे देवे है। अगर देहाती क्षेत्र में हमरे में नहीं तो उकर जो करंज कर फूल है, नीम कर है, पत्तार खर पतवार जितना है वो चीज के जमा करके रखे है और उके वह गढ़ा में 1-2 महीना धूप लागल बाद वह गढ़ा में तोप के और मिट्टी से भर देवे है और जब बारिश कर पहला पानी आवी तब तक वो खरपतवार जो है वो सड़ जी तो खाद कर रूप ले ली। अब बरसात कर फर्स्ट पानी आवला 15 जून कर बाद ओके रूपे।
2: तो एखन हमरे मन संजय जायसवाल से मनोज कुमार कर करल गोइठ के सुनत रहे, बहुत बढ़िया बतात रहे।
3: तो एक संग किसानवानी कर बेरा हो सिरा थे बता चुके चाहे कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
2: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।

0: जागरूक बनो, समाज कर कुरीति के मिटाओ।
1: एकदम फिर से सबके जोहार नमस्कार, करण भैरव के भी जोहार
0: जोहार जोहार, सब समय मन के जोहार। और आशा करेला कि हमर तो जीव जहान नगदे है, राउर करहु नगद होवी।
1: सही बात है, रहे भी चाहिए। और देखो नहीं, प्रचंड गर्मी कर मौसम में देखब तो, आजकल देखब तो बहुत सारा मन एक दूसरा के सेवा करत हैं। सेवा करके मतलब है कि पानी मन पिलाते हैं, चाहे कोनो कोनो खिलाते हैं पिलाते हैं, तो इससे नहीं हमारा मन के भी कन्फ्यूज करे चाहिए शुरुआत।
0: नहीं देखो, सही कहली, मनुष्य के आदमी मन के नहीं, सामाजिक प्राणी हमारे हके तो जरूर कुछ सेवा कर भाव लेके आवे चाहिए। खाली अपने लिए जिले तो का फायदा नहीं, अपन ले जिले तने की मन के संतुष्टि होने हो गेला तो तनी बेरा निकसाई के बेरा निकसाई नहीं पारत है तो के खोकचिया दे दे ऊ जाए की मदद कर देवी है नहीं।
1: और देखो ने पशु पक्षी मन देखो तो हो ले तन पानी कर दिक्कत हो जाला, तो घर कर छत में कहने के कम से कम तनी मन पानी मन रखे के चाहिए, कहां से उड़ के कौन पक्षी आए के पी के चल जाए।
0: तो एकदम सही कहते, घर में चापाकल है तो पानी उजक तनी के हिला ले डीले ला तो कौन कौन से देखो चरे मन आई के पिए ना, तो जरूर उसन व्यवस्था करे के चाहिए। रोद कर दिन है हमरे तो उन्हें से व्यवस्था करी ला, सो बोट सुख जाए हल्ला कब्रिक तो पानी तनिक लगातार आते आहे से चलते तनिक नदी नाला में खन पानी आहे।
1: हाँ सही बात है, लेकिन देखो लेकिन शहरी क्षेत्र में देखा तो एखन तक पानी करते नहीं दिक्कतें है, गांव क्षेत्र में तो खैर कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर में देखो बहुत सारा पशु पक्षी मन रहे ना तो हो ले तनी मने पानी कर दिक्कत है।
0: तो देखो हमरे मन के अपन जीव जहान के बढ़िया राखे करूँ तिहा करे चाहिए, और बढ़िया बढ़िया हमरे पौष्टिक आहार मन खाब तो जीव जहान बढ़िया रही है नी। एखन देखो खीरा मना है तो ककड़ी मना है तरबूज मना है, उ केहूँ लेते रहे चाहिए। आप रौरे कहब कि निकले कचिया न खे तो कैसे लेव, तो कचिया हूँ कमाए चाहिए का।
1: सही बात है कि और कचिया कमाए के आगे बढ़ के और देश का नाम के भी रोशन करेंगे।
0: हाँ कचिया के देखो सही ठाव में लगाए चाहिए, अगर कचिया हमारे मेहनत से कमा थी तो के बढ़िया ठाव में लगाए चाहिए, बढ़िया छुआ में पढ़ाई लिखाई में अपन पौष्टिक आहार में तनिक पिंधना उढ़ना में हूँ ध्यान देवे चाहिए। लेकिन मनोज भाई देखे ला कि बहुत एकन माए बाप के जो कचिया कमाए नहीं उके खर्चा नहीं करें, कचिया काले कमाए जान थी।
1: सही बात है, अपन बेटा बेटी कर शादी ब्याह कराइज के लिए इतना खर्चा हो जाए है नी। हाँ। भाई उकरे में सब कुछ लगाते हैं।
0: सही बात है, कचिया तो कमाते हैं उके जतनाई के राखत हैं, काले की दहेज देवे का है एहो कि दहेज नहीं देवत है तो बेटी कर ब्याह नहीं होवत है, ऐसा हुआ है तो मुके लागेला दहेज तो सौंप के जाने ना कि बेस ना लागे समाज ले, समाज के घून के तो खात है घून जैसा, लेकिन ये सिराय के नहीं पारत है। और मुके लागेला कहिया सिराई काले के आजकल तो सौंप पढ़त है।
1: सही बात है, देखो आजकल कहब तो दहेज प्रथा नाम का कोनो से चीज ना खे, सब स्वेच्छा से देवत है।
0: आजकल नाव बदल जाइ है, आजकल डिजिटल स्मार्ट युग कर जमाना आई है, तो आजकल देखो सीधे सोना चांदी नहीं मांगे ना उमन ने, आजकल डिजिटल तरह से स्मार्टफोन से उमन कचिया कर लेन देन UPI मन कहिल हमरे, तो उसन कहे ना आजकल QR कोड से देखो एकदम सगुन हुआ थे, QR कोड दूल्हा चौड़ा के भेजत।
1: सही बात, देखो करण भाई स्वरूप तो चेंज होते रहे लेकिन कम से कम अपने आप पर बदलाव करे के चाहिए, जे मन सक्षम नखे उमन के हमारे मन के दबाव दे के नखे कि भाई कचिया चाहे कोनो शादी में इतना खर्चा उतना खर्चा उतना भी करे के नखे, अपन स्वेच्छा के अनुसार से खर्चा भी करे के दिखावा करे के नखे।
0: सही बात है, कचिया के बचाई के रखे के बढ़िया दिन ले, और जे घर कर परिवार अगर स्वेच्छा से कोनो देवे के नहीं सकत हैं तो ठीके कहली कि दबाव नहीं करे के चाहिए। गोटे आंकड़ा बताएला कि दहेज नहीं लेवे के देवे कर चक्कर में 6,000 से बेसी महिला मन कर मौत हो जाए, ऐसा गोटे आंकड़ा बताएला तो जान चल जाए दहेज करना उसी, तो बेस बात ना नहीं लागे।
1: अब भाई देखो बहन कर बात कर ले तो हमरे कर एक ठो बहन है जानकी देवी जी का, जगवाए कर कोशिश भी करत है।
0: तो और गीत सुने कर बात करती
1: भाई। हाँ।
0: चलो तब सुन लेवे ला कैसन जगात है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: तो देखो, समाज के आगे बढ़ाए के लिए महिला पुरुष दियो कर आगे बढ़े बहुत जरूरी है। नहीं, दियो सशक्त रहे तो देश सशक्त होगी, दियो बरियार रहे तब नहीं घर दिला बरियार।
4: और महिला मन कर कहा, बहन मन कहा, तो एक तो सबसे बड़ा योगदान है। तो भाई चलो एक ठो जानकारी हमारे मन सुनील है डॉक्टर गीता कुमारी सिंह से, जिकि बताबे
3: कुरमाली में बताबे महिला सशक्त होबे तो देश का तेर विकास करी है। नहीं,
5: सबले पहिल हमरा के जानेगा ही जे महिला सशक्तिकरण किना है के। सशक्तिकरण कर मतलब हेले जे कोनो लगे ओहे क्षमता जेटाले जीवनक संग जड़ल सब निर्णय निजे ले पारे। महिला सशक्तिकरण टाइम ओहे बात आहे, बेटी छुआई परिवार समाज कर बंधन ले बाहराई के निजे कामेक निर्णय लेवाटा। इटा के हमरा एसनो कहे पारियोग निजे फैसला लेवे अधिकार देवाटाई महिला सशक्तिकरण है के। कोनो देशे पूरा विकास बेटी छुआक भागीदारी बिना संभव नेखे। इटा कोनो दुई मत नेखे कि आज बेटी छुआ सशक्त नेखत। आज बेटी छुआई सब जगह सबल है के काम करहत, कोनो जगह बेटी बेटा छुआ ले पेछुई नेखत। इतना टीए नी औरा घरे काम पाइट भालो करी के देखोहत। घर परिवार एक समाज एक दाय दायित्व और ऊपर उतना ही रहे हैं जितना एक घिरनी के ऊपर। हिंदी महान एकटा कहावत आहे, जब है नारी में शक्ति सारी तो फिर क्यों नारी को कहें बेचारी। हमरा देशे बेटी छुआ के पहला प्राथमिकता देवाल गेला है। परिवार समाज बेटी छुआ ऊपर खराब व्यवहार है। बेटी छुआ घरे भीतर ही रहोहत और ओरा के घरे काम करियाई बुझथिन। ओरा ऊपर घरे केरे जिम्मेवारी रहे हैं। निजे अधिकार और विकास कर ले के किछु नी जाने पावत आर न जाने देथिन। हमरा देशे बेटी छुआ कर आबादी मोटा मोटी आधा आहे। सही तेहे देश के शक्तिशाली बनावे और देश कर विकास एक खातिर महिला सशक्तिकरण बेजाय जरूरी आहे। बेटी छुआ राष्ट्र कर भविष्य रूपे एकटा छुआ के जन्म दे और छुआटा विकास और योग्यता आधारे राष्ट्र कर विकास निश्चित आहे। सही महान राष्ट्र कर उज्जवल भविष्य तेहे सबले बेस योगदान दे पारे। महिला सशक्तिकरण कर लाभ परिवार समाज एवं देश कर संग जड़ल आहे। यदि देश के सशक्त बनावे आहे तो सबले पहिल बेटी छुआ के सशक्त बनावे दरकार आहे। बेटी छुआ शिक्षित हेली तो ओय पूरा परिवार के शिक्षित करे कोशिश करती। महिला कर विकास मतलब पूरा परिवार समाज और देश कर विकास। एखनो गांव में बेटी छुआ के पढ़ावे के लिए बेसी घरे काम पाट सिखाउथिन। यानी हमरा देशे बेटी छुआ के छुटु खिनले सिखाउथिन जे आगु बाटे जाय के केवल घरे देखभाल करे आहो। जेटा बेटी छुआ ते हैं गलत नहीं बल्कि पूरा देशे खातिर हानिकारक है कि देशे बेटी छुआ रोढ़ुआ रहा माने देशे मोटा मोटी आधा आबादी मुरुख रहा। यदि देश कर बेटी छुआ आत्मनिर्भर नी हेला आर औरक भीतर आत्मविश्वास नी रहलेन तो देशे बेटी छुआ खाली रांधा साफ तके रही जाता। परिवारे समाजे बेटी छुआ संग खराब व्यवहार है और इटा कोनो जरूरी नहीं है कि केवल अनपढ़ बेटी छुआ ऊपर है। पढ़ल लिखल बेटी छुआ इटा शिकार है। तफात इतना रहे है जे पढ़ल लिखल बेटी छुआ अन्याय कर विरुद्ध आवाज उठावत आर बिना पढ़ल गिलाई हिम्मत नी करत। से महान बेटी छुआ जदि सशक्त हेली तो अन्याय करिया के दंड देवे पारे। महिला सशक्तिकरण कर एकटा लक्ष्य इटाव आहे जे प्राय देखल गला है कि ई महंगाई कर दिने खाली बेटा छुआ कमाइले परिवारे गाड़ी ठीक से नी चले पारे। इठिन कार बेटी छुआ ऊपरी कमाई हेले परिवार महान कोनो जिनिसे कटकिना नी है। से महान बेटी छुआ शिक्षित हेवा संगे संगे कामकाजी हेवा जरूरी है के बहुत बेटी छुआ तो एसनो आहत जे अराग भीतरे कतेक नियर गुण भरल रहे हैं। मंतुक उचित मार्गदर्शन कर अभावे निजे गुणटा देखावे नी पारत। सही खातिर जदि अराग सही मार्गदर्शन हेलेन ताहले अरा निजे हुनर देखावे पड़ता आर अरा करल काम ले देश कर विकास निश्चित आहे। बेजाय एसन देश आहे जहाँ एखनो बेटी छुआई गुलाम नियर काम करोहत। उ देशे बेटी छुआई निजे बाटेले कोनो निर्णय नी लेवे पारे अरा दसर कर उपरे आश्रित आहत। बेटी छुआक ऊपर जे अत्याचार बा अपराध हेवे है इटाले मुक्ति पावे जलाय पूर्णा सोच वाला लोगे मन के सामाजिक योजना कर द्वारा बदले जरूरत है। महिला सशक्तिकरण कर मतलब टके सीधा सीधी कहे पार हो जे बेटी छुआ के नीचे निजे जिंदगी कर फैसला और स्वतंत्रता देवा। एरिया पेरिया समय ले आधुनिक काल तक बेटी छुआ स्थिति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपे समान नहीं रहें। कतेक धाम बेटी छुआ हालत बदलोली। शुरुआती वैदिक काले बेटी छुआ बेजाय शिक्षित रहत। बेटी छुआ ऊपर भेदभाव बाल विवाह दहेज प्रथा सती प्रथा ई सब गिलाले शुरू हेली। बेटी छुआ सामाजिक आर्थिक अधिकार कम करिदेवाल गेले आर ओरा परिवारे बेटा छुआ ऊपर निर्भर रहे लगला। मंतुक आज समय बदलोले महिला अधिकारे बारे समाज जागरूकता अनेकते हैं। मातृ दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नियर कोई एकटा कार्यक्रम सरकारे चलावेस आर लागू करल गेला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहल एकटा टूम है लोगों को जगाने के लिए महिला को जागृत होना जरूरी है। एक धाव बेटी छुआई अपन गोड़ उठावली तो परिवार गांव पेछु नी रहे है और राष्ट्र कर विकास शुरू है लगे। बेटी छुआ आज कोनो क्षेत्र पेछु नेखत और निजे छुआ जिम्मेदारी भालो करी के पूरा करत। राजनीतिक क्षेत्र महानव बेटी छुआ भागीदारी आगुआ हैं। आज बेटी छुआई मंत्री पद के सुशोभित करे थी। तीर धनुष खेल ई सब गिलायो महिला आगुई आहत जदि पंचायत चुनाव कर बात।
3: तो एखन हमरे मन गीता कुमारी सिंह से जानत रही कि महिला मन बरियार हो बे सशक्त हो बे तो देश से कर विकास कर में तेजी से होवी। तो बढ़िया जानकारी रहे कुरमाली में हमरे सुनत रहे।
6: भाकपा माओवादी के भाई और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भाई मुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल जंगल जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
4: तो भाई देखो अब एक संग आइज कर हमारे दिनों के बेरासी रात है।
3: सही कहते तो रोद कर दिन में अपन जीव जहान कर बढ़िया ख्याल रखू है नहीं हमारे मन यही आसरा करी लगे रवरे मन एकदम तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो।
4: तो रवन का संगी मनोजर
3: करण भाई के विदा देव
4: जोहार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने की युवाओं से देश सेवा की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था के लिए जारी किए कड़े निर्देश। कहा कि किसी भी गांव, टोले या मोहल्ले में नहीं हो पानी की कमी। राज्य भर के मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। अगले 2 सप्ताह तक मतदाता देख सकेंगे नाम। लातेहार पुलिस ने JJMP के 5,00,000 रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशव्यापी 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। देश भर में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया था। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए कई अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं।
5: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: इसी कड़ी में रांची के CCL सभागार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां रेलवे, सेना और डाक विभाग सहित 6 विभागों के 132 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांकेतिक रूप से 25 युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किया हर वादा क्रमबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं।
6: हमारा स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है, हमारा MSME अच्छा काम कर रहा है। देश के युवा दुनिया के किसी भी युवा से कम नहीं। और इसी तरह रोजगार, सरकारी नौकरी और अब तक लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। यह है प्रधानमंत्री का मंत्र, सबका साथ सबका विकास। देश विकसित भारत 2047 की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: उधर धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 88 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के हर युवा को रोजगार से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अब तक 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।
7: झारखंड की वर्तमान स्थिति, आए दिन घटनाएं घट रही है, आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्याएं हो रही है। तो इस तरह की घटना के बाद भी राज्य सरकार जाग नहीं रही है। 7 साल से ज्यादा समय हो गया, महिला आयोग का गठन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार गंभीर नहीं है महिला सुरक्षा को लेकर। तो राज्य की महिलाओं को उसका हक, उसका अधिकार मिले, उन्हें कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहां अपनी बात को रख सके।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों और थानों को अपने दफ्तरों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी गांव या टोले में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया है। राज्य में आज से सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रदर्शित कर दी गई है, जिसे देखने के लिए सुबह से ही बूथों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। एसआईआर के तहत जिन मतदाताओं का नाम इस सूची में नहीं मिल रहा है, वे संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से संपर्क कर अपनी मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करवा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि यह सूची आज से अगले दो सप्ताह तक सभी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर शिव नारायण भुइया सहित दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। SP कुमार गौरव ने बताया कि इस कार्रवाई में उग्रवादियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं।
8: टीम के द्वारा बड़ी ही कुशलता से शिवा सिंह की गिरफ्तारी की गई। शिवा सिंह खेरवार है, इसके विरुद्ध कुल 24 कांड दर्ज है। ये सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था और इसके विरुद्ध सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और इसके साथ ही एक सकलदीप उरांव जो एरिया कमांडर के रूप में JJMP में कार्यरत था, उसकी भी गिरफ्तारी लातेहार थाना क्षेत्र से हुई। साथ ही सभी नक्सलियों को यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि मुख्य धारा से जुड़े, आत्मसमर्पण करें।
1: कोडरमा के NCC कैडेट आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की 17,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने देश के 20 लाख कैडेट्स में से चुने गए केवल 8 कैडेटों में शामिल होकर झारखंड का मान बढ़ाया। एनसीसी अधिकारियों ने आकाश की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह उसके धैर्य, अनुशासन और इच्छा शक्ति के बल पर मिली सफलता है।
9: पूरे झारखंड की तरफ से यह पहला ऐसा लड़का है जिन्होंने 17,800 फीट पर जाकर तिरंगा को फहराया है। ये उसके लिए भी गौरव की बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात है, हमारे बटालियन और हमारे उसके लिए भी गौरव की बात है। ये बहुत दुर्गम इलाका होता है जहां सांस लेने में कठिनाई आती है, कोई राहगीर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, पानी की कमी रहती है, ठंड उतना ही रहता है, फिर भी ये बच्चा वहां पर जाके सर्वाइव किया।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य के 8 जिलों में कल गर्जन के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गुड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 से 2 जून तक नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा, जिससे पारा और ऊपर जा सकता है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज कई महत्वपूर्ण मुकाबले हो रहे हैं। पुरुषों की डेकैथलॉन स्पर्धा में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने शानदार शुरुआत की है। उन्होंने 100 मीटर रेस और लंबी कूद में अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया और कुल 2,575 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर चल रहे हैं। धनबाद में आगामी 5 से 7 जून तक 13वीं झारखंड राज्य सीनियर महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ के महासचिव संजय कुमार झा ने बताया कि बिरसा मुंडा पार्क के पास स्थित डॉक्टर जेके सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस महाकुंभ में राज्य भर से करीब 40 से 45 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से अब तक 19 टीमों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने की युवाओं से देश सेवा की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था के लिए जारी किए कड़े निर्देश। कहा कि किसी भी गांव, टोले या मोहल्ले में नहीं हो पानी की कमी। राज्य भर के मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। अगले 2 सप्ताह तक मतदाता देख सकेंगे नाम। लातेहार पुलिस ने JJMP के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: गृह मंत्रालय भारत सरकार 16वीं जनगणना का कार्य कर रही है। इसके तहत डिजिटल तरीके से जनगणना के आंकड़ों को सहेजा जाएगा। इस गणना में पहली बार स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे लोग अपने से पूरा कर सकते हैं। 1 मई से 15 मई तक यह प्रक्रिया चली। तदुपरांत 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक साहिबगंज जिले में प्रगणक मकान गणना हेतु घर घर जाएंगे। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ही सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है।
2: 1 मई से

0: 15 मई 2026 तक स्वगणना की सुविधा आप सभी को उपलब्ध होगी। यह सरल, सुरक्षित एवं संक्षिप्त प्रक्रिया है। मकान सूचीकरण कार्य हेतु 16 मई से 14 जून 2026 के बीच जब प्रगणक आपके घर आए तो यह आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं।
1: साहिबगंज जिले में गत दिनों आयोजित हुए वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में जिले के किसानों को आगामी फसलों के लिए अल्पवृष्टि अतिवृष्टि की स्थिति से बचने के कार्य पर चर्चा हुई। खरीफ में यहां के किसान धान के एमटीयू 70-29 स्वर्णा की खेती करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर मॉनसून की अनिश्चितता को देखते हुए कंटिंजेंट प्लान के तहत कार्य किया जाएगा ताकि फसलों को बचाकर किसानों को लाभ दिया जा सके। इसके अतिरिक्त कृषि में अन्य विकल्पों के माध्यम से भी किसानों को सशक्त करने पर कार्य किया जाएगा।
2: किसानों के बीच में हम लोग स्वर्णा धान के साथ और दूसरे धान के प्रभेदों को कैसे इंट्रोड्यूस करें ताकि किसान उसको अपना सके और जल्दी तैयार होने वाले बीजों को खेती करें ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपज भी प्राप्त कर सके और रबी का जो तैयारी है वो जल्दी रबी की तैयारी कर सके। खरीफ सीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट का ड्रॉप कंटिजेंट प्लान तैयार किया है जिसको हम लोग राज्य सरकार को दे रहे हैं।
1: साहिबगंज जिले में धान गेहूं के अलावे मिलेट्स और सरसों की खेती भी अच्छी उपज दे रही है। विरसा भाभा मस्टर्ड 1 किस्म की उपज से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावे मशरूम पपीता लहसुन प्याज तथा परवल की खेती कर रहे किसानों के समग्र विकास को लेकर भी प्रयास किया जाएगा। जिले में खेती बाड़ी किसानी से जुड़े लोगों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उच्च उत्पादन क्षमता गुणवत्तापूर्ण खेती कम लागत और ज्यादा मुनाफा अर्जित करने का साधन बनाने के लिए भी कार्य किया जाएगा।
3: 26-27 में हम लोग जो एक्शन प्लान कर रहे हैं किसान के लिए हमारे समग्र इनका विकास हो सके उसके ऊपर हमारा ये कार्यक्रम रहता है। तो हमने पिछले बार क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन सामूहिक अग्रिम पंक्ति कार्यक्रम उसमें पाया है कि बिरसा भाभा मस्टर्ड और सरसों की जो वैरायटी है वो बहुत अच्छा कर रही है। और इसमें हमने ये भी किया है कि हम साथ में मशरूम हो पपीते की खेती प्याज और लहसुन की खेती पे बहुत ज्यादा हम लोग जोर दे रहे हैं।
1: आज विश्व कछुआ दिवस है। क्रमिक विकास की कड़ी जोड़ने वाले इस सरीसृप का धार्मिक और इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम पर्यावरण

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार, जिसे आज आप सुनेंगे नागपुरी, उरा, मुंडारी, हो और संताली भाषा में।
1: ई आकाशवाणी रांची है। अब रोडमन राकेश कुमार मिश्रा से नागपुरी में हफ्तावार समाचार सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मदद से झारखंड संगे देश भर के 51,000 से बगरा युवा मन के नियुक्ति चिट्ठी बांट लें। ओ बेरा श्री मोदी कहलें कि भारत के एक देश मन कर संगे साझेदारी करे के लायक है, जेकर उद्देश्य देश कर युवा मन के रोजगार और दुनिया भर कर अनुभव देवे के है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी धनबाद में और रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ युवा मनकर मांझे नियुक्ति चिट्ठी बांट लें। निर्वाचन आयोग 10 राज्य मनकर 24 राज्यसभा सीट मन ले हर 2 वर्ष में भेवे वाला चुनाव कार्यक्रम घोषित करे, जेकर में झारखंड कर 2 सीट भी है। राज्य भर कर सोभे मतदान केंद्र मन में आज अनमैप्ड मतदाता मनकर सूची प्रकाशित करल गेलक। इस सूची 2 हफ्ता तक दिखत रही। सोभे अनमैप्ड मतदाता अपन बीएलओ से भेंट करके मतदाता सूची में अपन मैपिंग कराए सकें। रांची कर धुरवा ठेन पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कर 25 नक्सली मन और JJMP कर 2 उग्रवादी मन हथियार कर संगे आत्मसमर्पण कर लें। DGP तदाशा मिश्र कहलें कि ई मन कर पुनर्वास और उनकर मांग मन के पूरा करे कर दिशा में कार्रवाई करल जाए। रांची कर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू नवा बनाल बिरसा मुंडा कर प्रतिमा कर उद्घाटन कर लें। वो फीचर वाल, उड़ान, यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और फ्लाई ब्रेरी कर भी शुभारंभ कर लें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड IoT सिस्टम कर उद्घाटन कर लें। इस मौका में वो कहलें कि आधुनिक तकनीक मन उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में बदलाव लाना थे। आकाशवाणी कर 90 बरिस कर गौरवशाली सफर कर उपलक्ष्य में आकाशवाणी रांची केंद्र बटले आयोजित रागांजलि कर दूरदर्शन झारखंड में सफल आयोजन संपन्न भेलक। इस विशेष अवसर में प्रसिद्ध केड़िया बंधु अपन मधुर संगीत से माहौल के सुरमय बनाए दिलें। केंद्र सरकार बिहार कर गयाजी परैया स्टेशन से चतरा कर नवा रेलवे लाइन परियोजना के मंजूरी दे दे है। चतरा कर सांसद कालीचरण सिंह बता लें कि रेलवे इके स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट घोषित कर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में एगो समारोह में सहायक आचार्य मन संगे महिला पर्यवेक्षिका मन के नियुक्ति चिट्ठी बांट लें। इस मौका में मुख्यमंत्री कहलें कि इकर से राइज कर स्कूल मन और आंगनबाड़ी केंद्र मन कर व्यवस्था और मजबूत भे। रांची कर होटवार जेल में महिला कैदी कर यौन शोषण मामला में झारखंड हाईकोर्ट खुदे संज्ञान लेकर DGP से 2 हफ्ता में रिपोर्ट मांगे। राज्य सरकार कोर्ट के बतालक कि मामला कर जांच ले 3 सदस्यीय कमेटी बनाल जाए, संगे जुडिशियल इंक्वायरी भी चलत है। पाकुड़ जिला कर झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत के केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय बटले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार ले चुनल जाए। महिला सशक्तिकरण, रोजगार और बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा मनकर क्षेत्र में सोपकर से बेस काम ले इस पंचायत कर चयन दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार ले भे है। जैक JTET परीक्षा 2026 कर अभ्यर्थी मन ले ऑनलाइन आवेदन कर आखिरी तारीख आगे बढ़ाए दे है। अभ्यर्थी मन JTET ले आवे वाला 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकें। गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे के 1 लगस्ते 17वां धाव प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार ले चुनल जा है। संसद रत्न अवार्ड समिति संसद में जनहित कर मुद्दा के मजबूती से उठाए सक्रिय भागीदारी और बढ़िया प्रदर्शन कर आधार में उनकर चुनाव कई रहे। झारखंड कैडर कर 2010 बैच कर IPS अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा के केंद्र सरकार कर BSF में DIG पद कर पद में नियुक्ति करल जाए है। राजधानी रांची कर बिरसा मुंडा स्टेडियम में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता कर भव्य शुभारंभ भेलक, जेकर में देश भर से 750 से बगरा एथलीट भाग लेवत हैं। प्रतियोगिता कर पहला दिन 7 मुकाबला मनकर फाइनल मुकाबला संपन्न भेलक। पुरुष 100 मीटर दौड़ कर सेमीफाइनल में अनिमेश कुजूर 10.15 सेकेंड कर समय निकाल के नवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लें। नोएडा में चलत 11वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में झारखंड बहुते बेस प्रदर्शन कर रहे। इस प्रतियोगिता में झारखंड कर खिलाड़ी रुद्रांश शर्मा स्वर्ण पदक जीत के राइज कर नाव रोशन कर रहे। जमताड़ा कर देवासी हेमरम थाईलैंड में चलत एयर गन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में बेस प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल अपन नाव कर रहे। इकर संगे आकाश में रांची से नागपुरी में हफ्तावार समाचार सिरालक जोहार।
3: ईद आकाशवाणी रांची के अकुनिम पुतुल त्रिकीति कुड़कनु हफ्ता खबर मिना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेला नु वीडियो कॉन्फ्रेंस ही शहरा ती झारखंड समेत देश भर ता 51,000 ती बग्गे आलर गे नियुक्ति पर चौपचस। ई बबेद सही मोदी बातचीत का भारत का देश संगे साझेदारी नना लगी अरा इदी ही खास मुद्दा रही का इवर गे रोजगार अरा वैश्विक अंदाजी इना।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
3: निर्वाचन आयोग केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी धनबाद नु अरा रांची नु केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठस ईवर गे नियुक्ति पत्र सट्टी। निर्वाचन आयोग 10 राज्य ही 24 राज्यसभा सीट गे द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित नंजगिरी या झारखंड ही 2 सीट हूँ मिसा रही। राज्य भर ही हुर्मी मतदाता केंद्र नु इन्ना अनमैप्ड मतदाता ही सूची उरुकी रही। ई सूची 2 हफ्ता गोटी रहो। हुर्मी अनमैप्ड मतदाता तंग आ बीएलओ ती संपर्क ननर मतदाता सूची नु तंग आ मैपिंग ननाउंगनर। राजधानी रांची नु धुरवा नु राणा पुलिस मुख्यालय नु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ही 25 नक्सली अरा जेजेएमपी ही 2 उग्रवादी हथियार संगे आत्मसमर्पण नंजर। डीजीपी तदाशा मिश्रस बाचस कत आत्मसमर्पण ननुर गे पुनर्वास अरा आर की तंग आ मागन पूरा नन्ना ही झूठ नंतार ओ। रांची त बिरसा मुंडा एयरपोर्ट नु केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पुना कमच का बिरसा मुंडा सी प्रतिमा ही अनावरण नंजस आस फीचर वॉल उड़ान यात्री कैफे आसर काउंटर किस जोन अरा फ्लाईवरी ही हूँ उद्घाटन नंजस। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवारस सिल्ली पॉलिटेक्निक नु मन्ना नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम्स ही उद्घाटन नंजस। इबवेत असबाचस का आधुनिक तकनीक उद्योग शिक्षा अरा रोज ता जिंदगी नु बदलाव उन्द्र आलगी। आकाशवाणी ही 90 वर्षी गौरवशाली सफर ही उपलक्ष नु आकाशवाणी रांची किन तृती नन्ना रगांजलि ही दूरदर्शन झारखंड नु सफल आयोजन मंजा। ई खास अवसर नु प्रसिद्ध केड़िया बंधुस तंग है डंडी ती हुरमारी महावाचस। केंद्र सरकार बिहार ता गयाजी पैराया स्टेशन ती चतरा गोटी पुनः रेलवे लाइन परियोजना मंजूरी चीचिचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची नु उन्टा समारोह नु सहायक आचार्य अरा महिला पर्यवेक्षक कर गे नियुक्ति पत्र सौंपचस अरा बाचस का इतु राजीता स्कूल अरा आंगनबाड़ी केंद्र ही बेस्ता औरे पोख्ता इदा तो मजबूत मनो। रांची ता होटवार जेल नु महिला कैदीर गे कथित यौन शोषण मामला नु झारखंड हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान हुनुम डीजीपी ती 2 हफ्ता नु रिपोर्ट नेचा। राज्य सरकार कोटन तिंगिया का मामला ही जांच गे 3 सदस्यीय कमेटी कमतार की रही जबकि जुडिशियल इंक्वायरी हु जारी रही। पाकुड़ जिला ही झीक हर हट्टी पूर्वी पंचायतन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय तरती राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार गे चाचतारा। महिला सशक्तिकरण रोजगार अरा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ही पाटा नु दव नलख नना गे ई पंचायतन ही चयन दीन दयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार गे मंजा। झारखंड अधिवित परिषद जैक झारखंड शिक्षक पत्रता परीक्षा 2026 ही अभ्यर्थी गे ऑनलाइन आवेदन ही उल्लन 2 जून गोटी बढ़ावाचा। गोड्डा संसद निशिकांत दुबे लगातार 17वें बेर प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार गे चाजियर। संसद रत्न अवार्ड समिति संसद नु जनहित ही मुद्दन पोक्ता ती चोदना सक्रिय भागीदारी

0: ᱮᱴᱮ ᱦᱩᱞᱟᱝ ᱮᱭᱟ ᱞᱟᱯᱟᱜᱼᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱢᱩᱠᱟᱵᱞᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱵᱟᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚᱲᱟᱦᱚᱱ ᱠᱚ 100 ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱱᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱱᱤᱢᱮᱥ ᱠᱩᱡᱩᱨ 10.15 ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱤᱨ ᱠᱮᱭᱟᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱮ ᱵᱟᱭᱤᱛ ᱮᱫᱟ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱥᱮᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱦᱚᱠᱤ ᱴᱤᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱦᱚᱵᱟᱡᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱤᱢ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱩᱝᱦᱟᱨᱤᱭᱟ ᱥᱟᱞᱤᱢᱟ ᱴᱮᱴᱮ ᱱᱤᱠᱤ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱚᱲᱚ ᱫᱤᱯᱤᱠᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱡᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱚᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱚᱣᱟᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱦᱚ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱦᱟᱴ ᱴᱚᱨᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱞᱚᱛᱮ ᱤᱱᱥᱟᱥᱨᱚᱛᱤ ᱜᱟᱜᱨᱟᱭ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮᱞ ᱟᱨᱮᱭᱟ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱢᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚᱱᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥᱤᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱛᱮᱢ ᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱩᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱨᱦᱤᱥᱤ ᱜᱮᱞ ᱢᱤ ᱦᱟᱡᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱞᱟᱱᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱤᱱ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱮᱱᱛᱟ ᱞᱟᱦᱤᱨ ᱞᱮ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱰᱟᱪᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱠᱤᱞᱤᱢᱤᱞᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱞᱚᱛᱮ ᱡᱩᱲᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱮᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱫᱮᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱟᱨ ᱵᱮᱥᱤᱠ ᱪᱤᱱᱤᱨᱜᱟᱞ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟ
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
1: चावरा मंत्री अन्नपूर्णा देवी तिकीन दो धनबाद रे चावरा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तिकीन दो रांची रे जीवन को तला बहाली सकम किंग हाटिंग किडा निर्वाचन आयोग दो गेलिया राइज कोरे अहिसी पुन राज्यसभा सीट को लगे द्विवार्षिक चुनाव कुरुडुरु मार्शल किडा नेरे झारखंड रे बारिय सीट रो मिना गोटा राइज रे सबन वोट एमओ सेनेटर कोरे तिसिंग अनमैप ᱵᱚᱴ ᱮᱢ ᱦᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱩᱪᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱮᱰᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨᱦᱟᱴ ᱚᱡᱚᱝ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱟᱱᱢᱮᱯ ᱵᱚᱴ ᱮᱢ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱵᱤᱭᱮᱞᱚᱞ ᱚᱱᱟᱯᱟᱢ ᱠᱮᱱᱛᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱮᱯᱤᱝ ᱫᱟᱭᱮ ᱨᱟᱡᱽᱫᱷᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱩᱨᱣᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱤᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱢᱟᱣᱟᱫᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱤᱥᱤ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚ ᱱᱟᱠᱥᱟᱞᱤ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱜ ᱡᱮᱡᱮᱮᱢᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱨ ᱦᱚ ᱩᱜᱨᱚᱵᱟᱫᱤ ᱠᱤᱱ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱞᱚᱜ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱚᱢᱯᱟᱱᱚᱭᱮᱱᱟ ᱰᱤᱡᱤᱯᱤ ᱛᱟᱫᱟᱥᱟ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱠᱟᱰᱟᱪᱤ ᱥᱚᱢᱯᱟᱣᱚᱱ ᱛᱟᱱᱠᱚ ᱯᱩᱱᱟᱨᱣᱟᱥ ᱚᱰᱚᱜ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱱᱟᱥᱤ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱮᱭᱟᱨᱯᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱪᱟᱣᱨᱟ ᱱᱟᱜᱨᱤᱠ ᱩᱰᱟᱹᱭᱚᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱨᱟᱢ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱱᱟᱭᱰᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱵᱟᱭᱮᱱ ᱢᱩᱨᱩ ᱛᱩᱠᱤᱱ ᱵᱤᱨᱤᱴ ᱠᱤᱰᱟ ᱟᱠᱤᱱ ᱯᱷᱤᱣᱪᱟᱨ ᱚᱣᱟᱞ ᱩᱰᱟᱱ ᱭᱟᱛᱨᱤ ᱠᱮᱯᱷᱮ ᱟᱣᱥᱟᱨ ᱠᱟᱣᱩᱱᱴᱟᱨ ᱠᱤᱰᱥ ᱡᱳᱱ ᱚᱰᱚ ᱯᱷᱞᱟᱭ ᱵᱨᱮᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱤᱭᱚᱜ ᱠᱤᱰᱟ ᱨᱟᱡᱽᱭᱚᱯᱟᱞ ᱥᱚᱱᱛᱳᱥ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱜᱚᱝᱜᱚᱣᱟᱨ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱤᱞᱤ ᱯᱚᱞᱤᱴᱮᱠᱱᱤᱠ ᱨᱮ ᱦᱩᱵᱟᱭᱟᱱ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱦᱮᱱᱰᱥ ᱚᱱ ᱚᱣᱟᱨᱠᱥᱚᱯ ᱚᱱ ᱤᱱᱰᱟᱥᱴᱨᱤ ᱚᱨᱤᱭᱮᱱᱴᱮᱰ ᱚᱴᱳᱢᱮᱥᱚᱱ ᱮᱱᱰ ᱟᱭᱳᱴᱤ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱤᱭᱚᱜ ᱠᱮᱰᱟ ᱱᱮᱱ ᱟᱥᱲᱟᱨᱮ ᱟᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱰᱟ ᱪᱤ ᱱᱮᱱ ᱡᱚᱨᱚᱝᱼᱟ ᱴᱮᱱᱮᱴ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱯᱟᱯᱟᱫᱤᱨ ᱥᱮᱬᱟ ᱚᱰᱚ ᱡᱟᱱᱟᱣᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱴ ᱨᱮ ᱮᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱛᱮᱱᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱮ ᱯᱩᱱ ᱦᱤᱥᱤ ᱜᱮᱞ ᱵᱚᱪᱚᱨ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩᱜᱟᱨ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱩᱲᱤᱨᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱥᱮᱱᱮᱴᱚᱨ ᱯᱟᱭ ᱛᱮᱨᱤᱠᱮᱞᱮᱱ ᱨᱟᱜᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱝ ᱦᱩᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱟᱥᱲᱟᱨᱮ ᱱᱩᱛᱩᱢᱮᱱ ᱠᱮᱲᱤᱭᱟ ᱦᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟ ᱥᱩᱜᱟᱨ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱪᱤᱠᱤᱰᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱡᱤ ᱯᱟᱨᱟᱭᱟ ᱴᱮᱥᱚᱱ ᱟᱭᱛᱮ ᱪᱟᱛᱨᱟ ᱡᱚᱝ ᱱᱟᱢᱟ ᱨᱮᱞ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱯᱟᱨᱤᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱤᱭᱟᱠᱤᱰᱟ ᱪᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱠᱟᱞᱤᱪᱚᱨᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱟᱡᱤᱠᱤᱰᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱨᱮᱞ ᱯᱟᱨᱤᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤᱭᱤᱠᱤᱱᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱮᱢᱚᱱᱛ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱢᱟᱨᱚᱦ ᱨᱮ ᱥᱟᱦᱟᱭᱚᱠ ᱟᱪᱟᱨᱭᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱯᱟᱨᱤᱵᱮᱠᱥᱚᱠ ᱠᱚᱠᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱤᱱ ᱮᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱮᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱰᱟ ᱪᱤ ᱱᱮᱭᱟᱛᱮ ᱨᱟᱭᱤᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱰᱚ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱸᱜᱟᱱᱵᱟᱲᱤ ᱥᱮᱱᱮᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱚᱵᱚᱥ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱤᱴᱤᱝᱚᱜᱼᱟ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟᱨ ᱡᱮᱞ ᱨᱮ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱠᱟᱹᱭᱫᱤᱭᱮ ᱡᱚᱱ ᱥᱳᱥᱚᱱ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤᱨᱜᱟᱞ ᱤᱰᱮᱞ ᱚ ᱰᱤᱡᱤᱯᱤ ᱛᱮ ᱟᱭᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱴᱚ ᱨᱮ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱟᱥᱤᱠᱮᱰᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱳᱨᱴ ᱠᱮ ᱩᱫᱩᱵᱮ ᱤᱭᱮᱪᱮ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱸᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱮ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱵᱟᱭᱤ ᱠᱮᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱩᱰᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱡᱟᱸᱪᱚ ᱦᱩᱵᱟᱱᱛᱟᱱᱟ ᱯᱟᱠᱩᱲ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱤᱠᱟᱨᱦᱟᱴᱤ ᱯᱩᱨᱵᱤ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱠᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭ ᱯᱟᱛᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱞᱟᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱥᱚᱥᱚᱠᱛᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱥᱩᱵᱤᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱥᱚᱵ ᱜᱩᱱᱭᱟ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱮ ᱛᱮᱱᱮᱱ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱫᱤᱱᱫᱟᱭᱟᱞ ᱩᱯᱟᱫᱷᱭᱟᱭ ᱥᱚᱛᱚᱛ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱞᱟᱭᱟᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫᱽ ᱡᱟᱭᱟᱠ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱤᱠᱥᱟᱠ ᱯᱟᱛᱨᱚᱛᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ 2026 ᱡᱮᱴᱮᱴ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱯᱚᱨᱚᱢ ᱯᱮᱨᱮ ᱮᱛᱤᱭᱟ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱤ ᱫᱩ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱝᱟ ᱩᱥᱠᱩᱨ ᱠᱤᱰᱟ ᱜᱳᱰᱰᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱱᱤᱥᱤᱠᱟᱱᱛ ᱫᱩᱵᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱛᱟᱨ ᱜᱮᱞ ᱟᱭᱫᱟᱣ ᱱᱚᱢᱩᱭᱮᱱ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱨᱚᱛᱱᱚ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱭᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱠᱚ ᱤᱴᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵᱮ ᱥᱟᱠᱨᱤᱭᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱫᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱠᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱨᱚᱛᱱᱚ ᱟᱣᱟᱨᱰ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱯᱟᱭ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱭᱟᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱠᱮᱰᱟᱨ ᱨᱮᱱ 2010 ᱵᱮᱪ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱯᱤᱮᱥ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱥᱩᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱩᱢᱟᱨ

0: ହାତକିଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଲ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଡିଆଇଜି ପଦରେ କିଂ ବାହାଲିଏନେ। ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିର ବିର୍ଷାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହିସି ଆରିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିନିୟର୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ବାଦାବାଦୀ ଏଟେଏନା ନେନ୍ ବାଦାବାଦୀରେ ଗୋଟା ଦିଶମେତ ଆଇସୋ ବାର ହିସି ଗେଲ୍ ହୋ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱞᱟᱱᱟ ᱮᱛᱷᱞᱤᱴ ᱤᱱᱩᱝᱠᱚ ᱦᱤᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱤᱰᱮᱛᱟᱱᱟ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱞ ᱫᱤᱱ ᱟᱭᱮ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞ ᱛᱟᱯᱲᱟᱨᱮ ᱦᱩᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱥᱚ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱱᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱚᱱᱤᱢᱮᱥ ᱠᱩᱡᱩᱨ 10.15 ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱨᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱵᱟᱭ ᱠᱤᱰᱟ। ᱱᱚᱭᱰᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱵᱟᱭᱮᱱ ᱜᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱨᱮᱝᱠᱤᱝ ᱥᱯᱤᱰ ᱥᱠᱮᱴᱤᱝ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱮᱥᱩᱵ ᱜᱤᱱᱟ ᱤᱱᱩᱝᱭᱮᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱨᱩᱫᱨᱟᱱᱥ ᱥᱚᱨᱢᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱵᱚᱛᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱞᱚ ᱨᱟᱭᱤᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱤᱰᱟ। ᱡᱟᱢᱛᱟᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱮᱵᱟᱥᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱥᱟᱭᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮ ᱦᱩᱵᱟᱭᱟᱱ ᱮᱭᱟᱨᱜᱟᱱ ᱨᱟᱭᱯᱷᱚᱞ ᱥᱩᱴᱤᱝ ᱵᱟᱫᱟᱵᱟᱫᱤ ᱨᱮ ᱮᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱤᱱᱩᱝ ᱠᱮᱱ ᱞᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱯᱚᱫᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ। ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱱᱮᱞ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱴᱤᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱞᱟᱱ ᱦᱩᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱱᱮᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱭ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱤᱢᱟ ᱴᱮᱴᱮᱱᱤᱠᱤ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱫᱤᱯᱤᱠᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ। ᱱᱮᱞᱚᱜ ᱛᱮᱠᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤᱭᱟᱛᱮ ᱢᱤᱦᱟᱴᱚ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱩᱱᱰᱩ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱯᱮ ᱫᱩᱞᱤ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱛᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ। ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱜᱮᱞ ᱟᱞᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱢᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚᱱᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱟᱶ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱷᱳᱨ ᱨᱮᱱ 50,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱩᱠᱛᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢᱮ ᱪᱟᱞᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱡᱮᱫᱟᱨᱤᱭᱟᱭ। ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱫᱫᱮᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱥᱭᱤᱠ ᱚᱱᱩᱵᱷᱚᱵ ᱮᱢ ᱠᱟᱱᱟ।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी धनबाद रे और रांची रे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जुवन को तला रे बहाली सका में हटिंग केदा। निर्वाचन आयोग दो गेल टी पोनोत रेना बार गेल पून राज्यसभा सीट लगिन द्विवार्षिक बचनाव हेल में ले डाकरा केदा। नोवा रे झारखंड रेना बारिया सीट सेलेद में ना पोनोत रेना सानाम बचनाव केंद्र रे तेहें ऑन मैप्ड मतदाता को सूची ओडोक केदाय। नोवा सूची दो हफ्ता भोर तहेना सानाम ऑन मैप्ड मतदाता अकोवा बीएलओ ठेन जोगाजोग करते मतदाता सूची रे अकोवा मैपिंग को दड़े अको। राजधानी रांची रे धुरवा रे मेना पुलिस मुख्यालय रे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी रेन बारगेल मोड़े नक्सली आर जेएमपी रेन बारिया उग्रवादी दो हथियार साव को आत्मसमर्पण केदा। डीजीपी तदासा मिश्र मेन केदा जे आत्मसमर्पण के को लगिन दो पुनर्वास और उनको मांग को पूरा लगिन दिसरे कार्रवाई हुयुआ। रांची रेना बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रे केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री राम मोहन नायडू दो नावा बेना वकान बिरसा मुंडा वा मुठन उड़व केदाय। उन्नी दो फीचर वॉल उड़ान यात्री कैफे अवसर काउंटर किड्स जोन आर फ्लाई ब्रेरी रेना होय उड़व सगुन केदा। पोनोत गोम के संतोष कुमार गंगवार दो सिल्ली पॉलिटेक्निक रे हुयु का नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंट ऑटोमेशन एंड आईटीओटी सिस्टम रेना ए उठव केदा। नवा अवसर रे उनी मेन केदा जे नहा तकनीक उद्योग शिक्षा और दिनम जीवन रे अडी ढेर बदलाव अगू हुयुआ। आकाशवाणी रेना आरे गेल बछोर रेना गौरवशाली डहार रे आकाशवाणी रांची केंद्र होते ते रागांजलि रेना दूरदर्शन झारखंड रे नापाई हेलमेल हुई सतेना। नवा विशेष अवसर रे नितुमान केड़िया बंधु दो आजा मौज से रेंते उदू सदर के ते मौजे ऐके होचो के कुआ। केंद्र सरकार दो बिहार रेन गायाजी पेरिया स्टेशन खन चतरा तक नवा रेल लाइन परियोजना को हे सरिया कदा। चतरा रेन सांसद कालीचरण सिंह ने मेन केदा जे रेल दो नवा आसो रेलवे परियोजना घोषित रखा। सिरा मंत्री हेमंत सोरेन दो रांची रेना मिद हेलमेल रे सहायक आचार्य महिला पर्यवेक्षिका को नियुक्ति सका में चालाद कुआ। नवा अवसर रे सिरा मंत्री मेन केदा जे नवा ते पोनोत रेना इतुन आसड़ा और आंगनबाड़ी रे व्यवस्था आर हो नपायुआ। रांची रेना होटवाल जिहोल रे तिरला कैदी साव यौन शोषण मामला रे झारखंड हाईकोर्ट दो लोगों संज्ञान हताव कते डीजीपी साव बार हफ्ता ते रिपोर्टे कोयकादा पोनो सरकार दो कोर्ट

0: इस अंक में 19वां देशव्यापी रोजगार मेला, पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 और राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे। देश भर में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: इसी कड़ी में रांची के सीसीएल सभागार में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां रेलवे, सेना और डाक विभाग सहित 6 अलग अलग विभागों के

0: 132 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किया हर वादा पूरा कर रहे हैं।
1: एक वायदे को पूरा किया, एक एक वायदे को धरातल उतारा। देश के युवाओं से फायदा था कि लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी, पिछले 18 बार में 12 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, आज 19वें बार में 51,000। मतलब देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाना, और जिस तरह 51,000 लोगों का 47 स्थानों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, वो भी सौभाग्यशाली है।
0: भारतीय कृषि को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पुरी में क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और दाल तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर छोटे खेतों को लाभदायक बनाना है।
2: मित्रों, आप सबका स्वागत हमारे पूर्वी क्षेत्र की, पूर्वी भारत की खरीफ एग्रीकल्चर रीजनल कॉन्फ्रेंस, जोनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ आयोजन। ये तीसरी जोनल कॉन्फ्रेंस है, इसके पहले उत्तर पश्चिम भारत और मध्य क्षेत्र की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, और इस जोनल कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल, ये 5 राज्य शामिल है। हमारा लक्ष्य है, कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा उद्देश्य 3, एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फूड सिक्योरिटी। नंबर 2, केवल खाद्य सुरक्षा नहीं, पोषण भी उसको ठीक से मिले, ये भी हमें सुनिश्चित करना है, और इसके साथ साथ किसानों की आय बढ़े, आजीविका ठीक से चले, और इसके लिए भारत सरकार ने 6 सूत्रीय रणनीति अपनाई है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना है पर हेक्टर उत्पादन की, और अच्छी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाएं। नंबर 2 भी हमारा उद्देश्य, उत्पादन की लागत भी घटाएं तब किसान का प्रॉफिट बढ़ेगा। नंबर 3, ठीक दाम किसान को उसके उत्पाद का मिले, इसका प्रयत्न करना। और नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई की व्यवस्था करना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है कि आज हमारे यहाँ चावल के भंडार भरे हैं देश में, ये सौभाग्य भी है कि धान के चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में चीन को पीछे छोड़ के आज नंबर 1 पर पहुंच गया है। दालों की कमी है, दलहन की, पल्सेस की कमी है, तिलहन की अभी हमारे यहाँ कमी है, ऑयल सीड्स की, उसकी हमारे यहाँ कमी है। और इसलिए विविधीकरण के 2 मतलब है, 1, बाकी चीजों में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना, तो उस दिशा में प्रयत्न करना विविधीकरण का, और उसके साथ साथ एक खतरा और हमारे सामने आज है, वो है असंतुलित और अत्यधिक उर्वरकों को के कारण, फर्टिलाइजर के कारण सॉयल हेल्थ भी तेजी से खराब हो रहा है, और कई बार माटी में कौन से तत्व है ये जाने बिना जब बहुत खाद डलता है तो लागत भी बढ़ती है, और लागत बढ़ने के साथ साथ मिट्टी का और मनुष्य का दोनों का स्वास्थ्य भी खराब। तो ये हमारे उद्देश्य है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कई चीजों पर आज हमने चर्चा की है।
0: वहीं राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने किसानों से सही योजना और आधुनिक खेती तकनीक से इस परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करने की अपील की।
3: जोहार साथियों, इस वर्ष खरीफ मौसम में सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, सूझबूझ और समझ के साथ अगर काम लिया जाए तो आने वाले समय में सुखाड़ की सामना भी मजबूती के साथ किया जा सकता है। जहां भी मई जून में बारिश हो तुरंत खेतों की अच्छी तरीके से जुताई कर ले, मेड़ को मजबूती से बनाए ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे, धान पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहे। वैसे फसल जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है जैसे मूंग, सोयाबीन, मड़ुआ, अन्य फसलों को अपनाएं। सरकार लगातार किसानों के बीच सही तकनीक, बीज और जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है ताकि आने वाले समय में ये सुखाड़ से मजबूती से हम निपट सके।
0: राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए परिणाम उन्मुख कार्य की आवश्यकता है।
4: झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नए कानून में आपकी भूमिका क्या है, नई व्यवस्थाएं क्या है और इसका अध्ययन करें, तो हम भी इस पर ध्यान देंगे। मैं सभी कुलपतियों एवं प्राचार्यों से आग्रह करता हूं कि निर्धारित एकेडमिक कैलेंडर का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें, नियमित कक्षाएं हों, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हों तथा परीक्षाएं एवं परिणाम निश्चित समय सीमा में प्रकाशित किए जाएं। विद्यार्थियों का भविष्य किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता का शिकार नहीं होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, विश्वसनीय और समयबद्ध होनी चाहिए और विश्वविद्यालय के स्तर पर हो रही देरी के कारण छात्रों के कैरियर पर प्रभाव न पड़े, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए। हमें विशेष रूप से शोध, नवाचार और कौशल आधारित शिक्षा पर बल देना चाहूंगा। विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने का केंद्र न बने बल्कि इनोवेशन, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट तथा इंडस्ट्री लिंकेज के सशक्त केंद्र बने। विश्वविद्यालयों में ऐसा शैक्षणिक एवं अनुशासित वातावरण विकसित हो जहाँ विद्यार्थी गर्व के साथ अध्ययन कर सके। हमारे प्रोफेसर, शिक्षक सभी को इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता का किसी प्रकार से समझौता स्वीकार नहीं करना चाहिए। वित्तीय अंकेक्षण समय पर हो, प्रशासनिक और क्रय विक्रय प्रक्रियाओं में पूर्णता जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
0: रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा, इन नियुक्तियों से राज्य के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था मजबूत होगी।
5: सभी नवनियुक्त सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। नियुक्ति पत्र वितरण है, आप लोगों को काफी गर्व भी हो रहा होगा, काफी आप उत्साहित भी होंगे और हम लोगों ने यह प्रयास किया है, सरकार अपने विभिन्न विभागों में जो मानव संसाधन है उनको मजबूत करे और राज्य के समग्र विकास के पहिए को थोड़ा गति देने का हम लोगों का प्रयास है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति है, जो यहाँ के समाज सामाजिक ताना बाना है, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज है और आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा समुदाय आज से नहीं बल्कि आजाद भारत से पहले से लेकर के आज तक कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में वो अपनी गति को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए और आज आप लोग नवनियुक्त हुए हैं, सरकार के अंग के रूप में आप काम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है, आपके माध्यम से हम गांव तक जुड़ा रहने और घर घर तक, अरे हर एक व्यक्ति तक, खासतौर पर महिलाएं, बच्चे जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, उनसे जुड़ने के लिए आपको एक अभिन्न अंग बनाया है। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाए इसके लिए नहीं है, हम नियुक्ति इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास हो।
0: मौके पर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह अवसर सभी चयनित अभ्यर्थियों के धैर्य, संघर्ष और कठिन परिश्रम का परिणाम है।
6: आप आज जो यहाँ तक पहुँचे हैं ये आपकी सफलता, कड़ी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। आपके इस सफलता और धैर्य को मैं प्रणाम करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप अपने नई भूमिका में अपने कार्य संस्कृति से, अपने कार्यशैली से आप अपने कार्य क्षमता को प्रदर्शित कर सकेंगे और आप अपने कार्यों से व्यवस्था में, प्रणाली में लोहा मनवाएंगे कि जो जिम्मेवारी हमें राज्य सरकार की ओर से मिली है, मैंने अक्षुण उसका निर्वहन किया है। एक नई शुरुआत और शानदार शुरुआत आपके जीवन काल में प्रवेश कर

0: रहा है, बेहतरीन अवसर और आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन का हम सबों का, राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसका हम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहेंगे कि हमें यह इस बात का भी इंतजार होगा कि आप अपने भूमिका में इस राज्य को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में जनजातीय गरिमा उत्सव और जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई। सबसे दूर सबसे पहले विषय के साथ 19 से 25 मई तक चलने वाले इस जन भागीदारी अभियान का उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्र में समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने बताया कि अभियान के तहत 25 मई तक जिले के 616 जनजातीय बहुल गांवों में लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव जो 19 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा, हमारे जिले के 616 ग्राम जो जनजातीय बहुल ग्राम है, उन ग्रामों में अभियान के तहत जनजागरूकता, जन भागीदारी के माध्यम से जनजागरूकता का अभियान चलाया जाएगा और उन ग्रामों में जो पूर्व के कार्यक्रम के तहत डीए जगुआ जनमान कार्यक्रम के तहत जिन जो सेचुरेशन मोड पे नहीं लाया गया है, उन ग्रामों में आज के इस एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है, इसमें प्रयास रहेगा कि उनको विभिन्न इंटरवेंशंस में सेचुरेशन मोड पर लाया जा सके।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक महविश रहमान, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।

यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और हम प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा के साथ। मुझे पता है कि हमारे प्यारे प्यारे साथियों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस कार्यक्रम का। आप सभी स्वीकार करें अपनी रेडियो हम सफ़र मौनिता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सारा दिन गुजर जाने के बाद अक्सर जब रात आती है तो रात की चादर में लिपटे हैं सितारे कई और हर सोई हुई आँख में है ख्वाब नए कई। खामोशी भी इसकी कुछ कहती है कान में, बस सुनने वाला चाहिए इस हंसी जहाँ में।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी रात भी बाकी है और हमारी बातें भी बाकी हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। तो बातें हो रही थी रात की और चांद की। तो चांद की ठंडक और तारों का ये पहरा है, रात का ये समय सचमुच बहुत गहरा है।

जब भी रात को कोई बात सुनने वाला नहीं होता तो अक्सर मैं छत पर जाकर आसमान को देख लेती हूँ। वो चांद चुपचाप अपनी चांदनी बिखेरता रहता है और वो बिना कुछ कहे अपना हाल कह देता है।

इसी प्यारे गीत के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। आप अपनी रेडियो हम सफर मौनिता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये युवा अब विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में शामिल होंगे और आज हमारी चर्चा का विषय यही है, 19वां रोजगार मेला, रोजगार सृजन से राष्ट्र निर्माण। इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार अनुभव जी।
0: शेखर जी, रोजगार मेला के अब तक के 18 एडिशंस के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है?
1: रोजगार मेला अपने आप में सरकार की एक बड़ी इनिशिएटिव है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक प्राथमिकता दी गई है। आपने जैसे कहा कि 12 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। ये 19वां मेला था, 47 जगह पर आज आयोजित हुआ है, जिसमें रोजगार मेले में जो एक प्रोसेस रहती है कि जहां जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं वो और उनको एम्प्लॉय करने के लिए जो लोग जाते हैं, खास करके सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट होते हैं, उन दोनों को ये करके किया जाता है। और इसका एज लिमिट जो है 18 से 35 तक है। और सबसे विशेष एस्पेक्ट इस मेला में यह है कि 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास जो लोग पास कर रहे हैं, 19 से लेकर जो ITI डिप्लोमा लिए हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं, ये सबको कवर करता है। तो एक यूनिक एक्सरसाइज रहा है जिसमें बहुत लोग फायदा उनको मिला है। और लगातार एक बात आती रहती है कि बेरोजगारी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट्स, जो बड़े रिक्रूटर्स हैं, जैसे रेलवेज है, आपकी बैंकिंग सेक्टर है, आपकी हायर एजुकेशन है, आज के मेले में भी ये लोग सब भाग लिए हैं। सरकारी नौकरी को लेकर हमेशा एक अट्रैक्शन रहती है कि ये सबसे सिक्योर है, लेकिन आज के मेले में जो बातें सामने प्रधानमंत्री ने रखी है कि जिनको ये नौकरियां मिली है उनका भूमिका क्या है, आगे जाके क्या करेंगे, ये सब बारे में प्रधानमंत्री ने आज सबको बताया है।
0: जी, ये जो आपने आखिरी बात कही इस पे भी जरूर चर्चा करूंगी मैं आपके साथ शिखर जी, पर अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं ये राष्ट्र की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार बन रहे हैं। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
0: शिखर जी, रोजगार मेला जैसी पहल जो है वो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करती है और कैसे प्रोत्साहित करती है?
1: आज प्रधानमंत्री का आह्वान यही है कि जो लोग सरकारी नौकरी पे जा रहे हैं वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ले रहे हैं। वो कमिटमेंट क्या है? लोगों को सेवा करने के लिए, क्योंकि ये केवल एक नौकरी नहीं है, एक माध्यम है जिसे आप देश की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए आपको अपने आप को कर्मयोगी के रूप में काम निभाना है। और ये जो आज की जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां है देश के सामने, जो जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं वो भी अपनी शिक्षा बंद नहीं कर सकते
0: जी,
1: लगातार उनकी लर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो भी एक चुनौती दे रहे हैं कि उसको आप कैसे अडेप्ट करेंगे, सिस्टम में कैसे करेंगे, और लोगों की बढ़ती हुई जो मांगे हैं उसको कैसे आप दूर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का यही था कि आज के युवा, उन पर पूरा भरोसा है कि वो ये कर पाएंगे। और साथ में हमेशा ये याद रखेंगे सरकारी जॉब जो है एक माध्यम है लोक सेवा के लिए, ये बात इनको कभी भूलना नहीं चाहिए।
0: सफल उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी हाल में ही संपन्न हुई 5 देशों की यात्रा के आर्थिक और कूटनीतिक परिणामों के बारे में भी विस्तार में बताया और उन्होंने कहा कि इन साझेदारियों का उद्देश्य ये है कि भारत के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्राप्त हो।
2: साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं।
0: शिखर जी, प्रधानमंत्री की बातों से स्पष्ट है कि भारत अपनी प्रतिभाशाली युवा आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का लाभ उठा रहा है, बहुत अच्छी तरह उठा रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी जो भारत जिस विकास यात्रा पे चल पड़े हैं, उसके सामने एक विजन है, वो है विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ रहे, समझौता हो रहे, नए नए टेक्नोलॉजी को लेकर, जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, इस तरह कई चीजें हो रही है। हाल में जो प्रधानमंत्री गए थे नॉर्डिक कंट्रीज, वहां जाके इन्होंने कई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इन देशों के साथ। इसका फायदा क्या है, क्योंकि बड़ी बात आती है इस पर, इसको आलोचना भी विपक्ष पार्टियों से की गई।
0: जी बिल्कुल,
1: कि या एक तरफ आप ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश जाने का लक्ष्य यही है कि पांच कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट पार्टनरशिप होगी, इसका सारा मकसद यही है, ताकि भारत अवसर पैदा करे अपने नौजवानों के लिए, साथ में अन्य देश है वो भी भारत के विकसित यात्रा में भाग लेने चाहते हैं, एक पार्टनर बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें समझना चाहिए कि जब भी इस तरह की डायलॉग्स होते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, भारत को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अन्य अन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इनोवेशन है, और सबसे बड़ी जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात, क्योंकि आजकल समुद्र ही सबसे ज्यादा अवसर देता है,
0: जी बिल्कुल,
1: उसमें मैरिटाइम जो कोऑपरेशन होती है, वो ब्लू टेक्नोलॉजी हो, फिशिंग हो, शिपिंग हो, ये सारे चीजों के साथ बातचीत हुई है और समझौते भी हुए, जिसका फायदा हमारे युवाओं को जाएगा, क्योंकि नए नए अवसर खोलेंगे, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, उस टेक्नोलॉजी से भी आगे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी और सुधरेगी और लोगों को फायदा होगा।
0: शिखर जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से अपनी आर्थिक साझेदारियों को बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है और उसका विविधीकरण भी कर रहा है। क्या आप सहमत होंगे कि इससे न केवल भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और जो उद्यमी युवा पेशेवर हैं, उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, बल्कि ये ब्रेन ड्रेन को रोकने और उसे पलटने में भी मदद करेगा?
1: बिल्कुल, देखिए, ब्रेन ड्रेन की जो बात होती थी आपके 60s, 70s, 80s में, ये बातें आती थी कि हमारे IIT से, हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, जो टॉप कॉलेजेस है, वहां से लोग पढ़कर निकलकर बस विदेश जा रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आज भी लोग विदेश जाते हैं, लेकिन जाके वहां शिक्षा और अधिक एडवांस शिक्षा प्राप्त करके फिर भारत आना चाहते हैं। जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो सब खोल रहे हैं और उसमें हमारी युवा जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं भारत में कितने यूनिकॉर्न्स आ चुके हैं, मतलब जिसके वैल्यूएशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और प्रधानमंत्री की अभी जो यात्रा है, आप देख लीजिए किस किस क्षेत्र में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो रहा है। केवल नेदरलैंड्स को ले लीजिए, सेमीकंडक्टर्स, पानी, सिंचाई, कृषि क्षेत्र में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में नेदरलैंड्स के साथ हुआ, जो आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन स्वीडन के साथ हुआ है, और फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी और जो मैरिटाइम कोऑपरेशन करने बात की वो नॉर्वे के साथ हुआ है। इसके अलावा पीएम यहां जाने से पहले UAE गए थे, वहां स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे हुआ है, और कई डिफेंस क्रिटिकल मिनरल साइंस टेक्नोलॉजी इटली के साथ हुआ है। ये जिस तरह पार्टनरशिप्स बनते जा रहे हैं, ये सारे पार्टनरशिप्स में हमारे युवा अच्छे शिक्षा प्राप्त करके उसमें अपने आप को केवल जॉब सीकर्स नहीं बनना चाहते,
0: बिल्कुल
1: जॉब गिवर्स बनना चाहते हैं। ये बड़ी चेंज आई है।
0: शिखर जी, अपने भाषण में आज प्रधानमंत्री ने देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार आ रहा है, जो लगातार तेजी से बढ़ रही है, उसमें उन्होंने नारी शक्ति की भूमिका भी जो बढ़ रही है लगातार, उसके बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, और जब वो ये सुनते तो न सिर्फ मन गर्व से भर जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है और बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, देखिए, महिला मर्द के साथ कंधा मिला के अपने जगह प्राप्त कर ली है, ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी रजिस्टर नहीं की हो अपनी मार्क ऑफ टैलेंट को, अपना लीडरशिप को, अपना इनोवेटिव स्किल्स को। एक क्षेत्र नहीं है, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आगे लीडरशिप की काम इतना जबरदस्त हो रहा है जिससे लग रहा है कि पूरी जो पोटेंशियल है हमारी महिलाओं की, जो स्ट्रेंथ है, उसको भारत इस समय अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर पा रहा है। और उसका ज्यादातर कारण है सरकार ने जिस तरह प्राथमिकता दी है महिला शिक्षा, महिला आगे बढ़ने का जितना एवेन्यूज, और उसको एनकरेज करने के लिए जो स्कीम्स और प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से जो विकसित

0: भारत यात्रा में महिलाओं को मतलब हर दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ कहीं ना कोई एक सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलता है।
1: सफल उम्मीदवारों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता में उनके माता पिता, उनके परिवारों और समाज के योगदान का भी उल्लेख किया।
2: आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहाँ पहुँचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुँचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुँचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है।
1: प्रधानमंत्री द्वारा परिवारों और समाज को दिया गया ये जो एक संदेश, एक सकारात्मक ऊर्जा है जो न केवल युवाओं को बल्कि पूरे देश को प्रेरित करने के लिए बेहद जरूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: प्रधानमंत्री ने एक पॉइंट इस कनेक्शन में जो बताया, देखिए आजकल ज्यादातर युवा जो आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिनकी लीडरशिप हम देख रहे हैं
1: जी,
0: वो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: यानी टियर 2 टियर 3 वहां से आगे आ रहे हैं। जो स्टार्टअप की आप देखेंगे प्रोफाइल, ये सारे यही जगह से हमारे युवा आ रहे हैं, जो अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक चैलेंज लेकर कि भाई हमें इनोवेटिव कुछ करना है, और एक प्रकार से एक आंदोलन बन गया है
1: जी,
0: नेशनल इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और देखिए ये सारे नौकरी के चक्कर में नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, सरकार कई सुविधाएं दे रही है, आपको कई स्कीम्स है, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतनी कई स्कीम्स है जिसका फायदा लेकर आप देख रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं। इससे ये दिखाता है कि कोई भी संस्था हो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ, उसकी बल उस लोगों के साथ है जो लोग उस संस्थाओं को चलाते हैं, जो संस्थाओं को नेतृत्व देते हैं।
1: शिखर जी, अब तक जो रोजगार मेला है वो एक सरकारी पहल रही है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना है, ऐसे आयोजनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में आपकी क्या राय है?
0: ज्यादातर इन रोजगार मेला में सरकारी संस्था या सरकार से जुड़ा हुआ पब्लिक सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी समय आ गया है
1: जी,
0: ये जो हमारी यंग टैलेंट है, युवा टैलेंट है, इसको उनको भी टैप करना है, क्योंकि सरकार ने बहुत दिया है निजी क्षेत्र के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए बहुत कुछ किया है, और यही समय है, सही समय, बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में क्या है कि कुछ ना कुछ विश्व में कोई चैलेंज आ जाता है तो फिर उससे वो डर जाते हैं कैसे करेंगे, लेकिन भारत सक्षम है, भारत की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आगे बढ़ाने के लिए सरकार एकदम लीडरशिप लेके आगे जा रही है। ऐसे समय में निजी क्षेत्र को भी अपना भागीदारी निभाना है, जैसे सरकार कर रही है वैसे सरकार के साथ हाथ मिला के अपना जो करना है वो करना है, पी जाके अफसर आगे आएगा।
1: हम जब बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी की रोजगार सृजन में, तो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो इनके इनिशिएटिव्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन में?
0: आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए शिप बिल्डिंग क्षेत्र ले लीजिए, शिप रिपेयर ले लीजिए, इसके लिए देखिए सरकार ने कह दिया कि 75,000 करोड़ अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको इसको हाथ में लेकर फिर उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब 50,000 करोड़ की अब बात करते हैं तो उसमें तो मेन इंडस्ट्रीज होंगे, उसके साथ में एंसिलरी इंडस्ट्रीज होंगे, उसके बाकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होंगे। इस तरह कई भी एक स्कीम ले लीजिए, उस स्कीम में आप देखेंगे उसके डाउन स्ट्रीम भी होती है, एक मेन प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट से जुड़ा बाकी प्रोजेक्ट है जिसपे अगर निजी क्षेत्र उसमें आना चाहते हैं। देखिए वैसे ही कई क्षेत्र अब खुला गया, आपको डिफेंस खुला गया, डिफेंस में इतनी स्कोप बढ़ गया, आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनी है वो अभी पार्टनरशिप पे आगे आ रहे हैं, और आजकल हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक तक मिसाइल्स, आपके सिस्टम्स, आपके वेपनरी सिस्टम, ये सारे अभी जॉइंट प्रोडक्शन में चल रहा है
1: जी।
0: आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी आत्मनिर्भरता किस तरह इसकी और हम कैसे बढ़ रहे हैं।
1: शिखर जी, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे साथ ये चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुर्खियों में कार्यक्रम का ये अंक हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
5: मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमरीका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केन्द्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047 जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में

0: रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल है। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.

0: मोदी ने मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमरीका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला कान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन सलामती से वाबस्ता मामलात पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वजीर खारजा ने आज सहपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमरीका आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वजीर आजम मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया। इनमें दिफा, कलीदी, टेक्नोलॉजी, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई की यकीनी फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और आवाम से आवाम के राबते शामिल हैं। जनाब मोदी ने मुजाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने की बात दोहराई और कयाम अमन की कोशिशों के तई भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवियत मिलेगी। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है। नई दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने की एक जेली इमारत का इफ्तिताह करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीका में भारतीय कंपनियों ने जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं उससे इस बात की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से बाहमी तालुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीकी वजीर खारजा ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत और अमरीका बाहमी तालुकात को मुस्तहकम बनाने के बारे में कई और पुरजोश और नए ऐलानात करने वाले हैं। जनाब रूबियो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो बहुत संजीदा रहनुमा करार दिया जो तवील मुद्दती मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं।
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it is carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकारी मुलाजमतें लोगों के रहन सहन को बेहतर बनाने और इसमें सहूलत पैदा करने के अहम वसीले के तौर पर काम करती हैं। जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होना चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साझेदारी भी कायम कर रहा है जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौके और रोजगार फराहम करना नीज आलमी सतह पर उन्हें रोशनास कराना है।

0: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: आज 19वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी में सावी विहीर सनती स्टेट में कायम तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 155 एमएम के तोपखाने के गोले तैयार करेगा और इसकी सलाहियत सालाना 5,00,000 गोले तैयार करने की है। गोले तैयार करने की पूरी टेक्नोलॉजी और खाम माल अंदरूनी मुल्क का ही होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वक्त भारत को दिफाई साजो सामान की दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा बरसों में मुल्क दिफाई साजो सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा। जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साजो सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनती बुनियादी ढांचा है, वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत मुस्तकबिल की जंगी सलाहियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के जरिए दिफाई साजो सामान की तैयारी के मामले में खुद कफील बन रहा है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की।
2: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मफाद-ए-अम्मा के प्रोजेक्ट के लिए यह जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दीगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाक़ इस ठिकाने की जरूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील न होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तिहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नजरिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशोरे के लिए विकसित भारत जीरामजी एक्ट 2025

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुँच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। 2 तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स,

0: फिटिंग एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
1: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए, समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH, इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
5: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपोजिट्स होता है, तो ये डिपोजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है प्लास्टिक्स है तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्कली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्कली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे इस शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
6: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
3: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
1: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
7: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं। इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है। मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है, और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
3: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
8: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
1: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
9: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, इसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
3: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रासायनिक

0: विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
1: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
2: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी सचित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव खेतों खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
0: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
3: मैं दीपक प्रकाश मंत्री पंचायती राज विभाग आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी

0: जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाश्री माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Srimushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापु ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापु ताल।

0: अब प्रस्तुत है केसी केशवा पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहि माम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री

0: प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nipunika Shahid. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi today. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the US perspectives on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
3: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rose Garmela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. In the 19th edition of Rose Garmela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government departments and organizations were distributed. The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of the next month, citing that the land was acquired for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance infrastructure and public interest project. Delhi government decided to transform all sub-registrar offices into modern technology-driven and citizen-friendly service centres. The initiative aims to eliminate delays, corruption, middlemen and unnecessary procedural hurdles in property registration services across the city. In a statement, Chief Minister Rekha Gupta said the new model registrar office will provide facilities such as digital assistant for counters, smart token systems, online appointment booking, real-time application tracking and trained staff to ensure transparent and time-bound service delivery. The centre has released more than 527 crore rupees under the National Health Mission as the first tranche for West Bengal for financial year 2026-27. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda today reviewed the healthcare systems in the state during a virtual meeting with Chief Minister Suvendu Adhikari. The Chief Minister also announced that Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. In China, 90 people have been killed in a gas explosion at a coal mine in Shanxi province. The gas explosion occurred at the Liushenyu coal mine in Jinan County yesterday. The state media reported that 201 miners have so far been rescued while rescue efforts are ongoing. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief at the loss of lives in a mining accident in China. In a social media post, he extended his condolences to President Xi Jinping and the people of China on behalf of the people of India. In IPL cricket, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at Ikana Cricket Stadium in Lucknow tonight. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants in Lucknow, Punjab Kings made 200 for 3 in 18 overs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. Put into bat, Lucknow Super Giants posted 196 runs for the loss of 6 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर. दोस्तों, रात्रि के 11:10 हो चुके हैं और हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है. कल प्रातःकालीन सभा में 5:53 पर हम दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद.